मुझसे बेखबर। वो कौन है जो मेरे पल पल में शामिल है? वो कौन है जो मेरी मंजिल है? वो कौन है जिसे मैं सुनना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ?

बन के साया मेरे संग रहता है कौन, मैंने ये न जाना कभी, ऐसा न था हाल मेरा पहले, हाल ये मेरा हुआ है अभी, वो ख्वाब है या हकीकत है।

बमक बम बमक बम बमक तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा तू जाग जरा तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा तू जाग

0: Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot. 89.6
1: Mirchi 1. It's hot.

what? This is actually funny. होता है ना, हम रात को सोने से पहले नेक्स्ट डे का पूरा ट्रेलर बना लेते हैं. कल ये करेंगे, फिर वो करेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, हेल्दी ब्रेकफास्ट करेंगे, पेंडिंग सारे काम निपटा लेंगे, एंड सुबह उठते ही लाइफ आपको कहती है क्यूट प्लान. लेकिन अब मेरी सुनो. वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, वणक्कम, अस्सलाम वालेकुम. मैं हूँ आपकी सिंपली आफ्टरनून राइटर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. एंड आई थिंक हम सबके पास एक इमेजिनरी वर्जन होता है अपने दिन का, और एक वो वर्जन जो एक्चुअली होता है, चलते आता है. वेल, अलार्म स्नूज हो गया, कॉफी ठंडी हो गई, बच्चों ने कुछ और ही डिमांड कर दिया, ट्रैफिक भी अपनी पर्सनालिटी दिखा रही है, एंड सडनली योर परफेक्टली प्लान्ड मॉर्निंग इज डूइंग एब्सोल्युटली फ्री स्टाइल. बट यू नो व्हाट, मे बी एवरी गुड डे डजंट नीड टू बी अ परफेक्टली प्लान्ड डे. कभी कभी जो प्लान नहीं किया था ना, वही दिन का बेस्ट पार्ट बन जाता है. सो वेल, आज की सुबह एजेंडा हम बिल्कुल सिंपल रखते हैं. यहाँ थोड़ी सी म्यूजिक, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी सी अनप्रिडिक्टेबिलिटी, एंड अलोंग द वे आई एम श्योर वी ऑल विल फिगर आउट द रेस्ट एज वी गो. वेरी गुड मॉर्निंग कतर, सिंपली आफरीन जुड़ गई है माइक से दिल तक सारी बातें करने के लिए. सो स्टे ट्यून्ड विद मी ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Milci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbala. Burga, burga. La vietva la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: Hello.
2: हेलो
3: हाँ
2: बोलो कौन
3: हेलो इधर से बोल रहा हूँ आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
2: हाँ बोल कौन रहा है
3: बोल कौन रहे हो कंप्लेंट करी थी आपने सीवर साफ करने की नीचे से बोल रहा हूँ आपके सीवर में घुसा पड़ा हूँ
2: बोल कौन रहे हो
3: आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
2: हाँ बोला था
3: ओ भैया मेरी जान को बचाओ यहाँ पे बहुत गहरा है यार आप लोग खाते क्या हो कितना गहरा कर दिया आपने
2: तो पूछ के घुसे थे क्या अंदर
3: ज्यादा सवाल मत करो मेरी बात सुनो सिर्फ
2: हाँ बोलो
3: यार आपके टॉयलेट पे अपनी कोई बैठा के क्या क्या फेंक रहा है यार ऊपर से बंद करो सर ओ भैया मेरी जान को बचाओ यहाँ पे बहुत गहरा है यार आप लोग खाते क्या हो कितना गहरा कर दिया आपने
2: कौन बोल रहा है कहाँ घुस गए यार
3: हेलो इधर से बोल रहा हूँ आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
2: हाँ हाँ बोला था हुआ क्या है कुछ तो बताओ
3: ज्यादा सवाल मत करो मेरी बात सुनो सिर्फ यार आपके टॉयलेट पे अपनी कोई बैठा के क्या क्या फेंक रहा है यार ऊपर से बंद करो सर
2: कब आया था कब घुसा अंदर
3: फिर सवाल यार मैं यहाँ पे अटका पड़ा हूँ मुझे बाहर निकालो यार कैसे भी करके
2: तू कहाँ से रहा तो नहीं हो गया है
3: सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी नीचे घुसा पड़ा हूँ आपके सीवर में बाहर निकालो यार
2: मैं तो इधर ऑफिस में हूँ अपने
3: ऑफिस क्यों गए सीवर साफ करवाना था मैं तो यहाँ पे घुसा पड़ा हूँ ना अंदर
2: मेरी सीवर में घुसा है किसी और की सीवर में घुस गया
3: ये बदबू से पता चल रहा है सीवर तेरा ही है यार
2: सीवर में मरा रहा है तू
3: गाली तो मत दो
2: हेलो
3: हेलो
2: फिर फोन कर दिया तूने
3: अच्छा सीवर साफ होने का काम करो एक चीज बोलो
2: क्या बोलो
3: कुकड़ू को
4: सर आई एम सो सॉरी मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मुझे किसी ने बताया था कि आपने सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका पुरका पर क्या
2: कुकड़ू को
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
6: इट्स ऑल डाउन टू डोनी इज़न्ट इट फोर बॉल्स लेफ्ट दे नीड 12 रन्स टू विन
7: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला लेकिन उसे पता है
8: शी कैन रीड योर माइंड शी विल ब्लो योर माइंड She is coming for the very first time.
7: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment. Get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah.

हेलो हेलो, आप वकरा से हो तो वकरा वालो, एक्सक्यूजेस अब काम नहीं आएंगे। हाँ जी, वो एक्सक्यूज होते हैं ना अक्सर कि यार हाँ हाँ वॉकिंग कर रही है ना, कल से करेंगे, अरे बस बस कुछ दिन बाद से करेंगे, ये सब अब काम नहीं आएगी, बस वेदर थोड़ा सा मेहरबान हो जाए स्पेशली। क्योंकि गुड न्यूज़ ये है कि अगर आप अलवकरा या वो केयर के साइड में रहते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ म्यूनसिपैलिटी ने 3 ब्रांड न्यू पब्लिक पार्क्स ओपन किए हैं। एक है अल मशमूम, दूसरा है अल खुजामा इन अलवकरा, और एक है अल अराक इन अल वो केयर। और ये सिर्फ ग्रीन ग्रास, बेंच और फोटो खींच वाले पार्क्स नहीं है, यू हैव वॉकिंग पाथ्स, डेडिकेटेड जॉगिंग ट्रैक्स, किड्स प्ले एरिया, आउटडोर फिटनेस जोन्स, सीटिंग्स और रेस्टरूम्स, सब कुछ है। बेसिकली बच्चों का प्ले टाइम, पेरेंट्स की वॉक और आपका मंडे से फिटनेस, सब एक ही एड्रेस पे। वेल, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग डिटेल ये आता है कि इनके नाम भी रैंडम नहीं है। मशमूम, खुजामा और अरक लोकल एनवायरनमेंट से एसोसिएटेड प्लांट्स के नाम हैं। सो देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ कतरी आइडेंटिटी बिल्ट इनटू दीज स्पेसेस एज वेल। एंड अगर बिगर पिक्चर देखा जाए ना, दिस इज पार्ट ऑफ कतर्स पुश टूवर्ड्स मोर एक्सेसिबल नेबरहुड ग्रीन स्पेसेस एंड इट्स मिनिस्ट्री ऑफ म्यूनसिपैलिटी स्ट्रेटजी 2024-2030। सो वकरा बुकेयर वालों, सेव द नेम्स, वेदर बेटर होते ही वीकेंड आउटिंग का एक और ऑप्शन ऑफिशियली आपका रेडी हो ही गया है। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ, राइट ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक पायलट फूक के प्लेन उड़ा रहा था तो उसकी जॉब फूक गई।
3: इसको प्लेन को हाई ले जाना था, ये खुद हाई हो गया। और लोगों को यार प्लेन के फॉल की पड़ी है, जबकि इसका डाउनफॉल शुरू हो गया।
4: मेरा हेयर फॉल भी।
5: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: कमाल का गाना कमाल खान की आवाज में राइट हियर ऑन मिर्ची साथ देते हुए कुमार सानू और अलका याग्निक और एनी प्रिया, अगर मुझे सुन रही हो तो फिर ये गाना खास तुम्हारे लिए। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। सिंपली आफरीन का साथ जुड़ गया है राइटर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। इट इज सेकेंड ऑफ सितंबर, दूसरे दिन की तरफ भी हम आ गए हैं ये नए महीने के। और जहाँ ये दूसरा दिन मेरे ख्याल से ना, जहाँ ये नया महीना ही लगा है, कहीं ना कहीं शाम के वक्त, दिन के वक्त तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन शाम के वक्त मुझे लग रहा है कि हमारा जो मौसम है हमारे फेवर में आते जा रहा है।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
0: वेदर अपडेट। हाँ जी, वेदर ये कह रहा है आज कैट मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो रहेगा 43 डिग्री सेल्सियस पर, मिनिमम हालांकि 32 पर है। और ये सिलसिला पिछले एक महीने से यही नजर आ रहा है। ह्यूमिडिटी जो है वो कल की तरह ही रहेगी, लेकिन देखिए आज का दिन और कल का दिन जो गुजरा है, यहाँ पर दोनों दिन का ये था फॉरकास्ट दैट बहुत तेजी से हवाएं चलने वाली हैं। अगर बात करें तो राइट नाउ ऑल्सो इट इज 24 किलोमीटर पर आवर, दैट इज क्वाइट ब्रीजी। बट यस, जब हवाएं तेजी से चलती है तब डस्ट भी अपने साथ लेकर आती है। हम रेगिस्तान में रहते हैं तो जाहिर सी बात है, और ऐसे में आपकी तबीयत खराब होने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। सो टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। और हाँ, ऐसे मौसम में या फिर जनरली सनस्क्रीन जो है, मैं हमेशा कहती हूँ उसे अपना बेस्ट फ्रेंड बनाइएगा, ठीक है ना। चलिए अगले गाने की तरफ जो मैं बढ़ रही हूँ ना, इट्स गोना टेक यू टू अगेन अ 90s नॉस्टैल्जिया बट इन अ वेरी मॉडर्न वे। मतलब ये गाना हर साल हर डिकेड में अगर आप सुनोगे ना, तो पुराना गाना होते हुए भी ना ये आपको रेलेवेंट और मॉडर्न ही लगेगा। ऑफ कोर्स बॉम्बे वाइकिंग्स का ये गाना राइटर और मिर्ची माइक से दिल तक आफरीन के साथ, इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्ड
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: सिर्फ बंगाल के नहीं हिंदुस्तान के हिट हीरो, नाम है इनका जीशु सेनगुप्ता। इनसे एक बार पूछा गया,
3: हूज मोस्ट लाइकली टू डाई टू प्रोटेक्ट यू? अपनी जान दे देंगे लेकिन आपको जरूर बचाएंगे।
4: आई हैव फ्यू पीपल, यस आई कैन से दे माय फ्रेंड्स, दे माय फैमिली, लाइक एटलीस्ट टू पीपल तो आई नो, आई एम नॉट नेमिंग देम बट दे नो
3: who they are.
4: टू पीपल दे विल डाई फॉर मी। या आई एम ब्लेस्ड,
2: जीशु सेनगुप्ता उस टू की लिस्ट में।
1: इट्स हॉट।
2: सिर्फ बंगाल के नहीं हिंदुस्तान के हिट हीरो, नाम है इनका जीशु सेनगुप्ता। इनसे एक बार पूछा गया,
3: हूज मोस्ट लाइकली टू डाई टू प्रोटेक्ट यू? अपनी जान दे देंगे लेकिन आपको जरूर बचाएंगे।
4: आई हैव फ्यू पीपल, यस आई कैन से दे माय फ्रेंड्स, दे माय फैमिली, लाइक एटलीस्ट टू पीपल तो आई नो, आई एम नॉट नेमिंग देम बट
3: दे नो who they are.
4: टू पीपल दे विल डाई फॉर मी। आई एम ब्लेस्ड।

जुबिन नौटियाल की आवाज में सैयारा का ये खूबसूरत सा गाना राइट हियर ऑन मिर्ची। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक सिंपली आफ्रीन का साथ है दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग। और वेनेसडे के दिन आ गए हम यार, हफ्ते का ऑलमोस्ट 80% खत्म हो गया है इसी के साथ, और कल का दिन एंड देन इट्स वीकेंड। लेकिन आज के दिन को आगे बढ़ाने से पहले इतने सारे लोगों का जो गुड मॉर्निंग शुड मॉर्निंग का मैसेज आया है, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मेरे तरफ से भी मैं इन्हें गुड मॉर्निंग कहूँ। जैसे सैफुल्ला का गुड मॉर्निंग का मैसेज आता है, और फिर उसके बाद हरपाल संदूक फ्रॉम दुखान, इनका कहना है कि विशिंग यू अ डे एज ब्राइट एज योर स्माइल, आपको भी मैं यही विश करना चाहूंगी। आली शान का मैसेज आता है, गुड मॉर्निंग आफरीन, देन आई हैव इमरान सिंह, गुड मॉर्निंग, रेडी टू बी फ्रेंडली वॉइस दैट अकंपनीज थाउजेंड्स ऑफ पीपल थ्रू देयर मॉर्निंग रश, थैंक यू सो मच। नाजनीन जी का भी मैसेज आता है, वेरी गुड मॉर्निंग एंड 5000 1896 माई फ्रेंड्स, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको भी गुड मॉर्निंग शुड मॉर्निंग कहना है देन हियर आई एम। मीनवाइल बात करें अगर कतर में होने वाली चीजें, जैसे हमारे कतर में ऑफकोर्स देर आर सो मेनी एक्सपीरियंसिस विच कम्स फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसे बीच बीच में आए दिन कुछ ना कुछ आते रहते हैं फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। जैसे फिलहाल अगर कुछ चल रहा है देन दैट इज लाइफ हब एंड वॉट इज दिस, दिस इज समथिंग विच इज हैपनिंग एट मुशरफ डाउन टाउन दोहा, और ये एक फ्री, एब्सोल्यूटली फ्री इमर्सिव ऑडियो विजुअल एक्सपीरियंस है एंड इट्स मोर अबाउट एक्सप्लोरिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर। लेकिन ये जो वर्ल्ड के आई थिंक सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग इश्यूज है अबाउट अ सस्टेनेबल फ्यूचर, इसे आप एक्सप्लोर करोगे इन अ वेरी स्टनिंग और इमेजिनेटिव इमर्सिव एंड इन्फॉर्मेटिव गैलरी में, और बच्चों के लिए आई थिंक सो दिस इज़ अ वेरी नाइस प्लेटफॉर्म के थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन भी हो जाता है एंड बहुत ही प्यारे विजुअल्स वहाँ पर नजर आते हैं, एंड विद दिस दिस इज़ एब्सोल्युटली फ्री, यू डोंट हैव एनी रीजंस फॉर नॉट गोइंग देयर, है ना। चले अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ विशाल ददलानी एंड सोनू कक्कड़ की आवाज़ में, and I like Coke Studio versions. So enjoy this track, Mike se Dil Tak Afreen ke saath, it's hot.

0: Well, that was two powerful voice, विशाल ददलानी और सोनू कक्कर की आवाज में ये जो गाना आपने सुना कोक स्टूडियो वर्जन ऑफ मदारी। और थोड़ी देर पहले जो हम सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे थे और इतफाकन ऐसे कोई गुड मॉर्निंग का मैसेज आ गया है हमें फ्रॉम इब्राहिम PH जो अपने सारे दोस्तों के साथ कार पूल करते हुए अपने काम की तरफ जा रहे हैं एंड इट्स अ लॉन्ग ड्राइव टुवर्ड्स रास लफान। और एक मजे की अच्छी बात यह है कि ऐसे टाइम पर आप कार पूलिंग करते हो तो ये तो एनवायरमेंट का भी फायदा होता है, इसमें आप सभी का भी फायदा होता है कि चलो साथ मिलके थोड़ा सा इंजॉय करते हुए गाने सुनते हुए मजे करते हुए जाए, सो व्हाट बेटर देन दिस। तो देखो भाई अगर अब तक कोई लोग है जो कारपूल के बारे में बहुत टाइम से सोच रहे हैं और अब तक नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, देन दिस कुड बी अ हिंट फॉर यू। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं एंड गुड मॉर्निंग का कहने का जरिया है 5000 1896 व्हाट्सएप नंबर है मेरा। दिस ब्रेक के उस पार मिलती हूँ मैं जबरदस्त बातों के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: यस ऑफ कोर्स मिर्ची हेल्पलाइन, बताइए।
1: हेलो सर, मेरी फोटो में ना कभी भी स्माइल अच्छी नहीं आती, क्या करूं?
2: बेबी डॉल, स्माइल फोटो में नहीं होटो पे अच्छी लगती है।
3: खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: Mirchi Mornings
0: with Mirchi Afreen. It's hot.
2: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
3: Well, Mirchi Mornings पर आफरीन का साथ है आपके साथ और मिर्ची घड़ी का इशारा हो रहा है exactly सुबह के 7 बजे की तरफ. और अगला गाना a brand new गाना रोमी श्रेया घोषाल की आवाज में. I'm sure you're gonna love this track. So stay tuned with us. That is on Mirchi. It's hot.
4: Time check in association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.

सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में ये गाना फ्रॉम द मूवी दिल से राइटर ऑन मिर्ची. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को और आज की खबर जो है इट इज फॉर ऑल द पीपल हु ड्राइव. मतलब अभी फिलहाल मुझे ज्यादातर लोग सुनने वाले ड्राइव करते करते ही सुन रहे हैं. लेकिन यस, एक छोटा सा रिमाइंडर फ्रॉम कतर्स मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर दैट हाई बीम हेडलाइट्स का इम्प्रॉपर यूज दूसरे ड्राइवर की विजन और कॉन्सेंट्रेशन डिस्टर्ब कर सकता है. ये तो हम जानते ही है, स्पेशली रात के वक्त, और ऑब्वियसली एक्सीडेंट का रिस्क भी बढ़ जाता है. और देखिए, ये कोई नया रूल वूल नहीं है. We all know this. बस प्रॉब्लम ये है कि कभी कभी ना हाई बीम ऑन करने के बाद उसे ऑफ करना हमारे मेमोरी के स्पैम फोल्डर में चला जाता है. We just forget it. So simple सी बात है, जब जरूरत हो हाई बीम यूज कीजिए, लेकिन सामने या अहेड कोई मोटरिस्ट हो तो बी एब्सोल्यूटली कंसिडरेट. रोड पे ब्राइट पर्सनैलिटी रखिए, हेडलाइट जरूरत नहीं है उसके लिए, लेकिन ठीक है. सो ड्राइव सेफ, ड्राइव कंसिडरेट एंड ड्राइव विथ मिर्ची. यानी माइक से दिल तक आफरीन के साथ. और अगले गाने की तरफ जो बढ़ रही हूँ मैं, दैट इज बैंड बाजा बारात का दिस ट्रैक. दिस इज दैट टाइम जब रणवीर सिंह पहली बार बड़े पर्दे पर आए थे एंड इट टुक क्वाइट सम टाइम. मूवी स्टार्ट होने के 20 मिनट के बाद मुझे रियलाइज हुआ, अच्छा ये हीरो है, हीरो जैसा तो लग नहीं रहा है. आपके साथ भी ऐसे ही हुआ था? बेनी दयाल और हिमानी कपूर की आवाज में ये अगला गाना ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Milci. Iscabana, Uscabana, Sacabana, Rabana, Burca, Burca, La Virpa, La Burca,
1: Milci, Burca. Hello.
2: Good evening, Mr. Srivastav. मैं मॉडर्न स्कूल से बोल रहा हूँ, आपके बेटे के स्कूल से. How are you?
1: I'm very fine, thank you.
2: अतुल वैसे पढ़ाई लिखाई में यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके मार्क्स भी अच्छे आते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बिल्कुल आगे नहीं है.
1: I know, वो खेल में कुछ ऐसा है नहीं खास ज्यादा. हाँ.
2: नहीं, वही मैं आपको बताना चाह रहा था. अच्छा मिस्टर श्रीवास्तव, क्योंकि हम 26 जनवरी पे एक फंक्शन कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि पेरेंट्स भी उसमें पार्टिसिपेट करें. पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, जितना अच्छा परफॉर्म वो करेंगे उसके मार्क्स बच्चे को दिए जाएंगे. यू नो,
1: परफॉर्म मतलब क्या, परफॉर्म क्या करना होगा हमको?
2: कुछ भी ऐसा करिएगा जो कि बच्चों की चीज हो. आप प्लीज आके यहाँ पे पार्टिसिपेट करिए. आप आओ मिलो शिलो शालो करिए ना यहाँ पे आके स्टेज पे.
1: लगे हुए गेम है क्या ये?
2: आओ मिलो शिलो शालो.
1: पेरेंट्स को परफॉर्म करना होगा?
2: वो सिर्फ आप ही को परफॉर्म करना होगा, आप ही को ये पूरा बोलना होगा आओ मिलो शिलो शालो. एक्चुअली प्रॉब्लम भी है, हमारे पास चार ही थे उसमें से यही बचा है. आओ मिलो शिलो शालो अगर आप ले सकते हैं तो आप इसे प्लीज परफॉर्म कर लीजिए ताकि उसके मार्क्स अच्छे आए. राइट,
1: पूरी कोशिश करूंगा. आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट.
2: देखिए शुरू ऐसे होता है, आप मेरे साथ साथ बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी. राइट, और इसमें बीच में ना क्लैप करना होता है इस तरह. आओ मिलो,
1: आओ मिलो
2: शिलो शालो,
1: कच्चा धागा,
2: रेस लगा लो,
1: रेस लगा लो,
2: दस पत्ते तोड़े,
1: दस पत्ते तोड़े,
2: एक पत्ता कच्चा,
1: एक पत्ता कच्चा.
2: इसको ना प्रैक्टिस करिएगा, आप तेज से बोलेंगे. दस पत्ते तोड़े,
1: तोड़े
2: या मिस्टर श्रीवास्तव, दस पत्ते तोड़े, दस पत्ते तोड़े,
1: दस दस दस पत्ते तोड़े.
2: हिरण का बच्चा, हिरण का बच्चा, सब हिरण का बच्चा.
1: ओके ओके, सॉरी सॉरी, हिरण का बच्चा.
2: घोड़ा दौड़ा दुगड़ू दू,
1: घोड़ा दौड़ा दुगड़ू दू.
2: श्रीवास्तव बोले कुकड़ू को, मिस्टर श्रीवास्तव बहुत अच्छा लगता है जब बाप कोई बच्चा बनने की कोशिश करता है. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आपकी वाइफ ने मुझे नंबर दिया था, आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका मुर्गा बन गया है.
1: यार ये कुछ सुनेगा
2: सर, ये सर ये सब सुन चुके हैं. अब प्यार से एक बार बोल दीजिए, इसको रिपीट कर लीजिएगा, बार बार बोलिएगा कुकड़ू को.
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on मिर्ची. It's hot.
4: Ready?
5: Ready.
4: To learn?
5: Yes.
4: To play?
5: Absolutely.
4: To grow?
5: With Maserati.
6: This school season, fuel every day with delicious and nutritious Maserati fresh products.
5: Milk, cheese, yogurt, labneh.
6: From breakfast to lunchbox and snacks, Maserati has your family covered. Grow with Maserati freshly from Qatar.
7: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left. They need 12 runs to win.
8: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है.
9: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
8: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms.
10: The Mentalist Suhani Shah.

Well, certainly not going to uljhao you in my baatein and take you directly to the next track, जो है पार्टनर मूवी से. और इसके बारे में ना बात करना बहुत जरूरी है, बिकॉज यार इसमें गोविंदा है, इसमें सलमान खान है, एंड ये दोनों ना 90s के सुपरस्टार. ये गाने में अपनी पूरी तरह से 90s वाले यादें बता रहे थे, जहाँ गोविंदा वॉज बींग हिमसेल्फ, बींग द चीची, द मस्ती खोर चीची विच ही इज, एंड सलमान खान हैड द स्वैग इन दिस सॉन्ग. सो कौन सा गाना है समझ तो लिया ना अब? नहीं सो चलिए सुन लीजिए, दैट इज वाजिद लवजन जोर्स ने हपंत की आवाज में सोनी देना खरे राइटर और मिर्ची थॉट.

दोस्तों, मेरे ख्याल से ना कभी कभी ट्रैवल प्लान जो है डेस्टिनेशन से नहीं, एक अच्छी फ्लाइट कनेक्टिविटी देख कर ही बन जाता है। कहीं का डायरेक्ट कनेक्शन मिल रहा है तो चलो वहीं चले जाते हैं ना। और ऐसे ही अगर सऊदी अरेबिया आपके अपकमिंग ट्रैवल प्लान्स में है, देन दिस अपडेट इज डेफिनेटली फॉर यू। कतर एयरवेज इज स्ट्रेंथनिंग इट्स सऊदी नेटवर्क दिस विंटर, ब्रिंगिंग बैक फ्लाइट्स टू 4 डेस्टिनेशंस, दैट इज कासिम, ताइफ, यानबू एंड तबुक। कासिम इसकी जो सर्विसेज है ये रिज्यूम होती है 25th अक्टूबर से, ताइफ की जो है 31st अक्टूबर से, वाइल यानबू एंड तबुक इसकी जो फ्लाइट्स है ये जनवरी से रिज्यूम होने वाली है। And each of these routes will have 2 flights every week. But here's a bigger picture, I would say, that Qatar Airways will operate over 155 weekly flights to Saudi Arabia this winter, which is like more than a 10% jump compared to that the summer, jo abhi chal raha hai. Well, Riyadh ke akele flights jo hai, 35 to 49 weekly flights jaate hai. And for frequent flyers ke liye, ek interesting bit bhi ye hai that Riyadh, Jeddah aur Dammam ke kuch eligible flights per Starlink powered कॉम्प्लीमेंट्री हाई स्पीड वाईफाई भी अवेलेबल है। तो अगर काम का ट्रिप जो है आपका, तो काम करते करते भी आप वहां पर पहुंच सकते हो। सो वेल, मैं हूं आफरीन आपके साथ, माइक से दिल तक, राइट ऑन मैट्री, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक पायलट फूक के प्लेन उड़ा रहा था तो उसकी जॉब फूक गई।
3: इसको प्लेन को हाई ले जाना था, ये खुद हाई हो गया। और लोगों को यार प्लेन के फॉल की पड़ी है, जबकि इसका डाउनफॉल शुरू हो गया।
4: मेरा हेयर फॉल भी।
5: मिर्ची, इट्स हॉट। शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
6: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar, this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snoo Noo. Tickets available in all leading ticketing platforms.

0: एनर्जी।
1: वेल देखो संजू राठौर की आवाज में आपने ये गाना तो सुन लिया जहाँ पर हिंदी और मराठी का मिक्सचर आ गया है। वेल अगर ये दो मिक्स हो सकते हैं तो फिर मलयालम और हिंदी क्यों नहीं मिक्स हो सकते हैं? हो सकते हैं। और जब श्रेया घोषाल के साथ हो तो भाई अरबिक हो या मलयालम हो, शी कैन डू इट ऑल राइट। सो अगला गाना अ वेरी ट्रेंडिंग ट्रैक एंड दैट इज कल्याणी रीमिक्स, श्रेया घोषाल एंड मेनी मोर, अर्जुन के लिए 54 एंड रॉन की आवाज में ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: first song and what a combination, music, sab kuch on point. And Mirchi ye bhai sabko khush karega boss. For all the listeners from Kerala, aapke liye ek gana khas humne dedicate kiya tha yahan par right here. Aur if I am right ki yahan par hamare jitne Indian expats hai, usme sabse zyada tadad Kerala state se hi belong karti hai. So this song right here for you guys. Main hu Afreen aapke saath. Very good morning and welcome back. Simply Afreen ka saath hai, writer on Mirchi Mornings. And it's time ke hum yahan par lights, camera, scene test khele. Scene scenario and it's a very hilarious scene. And aisa scene hai, mere khayal se sabhi ko iska jawab aayega. Because yaar, bahut funny hai. Ab to suni lo.
1: Lights, camera, scene test. Scene test.
2: Ayer, ayer. Venugopal ayer.
3: Venugopal ayer.
2: முத்துஸ்வாமி வேணுகோபால ஐயர்.
3: முத்துஸ்வாமி வேணுகோபால ஐயர்.
2: சின்ன சுவாமி முத்துஸ்வாமி வேணுகோபால ஐயர். பெரம்பதூர் சின்ன சுவாமி முத்துஸ்வாமி வேணுகோபால ஐயர். எக்க பரம்பியில பெரம்பதூர் சின்ன சுவாமி முத்துஸ்வாமி வேணுகோபால ஐயர்.
0: All right. इनका तो खत्म होने से रहा और उससे पहले आप आपके डेस्टिनेशन पर पहुंच जाए, आप मुझे बताइए भाई ये कौन सी मूवी का सीन है. इट्स अ वेरी लॉन्ग एंड फनी सीन जिसका मैंने आधा भी नहीं थोड़ा सा पार्ट सुनाया है बिकॉज दिस फेलो जस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन. 5000186 इज माई नंबर. इधर आओ और फटाफट से मुझे बताओ कि भाई ये आखिर सीन कौन सी मूवी से है. इसका इनफैक्ट बहुत सारे सीक्वल्स भी आए हैं बट ये मेरे ख्याल से नहीं. मैं क्यों बोलूँ ये तो आप बोलोगे. मैं नो मोर हिंट्स नाउ. 5000186 इज द नंबर एंड फटाफट से इधर आके आप मुझे बताइए ये मूवी है कौन सी. Meanwhile, अगले गाने की तरफ बढ़ते हुए दैट इज नीरज श्रीधर की आवाज में रमन और परवेश कादर का साथ. The three studs of 2000 का era, that is अक्षय कुमार, फरीन खान और रितेश देशमुख पर फिल्माया गया ये गाना फ्रॉम द मूवी हे बेबी. आई मिस यू इट्स हॉट.

0: Hollywood, Bollywood, Bold Eye. Only on Mirchi. It's hot.
1: राखी सावंत हाल ही में वर्ल्ड योगा डे गया है जहां हमने तरह तरह के लोगों को योगा करते हुए देखा है। आप उनके बारे में क्या सोचती हैं?
2: बहुत सारे लोग योगा जो है ना वो एसी में बैठ के करते हैं, कुछ लोग ओपन करते हैं। हमारा योगा हॉट योगा है। प्लीज आप राखी सावंत के साथ कॉम्पिटिशन कीजिए योगा में, मैं आपको पक्का हरा दूंगी।
1: ऐसी कोई चीज है ही नहीं राखी सावंत जिसमें हम आपसे जीत सकते हैं। आप सुन रहे हैं मिर्ची, शी इज हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bold Eye. Only on Mirchi. It's hot.
3: हर बार वही रेगुलर रिचार्ज क्यों? अपने हाला नंबर के लिए ओरेडो का योर स्पेशल ऑफर पाइए। मोर वैल्यू मेड फॉर योर नीड्स। अभी ओरेडो ऐप पर चेक करें या करीबी रिटेलर से मिलें। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडो।
4: सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
5: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
6: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
4: उसे सब पता है।
7: शी कैन रीड योर माइंड। She will blow your mind. She is coming for the very first time.
4: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar.
3: Prepare more value made for your needs. Abhi Oredo app par check karein ya kareebi retailer se milein. Experience more with Oredo.
4: सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
5: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
6: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
4: उसे सब पता है।
7: She can read your mind. She will blow your mind. She

0: वेल, सलीम मर्चेंट और श्रद्धा की आवाज में दैट वाज रिकी वर्सेस लेडीज, रिकी बेल वर्सेस लेडीज या लेडीज वर्सेस रिकी बेल, हाँ एक ही बात है, यही मूवी का गाना जहाँ रणवीर सिंह थे और परिणीति थी. आई थिंक सो दिस इज हर वेरी फर्स्ट मूवी वेयर शी वाज दैट क्यूट चबी सी, बट बड़े मजे का किरदार निभाया था. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. इट्स अ न्यू डे और इट्स अ न्यू सवाल, इट्स अ न्यू सीन. लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट हम यहाँ पर खेल रहे थे और बड़ा ही मजेदार सीन था. चलिए पहले सीन सुनाते हैं और फिर आपके आंसर सुनाते हैं.
1: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट. सीन टेस्ट.
2: अय्यर अय्यर वेणुगोपाल अय्यर.
3: वेणुगोपाल अय्यर.
2: முத்துஸ்வாமி வேணுகோபால ஐயர்.
3: முத்துஸ்வாமி வேணுகோபால ஐயர்.
2: சின்னஸ்வாமி முத்துஸ்வாமி வேணுகோபால ஐயர்.
0: ஓகே, திஸ் ஜஸ்ட் கோஸ் ஆன் அண்ட் ஆன் அண்ட் ஆன். இட்ஸ் அ வெரி வெரி வெரி லாங் நேம் ஆர் ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ ஐசா கோயி ஹே யா ஃபிர் கோயி சச்மே ஹே ஜிஸ்கோ யே பூரா டயலாக் யாத் ஹே. ஐ மீன் யே ஜோ பந்தா அப்னா நாம் சுனா ரஹா ஹே யே பூரா நாம் கோயி போல் சக்தா ஹே க்யா? ஐ வுட் பி ரியலி ஃபேசினேட்டட் இஃப் சம்வன் கேன் டூ தட் அண்ட் சென்ட் மீ அ வாய்ஸ் மெசேஜ் ஆஃப் தட். பட் கவுன் சி மூவி ஹே? பஹலே லோகோ கே आंसर्स तो सुन ले यहाँ पर.
4: गुड मॉर्निंग.
0: गुड मॉर्निंग.
4: मूवी हम मूवी का है. मिथुन चक्रवर्ती ये मिथुन चक्रवर्ती है हम मूवी का.
0: वेल, मैंने हम मूवी देखी तो नहीं है लेकिन ये हम मूवी का तो नहीं है. कौन सी मूवी का है? लेट्स हियर इट.
5: दिस इज नदीम.
0: हाँ नदीम.
5: गुड मॉर्निंग.
0: वेरी गुड मॉर्निंग.
5: फिल्म धमाल है.
0: धमाल है.
5: अर्शद वारसी.
0: दैट इज राइट.
5: आपका संजय दत्त.
0: बिल्कुल सही है. और हमारे साथ कौन जुड़े हैं यहाँ सुनते हैं.
5: थैंक यू सो मच.
0: हाँ जी.
6: अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम.
6: शाहरुख खान है.
0: शाहरुख खान. अच्छा,
6: धमाल मूवी का ही.
0: ओके, धमाल मूवी का. एंड ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है. देयर वाज जस्ट वन पर्सन हु सेड हम मूवी मैंने देखी नहीं ऑनेस्टली. सो यस, एंड आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ नेम्स टुडे. नसीम खान, भीम सिंह, जुलकरनैन, त्रिशा, मगेश, जाकिर, मोहसिन, रहमान, भारत, चार्ली, अख्तर, शुभम, अभिषेक. एंड अभी भी बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया है. मोहम्मद अमर है, जिग्नेश है, एंड कुंवर है. एंड यस, द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन. लेट्स प्ले द नेक्स्ट ट्रैक. अजय गो गावले और अतुल. बेसिकली मैं सिर्फ अजय अतुल कहूंगी और ये अगला गाना बजाने वाली हूँ यहाँ पर. एंड आई ऑलरेडी फील कि यार वीकेंड में हम चले गए क्या? ये गानों की एनर्जी कुछ इस तरह से ही दे रही है ना. एंजॉय दिस ट्रैक राइट ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है।
0: मेरे बेटे का वेकेशन है और मैं उसे कब से पूछ रहा हूँ कि उसे क्या करना है। स्विमिंग, म्यूजिक, पेंटिंग, डांस जैसे ऑप्शंस भी दिए उसे, पर वो जवाब ही नहीं दे रहा, क्या करूँ।
1: अरे सिंपल है ना, तू स्विमिंग वगैरह छोड़ दे, उसे पहले जवाब देना सिखा, समझे।
2: I'm joking.

0: Mirji Mornings with Mirji Afreen. It's hot.
1: 89.6
2: Mirji One. It's hot.
3: Well, Mirji Mornings पर मेरे साथ जुड़ ही गए हैं, तो जरा वक्त भी जुड़ा देते हैं, मिला देते हैं. यहाँ पर वक्त हो रहा है मिर्ची घड़ी में सुबह के 8 बजे एग्जैक्टली. और अगला गाना चलो जरा सुनते हैं, हमारे इमरान हाशमी का ये गाना. वेल ऑफकोर्स नई मूवी उनकी आवारापन 2 का ये गाना. एंड ऑफकोर्स वेन इट हैज टू बी इमरान, सारे गाने सुपर डुपर हिट तो होने ही है उनके मूवी के. जैसे कि अगला गाना साज भट्ट और सुबोध शर्मा की आवाज में. और मिर्ची इट्स हॉट.
0: टाइम चेक
4: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, खतर्स लार्जेस्ट private medical center.

0: चलो फिर बातें की जाए अबाउट सोना कितना सोना है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफ्टरनून को राइट टू रणमिर्ची मॉर्निंग्स एंड गोल्ड के बारे में बात करते हैं। एक मजे की बात बताओ कि यार जब हमारे गोल्ड के प्राइसेस बढ़ जाते हैं ना तो हम कहते हैं यार पहले ले लेना चाहिए था, और फिर प्राइस नीचे आए तो कहते हैं कि तो थोड़ा सा और वेट कर लेते, शायद और नीचे आ सकता है। एंड ऐसे वेट करते करते ये परफेक्ट टाइम कभी आता ही नहीं है। लेकिन इफ़ यू ट्रैक गोल्ड रेगुलरली यू विल नोटिस प्राइसेस कैन मूव क्वाइट अ बिट फ्रॉम वन डे टू अनदर, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाई वेदर यू planning to buy or simply watching it as an investment, tracking the trend can be more useful. So here it is, aaj ke gold rates.
1: Gold update.
0: So let's check today's PAM gold rates. That is 1 gram Lady Fortuna gold bar is for 585 Qatari riyal, 5 grams is for 2746 Qatari riyal, whereas 10 grams is for 5422 Qatari riyal, 1 ounce whereas it is at 16761 Qatari riyal, and 10 tola yani 10 tola is for gold bar is for 62242 Qatari riyal. To ye the aaj ke gold rates. Rates upar ho ya niche nazar hamesha honi chahiye. Meanwhile Afreen hai aapke sath right here on Mirchi. It's hot.
1: Stay ahead of today's gold rates with Al Fardan Exchange, PAM's official agent in Qatar. Buy authentic Swiss-made 24-carat PAM gold bars
2: and earn Qatar Airways Avios today.
1: Visit our branches or download the app now.

0: Milchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. La fiesta la burka. Milchi, burka.
1: हेलो
2: हेलो बेटा नवनीत,
1: आप कौन?
2: पापा कहाँ हैं?
1: पापा तो बाहर हैं, आप बताइए।
2: बेटा ऐसा है, आपके पापा और मैं हम बचपन से बड़े अच्छे दोस्त हैं। मेरे को बता रहा था आशीष, आपके पापा ने बताया था मेरे को कि बेटा है उसे बात कर लेना फोन पे कभी, उससे पूछ लेना। मेरे को आपके पापा ने कहा था कि मेरा बेटा कभी कभी शरारत भी करता है, चलो हर बच्चा कर देता है, लेकिन आशीष दिल का बड़ा अच्छा है क्योंकि मेरे बचपन का दोस्त है ना आपका पापा, वो किसी को डांट नहीं सकता। अच्छा बेटा, तुम्हारे पापा ने मेरे से ये कहा था आशीष ने कि तू ना नवनीत को फोन कर लियो क्योंकि वो तो कभी डांटता नहीं है आपको किसी बात पे। तो अभी आपके पास एक मिनट है क्या?
1: लेकिन आपको काम क्या है?
2: बस एक मिनट तक मेरे को आपको डांटना था।
1: पापा ने कहा था?
2: चुप कर। पापा ने कहा था मेरे दोस्त का पीछा ले रखा है तूने, उठा के पटक के रख दूंगा, बता रहा हूँ मैं तेरे को।
1: क्या हुआ अंकल?
2: बेटा आपके पापा ने कहा था मेरे से कि वो टाइम पे वो निकल गए हैं, उनको कुछ जरूरी काम था, आपको डांटने का दिल कर रहा था तो वो डांट नहीं पाए, तो मेरे से कहा था आप डांट देना मेरे, जो दोस्त तो दोस्त है ना हम आपस में।
1: अब मुझे क्यों डांट?
2: चुप कर।
1: किस तरह बात कर रहे हैं मेरे से? आप मेरी बात सुनो, मैं पापा से बात कर लूं।
2: पापा से बात करेगा दांत तोड़ दूंगा, ऐसे बैठे बैठे पापा की तरफ से डांट रहा हूं मैं। चुप कर ऐसा तूने।
1: पापा को ऐसे किस बात का मतलब, मुझे ये भी नहीं
2: पापा को किस बात का बुरा लगा, इससे मेरे को क्या लेना देना है। असल में पापा आपके बड़े बिजी हैं आज, तो मेरे को मैसेज किया था उन्होंने कि वह उसको डांट देना।
1: लेकिन बुरी क्या लगी?
2: अंकल कल देखो एक मारूंगा।
1: मैंने बदतमीजी क्या करी थी?
2: ये अपने पापा से पूछना ना, मैं आपके बीच में क्यों पढ़ूं?
1: कह रहा हूं मैंने कोई ऐसी बदतमीजी की नहीं इन दिनों में।
2: एक मरना घुमा के मैंने की नहीं।
1: अंकल ठीक है, मैंने वो भी कर लिया, मैं बदमाशी।
2: ठीक है मेरे साथ बोल कुकड़ू को बेटे।
1: क्या बोलूं?
2: नवनीत कुकड़ू को बोलो मैं रेडियो था, तुम रेडियो मिर्ची पे।
1: रेडियो मिर्ची आपको पापा ने ऐसे कब बताया था मेरा मुर्गा बनाने को?
2: चुप कर मारूंगा घुमा के। पापा ने कब बताया था मुर्गा बनाने को?
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

उफ़, एक ही गाने में स्वैग, स्टाइल, हैंडसम, ब्यूटी, इनोसेंस, हर चीज थी यार सलमान खान में इस गाने में, फ्रॉम दिस मूवी जब प्यार किसी से होता है। एंड सलमान खान का वो स्टाइलिंग, मतलब अभी तक याद करते हैं, और बस ये एक ही गाने में, रादर इन दिस एंटायर मूवी ही वॉज सुपर डुपर हैंडसम एंड स्टाइलिश। या आफरीन, वापस आओ, वापस आओ 90s से, अब तुम प्रेजेंट में आओ और लोगों का फायदा करो, और वो कैसे। वेल, एक्सचेंज रेट देखो आज का ये कहता है दैट एक रियाल के बदले मिल रहे हैं इंडियन रुपीस 26.05, वहीं जनाब पाकिस्तानी रुपीस इज एट 76.17, बांग्लादेशी टाका की बात करें तो 33.72 पर है, श्रीलंकन रुपीस इज एट 89.98 एंड नेपाली रुपीस इज एट 41.55। ये थे आज के एक्सचेंज रेट, घर भेजे पैसे, दे दो सारी खुशियां एंड खुशियों का वन एंड ओनली फॉर्मूला 89.6 मिर्ची 1 पर, माइक से दिल तक आप ट्रीन के साथ, इट्स हॉट।

0: में चीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक पायलट फूक के प्लेन उड़ा रहा था तो उसकी जॉब फूक गई।
3: इसको प्लेन को हाई ले जाना था, ये खुद हाई हो गया। और लोगों को यार प्लेन के फॉल की पड़ी है, जबकि इसका डाउनफॉल शुरू हो गया।
4: मेरा हेयर फॉल भी।
5: मिर्ची, इट्स हॉट। शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
6: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar, this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at STT Snow. Tickets available in all leading ticketing platforms.

और बॉलीवुड में ना इस कॉम्पिटिशन पर स्पोर्ट्स पर कई सारी मूवीज आई है, बट आई थिंक सो जो जीता वही सिकंदर हैज टू बी वन ऑफ द बेस्ट टॉप फाइव, या फिर कह सकते हैं हम टॉप थ्री में भी इसे हम गिन सकते हैं यार। आमिर खान की वो मूवी, साइकिलिंग कॉम्पिटिशन एंड कॉलेज की वो मस्ती, कॉलेज के वो दिन, राइवलरीज, ग्रुप्स, गैंग, व्हाट गुड ओल्ड डेज यार। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को। कैसे ना, ऐसा एक गाना आपको झट से कितनी सारी यादें ऐसे जहन में लेकर आ जाता है ना। सो विथ दिस, चलिए, आपकी याददाश्त तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन यहाँ पर अब हम खेलेंगे अगला गेम जहां पर आपका चैलेंज क्या है, जरा देखते हैं। देखिए, मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स में से आज एक ऐसी मूवी निकली है जिसका मैं स्टारकास्ट सुनाने वाली हूँ और आपने गेस करना है कि बॉस ये मूवी है कौन सी। ठीक है, सो मूवी का स्टारकास्ट कुछ ऐसा है। फर्स्ट है एक्टर शाहरुख खान, ठीक है, वेरी इजी। फिर है दीपिका पादुकोण, ओके। उसके बाद आते हैं, अब ऐसे तो इन दोनों की बहुत सारी मूवीज आई है, सो अब हियर इट गेट्स इंटरेस्टिंग। उसके बाद आते हैं बोमन ईरानी, ठीक है, उसके बाद आते हैं जैकी श्रॉफ, और उसके बाद आते हैं सोनू सूद। बताओ कौन सी मूवी की बात हो रही है यहाँ पर। 5000186 इज माई नंबर, फटाफट से आके यहाँ पर बताओ कि ये स्टार कास्ट जो है वो कौन सी मूवी से जुड़ा हुआ है, जहाँ शाहरुख खान है, दीपिका है, बोमन ईरानी है, जैकी श्रॉफ भी है, एंड वी ऑल्सो हैव सोनू सूद, और बहुत सारे हैं। आई डिंट वॉन्ट टू जस्ट लेट आउट ऑल द नेम्स, बस इतने काफी है। मीन वाइल अगले गाने की तरफ जो बढ़ रही हूँ ना मैं, इट्स अ बैंगर एंड इट रियली स्टेज इन योर माइंड। लेकिन ये गाना जब आप सुनोगे ना, इट्स अ न्यू सॉन्ग, अरूप खान की आवाज में ये नया गाना है। आई हैव नो आइडिया हाउ द वीडियो इज ऑफ दिस सॉन्ग, लेकिन एक ही शख्सियत आपके जहन में आएगी जब ये गाना सुनोगे, जिसका कोई लेना देना नहीं है ये गाने से, फिर भी आपको वो ध्यान में आएंगे, एंड दैट इज नन अदर देन, नहीं मैं नहीं बताऊंगी, आप ही बताएंगे। सुन लीजिए अरूप खान की आवाज में ये अगला लेटेस्ट ट्रेंडिंग गाना ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: इन दोनों में से हु इज मोस्ट लाइकली टू लिसन टू यू इवन टुडे?
1: डिफिकल्ट वन.
2: स्प्लिट बिटवीन माय चिल्ड्रन. सो बोथ ऑफ देम इन डिफरेंट वेज. बट या दे आर रिसेप्टिव जनरली. बट आई थिंक आई मस्ट बी इरिटेटिंग देम अ लॉट बिकॉज़ आई गिव टू मच एडवाइस. दैट्स व्हाट यू टेल मी. सो क्या बोलूं आपको?
0: सोनी रजदान, आपने कोई जवाब नहीं दिया. आलिया या शाहीन, किसी का नाम नहीं लिया. अगली बार जब आप आएंगे हम फिर से ये सवाल पूछेंगे. यू आर लिसनिंग टू मिर्ची, इट्स हॉट.
3: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
4: रेडी?
5: रेडी
4: टू लर्न?
5: यस.
4: टू प्ले?
5: एब्सोल्युटली.
4: टू ग्रो?
5: विद मेज़राती.
6: This school season, fuel every day with delicious and nutritious Maserati fresh products.
5: Milk, cheese, yogurt, labneh, eggs.
6: From breakfast to lunchbox and snacks, Maserati has your family covered. Grow with Maserati freshly from Qatar. सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
7: आई यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आई यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
8: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
6: उसे सब पता है.
9: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
6: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम एक स्टेज और दो कमाल. बुक योर टिकट्स नाउ एट एसटीटी स्नूनू. टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स. द मेंटलिस्ट सुहानी शाह.

0: मुस्कुराने तो तब मैं लगती हूँ जब आप लोग के इतने सारे मैसेज आते हैं। वेल, जुबिन नौटियाल और तुलसी कुमार की आवाज में ये गाना राइट हियर ऑन मिर्ची। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, सिंपली आफरीन का साथ है राइटर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और यहाँ पर मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स में से एक नया गेम और एक नया हिंट क्लू चैलेंज, जो भी है कहना है कह लो आप, बट बहुत सारे आंसर्स आए हैं आज यार मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स। आज ना मैंने यहाँ पर आपको कुछ स्टारकास्ट बताया था एक मूवी का और आपने गेस करना था बॉस ये मूवी है कौन सी। सो वेल, जहाँ शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण है एंड देन सडनली सो मेनी नेम्स अपियर है ना आपके दिमाग में, लेकिन नहीं, इट डजंट स्टॉप हियर बिकॉज इसमें फिर बोमन ईरानी भी है, जैकी श्रॉफ है एंड देन वी ऑल्सो हैव सोनू सूद। वेर एज कुछ लोगों को सोचना पड़ा ये कौन है, लेकिन ऑफकोर्स वी हैव सम रियली बॉलीवुड एक्सपर्ट्स हियर लिसनिंग टू अस जो कुछ ऐसे है।
1: गुड मॉर्निंग आफरीन,
0: गुड मॉर्निंग।
1: हाँ जी, सुना स्टार कास्ट और मूवी का नाम है हैप्पी न्यू ईयर।
0: ऑल राइट,
1: मूवी का डायरेक्शन
0: दैट इज राइट, दैट इज राइट। ओके, देयर वी हैव
2: हाय आफरीन,
0: हाय,
2: गुड मॉर्निंग,
0: गुड मॉर्निंग। हाँ जी अल्ताफ,
2: मूवी नेम इज हैप्पी न्यू ईयर।
0: ऑल राइट, और कौन सुन रहा है हमें और कौन कहना चाहता है आंसर, लेट्स हियर इट।
3: हाय आफरीन,
0: हाय प्रिंसन,
3: द मूवी नेम इज हैप्पी न्यू ईयर।
0: यस,
3: थैंक यू एंड हैव अ लवली टाइम। बाय बाय,
0: यू टू हैव अ लवली डे एंड देन वी
4: हैव। हेलो, गुड मॉर्निंग,
0: गुड मॉर्निंग।
4: कार्तिक
0: हियर, या कार्तिक,
4: आंसर इज हैप्पी न्यू ईयर।
0: दैट इज राइट।
5: हाय आफरीन,
0: हां जी,
5: ये मूवी का नाम है हैप्पी न्यू ईयर।
0: बिल्कुल, so that is absolutely the right answers आपने जो दिए हैं यहाँ पर। and in fact there are many more messages here। यहाँ ताहिर का मैसेज है, then कुलवंत सिंह का मैसेज है, when we also have who's this, अपना नाम नहीं लिखोगे तो मैं कैसे बताऊंगी, मैं नहीं बताऊंगी। यहाँ पे दो तीन मैसेजेस और हैं जिन्होंने अपने नाम नहीं लिखे हैं, लेकिन let's move ahead to the next track, that is अरिजीत सिंह की आवाज में ये अगला गाना। well it's not from happy new year but अच्छा गाना है, तो सुन लीजिए।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन
1: जी, बिल्कुल बताइए सवाल क्या है।
0: मैं मार दूंगा यार, बहुत गुस्सा आता है, रोज कोई ऑफिस में मेरी चेहरा बदल देता है, क्या करूं?
1: सिंपल है, बॉस की गोदी में बैठ जा, प्रमोशन भी मिलेगा।
2: रख, रख।

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: Mirchi, Mirchi Mornings. Mirchi Mornings. Mirchi, Mirchi Mornings. Mirchi Mornings.
0: Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot.
2: 89.6
0: Mirchi 1. It's hot.
3: वेल मिर्ची मॉर्निंग्स पर आफरीन का साथ तो पिछले 3 घंटे से है और हम आखिरी आवर पर आ चुके हैं हमारे शो के. सो विद दिस वक्त मिला लेते हैं मिर्ची घड़ी का इशारा एग्जैक्टली सुबह के 9 बजे की तरफ हो रहा है और कॉकटेल 2 का गाना आपका इंतजार कर रहा है और मिर्ची इट्स हॉट.
0: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर.

Well, आशा ताई की आवाज तभी भी एकदम रॉकिंग थी और कुछ साल बाद जब ये गाने में भी हमने सुना, मतलब इट्स ऑलवेज रेलेवेंट एंड हर एक्ट्रेस के साथ में एकदम मैच करती थी यार। वी मिस यू आशा ताई। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स और दिस इज गोना बी द फर्स्ट वीक आफ्टर द स्कूल बिगिंस, है ना। मतलब लास्ट वीकेंड तक हमने बच्चों को बहुत एंटरटेन किया और बच्चे अब स्कूल फाइनली गए हैं एंड नाउ ये एक हफ्ता ऑफ अर्ली मॉर्निंग्स, मॉर्निंग रश, एक मेरे ख्याल से एक हफ्ता तो लगता ही है ना सेटल होने लाइक फॉर द किड्स टू सेटल इन द स्कूल। कि यार सुबह जल्दी उठना, दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर द किड्स एंड आई एम श्योर कि कल के बाद तो आई थिंक सो दे कैन जस्ट रेस्ट फॉर सम टाइम एंड देन वो एक रूटीन बन जाता है विच इज सो एसेंशियल इन लाइफ। मतलब दो महीना जो ऐसे आराम होता है नॉट ओनली फॉर द किड्स बट ऑल्सो फॉर द पेरेंट्स के, हाँ मेंटली तो रिलैक्सेशन होती है कि हाँ यार सुबह कल टिफिन क्या देना है, अब पढ़ाई क्या करवानी है, ये सारी चीज़ों का स्ट्रेस तो होता नहीं है। बट दिस वीकेंड आई थिंक सो यू ऑल कैन जस्ट सोक इन द एक्सट्रीम केयर्स एंड रश एंड दिस मॉर्निंग क्रेजीनेस जो होती है। सो दिस वीकेंड मेरे ख्याल से कतर में होने वाले एक्टिविटीज के बारे में तो हम नहीं बात करेंगे, लेकिन आप एज अ फैमिली यू कैन बुक सुहानी शाह के टिकट्स फॉर श्योर। क्योंकि देखो ये जो इवेंट हो रहा है ना, द मेंटलिस्ट सुहानी शाह, इंडिया की एक नामचीन मेंटलिस्ट में से मानी जाती है, जो हमारे कतर पहली बार आ रही है एंड ये ऐसा कोई शो नहीं है जो आप अकेले जाके इंजॉय करें। मतलब आप अपने बच्चों को ले जा सकते हो, योर किड्स विल बी थिंकिंग वंडरिंग एंड उनका एक दिमाग चलेगा यार ये कैसे कर रही है, हाउ इज इट पॉसिबल एंड एवरी वन इज गोना हैव दिस क्वेश्चन। एंड ये देखने के लिए यू हैव टू विटनेस हर लाइफ। दैट इज 25th ऑफ सेप्टेम्बर इज द डेट, UNCC इज द प्लेस एंड देर आर क्वाइट अ लॉट ऑफ टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स जहाँ पर ये टिकट्स अवेलेबल है। क्यू टिकट्स है, प्लैटिनम लिस्ट है, स्नूनो है, जहाँ पर 30 Qatari riyal का कैशबैक भी मिल रहा है। सो वॉट आर यू वेटिंग फॉर दोस्त, आज तो तारीख भी 2 तारीख है सेप्टेम्बर की, यानी सैलरी तो आ चुकी है, तो बस एंटरटेनमेंट वाला एक फंड है उसमें ये टिकट्स निकाल लीजिए। राइट, माइक से दिल तक आप चाहिए हैं आपके साथ ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

आता माझी सटक सटक बम तेरा गुदे खाए, कमर पे तेरी बटरफ्लाई, बॉडी तेरी मक्खन जैसे, खाने में बस तू बटर खाए। Come on baby, kick it, kick it, काटू तेरी टिकट टिकट, खेलता नहीं क्रिकेट विकेट, पर ले लूं तेरी विकेट विकेट।

0: सा ढंग तेरा मुझसे चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा लगे मीठी जैसे शक्कर शक्कर आजा चला ले चक्कर चक्कर बाकी के लौंडे पकड़ पकड़ I am the baddest motherfucker.
1: Heartbeat.

0: Milci. Iska bana, uska bana, saka bana. Rabana. Burka, burka. Na virtua la burka.
1: Milci, burka. Hello.
2: Hello.
1: भैया आवाज साफ नहीं आ रही, कम आ रही आवाज।
2: भाई साहब आपकी दुकान से कल एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन ले गया था, याद है आपको?
1: हाँ जी।
2: आपकी दुकान से एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन लेके गया था मैं कल।
1: अच्छा अच्छा।
2: तो ये यार ये ड्रिल मशीन कैसे दी है, ये बहुत आवाज कर रही है, एक सेकंड रुको।
1: भाई ड्रिल मशीन तो आवाज तो करेगी यार।
2: एक सेकंड यार, आवाज करेगी। आप ये बंद कर, इसको बंद कर, बंद कर, बंद कर रमेश, इसे बंद कर दे यार। आप मरवाओगे, ड्रिल मशीन आवाज करेगी, यहाँ सारे जाग जाएंगे तिजोरी खुलने से पहले।
1: मैं
2: आपको यही बता रहा हूँ, ये ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, ये यहाँ पे जो मैं ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना, ये जिस कोठी में आया हुआ हूँ अभी इनकी तिजोरी खुली भी नहीं है। मैं तो ये ड्रिल मशीन यार, इसको बंद कर दे रमेश, बंद कर दे। भाई साहब ये तिजोरी मैं खोल रहा हूँ, ये आवाज बहुत कर रही है यार।
1: क्या कह रहे हो, तिजोरी ड्रिल मशीन कर क्या रहे हो आप?
2: इनके घर की चोरी कर रहा हूँ, खोपड़े में बात नहीं आती क्या तेरे यार? मुझे फंसवाएगा तू?
1: तो ड्रिल मशीन हमारे लेके तो चोरी करने गया।
2: एक तो आवाज इतनी दी है तूने, ड्रिल मशीन के सारे जाग जाएंगे यार।
1: चोरी करने ले गया
2: तुमने पहले के लिए बताया
1: मशीन से है कौन? तू खुद चोरी कर रहा है, मुझे फंसवाएगा।
2: मेरी बात सुन,
1: माँ का तू मुझे मरवाएगा। कल तुझे मुझे फोन कर दिया,
2: मेरी बात सुन।
1: हेलो
2: यार, कमाल है आप तो, मेरी रोजी फिर रात मार रहे हो।
3: सर सर सर सर मेरी बात सुनिए, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपकी दुकान का नंबर मुझे किसी ने दिया था, आप रेडियो मिर्ची में हैं, सब आपको सुन रहे हैं, आपके साथ मजाक किया है, मुर्गा बना दिया आपका।
1: कहाँ से बोल रहे भैया?
3: रेडियो मिर्ची से सर, आपके साथ मजाक किया है मैंने। जरा हंस के मेरे साथ एक बार।
2: अब ठीक है, मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on मिर्ची, it's hot,
4: it's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
5: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है।
6: She can read your mind, she will blow your mind. She is coming for the very first time.
5: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar, this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah.

पर जनरली अगर आप कोई इवेंट में जाते हो तो आप जाते हो तब ऐसा लगता है कि यार ये ऑडियंस को सक्सेसफुल इवेंट बिल्कुल एफर्टलेस लगता है, लेकिन बैक स्टेज इट्स एक्चुअली एन एंटायर इकोनॉमी एट वर्क. और इसको इन डिटेल आप देख सकते हो एट कतर इवेंट शो 2026 विच इज हैपनिंग करंटली एट DECC और ये सिर्फ कल तक है यानी 3 सितंबर तक है. वेल ये सेकेंड एडिशन है इसका बट स्केल हैज ऑलरेडी गॉन रियली बिगर दिस टाइम एक्चुअली क्योंकि दिस एग्जीबिशन हैज एक्सपैंडेड बाय अराउंड 100%. हाँ जी, देर आर 50+ एग्जिबिटर्स, 30+ कीनोट्स, पैनल्स एंड वर्कशॉप्स, मोर देन 5,000 डेलीगेट्स आर एक्सपेक्टेड. बट मुझे इसका इंटरेस्टिंग पार्ट ये लगा कि दिस is not really an event for the public. ये basically event industry के behind the scenes people का event है. Organizers, venues, agencies, technology providers, suppliers and decision makers all under one roof. और discussions भी काफी future focused है. AI technology, creativity, sustainability, mega event logistics, basically how the event of tomorrow will actually be created. So Qatar में सिर्फ बड़े events ही नहीं हो रहे हैं. Qatar is increasingly becoming a part of the conversation about what the future of events actually should look like. So बस अगर आप event industry से जुड़े हुए हो, आपका काम ही रोज ये है कि event जो दिखता है एक दिन का या फिर कुछ चंद लम्हों का event होता है जो इतना बड़ा नजर आता है, लेकिन उसके backstage महीनों की हफ्तों की जो मेहनत होती है, इतने सारे लोगों की जान लगी होती है, उन लोगों के लिए अगर यही इंडस्ट्री से आप बिलोंग करते हो देन यू शुड डेफिनेटली गो एंड चेक आउट दिस इवेंट, कतर इवेंट शो 2026 जो DECC में हो रहा है और वो सिर्फ कल तक है. मीनवाइल चलिए शो को आगे बढ़ाते हुए माइक से दूर तक आफरीन आपके लिए बादशाह और आस्था गिल की आवाज में ये गाना लेकर आइए और मिर्ची छोटी.

पे चढ़ेगी क्या? 1 2 3 गाड़ी के बोनट से निकले परी, लौंडे आगे कहीं टिकते नहीं, बातें हैं कड़ी मेरी, लिख ले कहीं, चल निकले कहीं।

ब्रांड न्यूज में नाम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा। रहने दे मुंह बंद रख, आंखें जो कहती है कहने दे, बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद को बहने दे।

0: में शी स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक पायलट फूक के प्लेन उड़ा रहा था तो उसकी जॉब फूक गई।
3: इसको प्लेन को हाई ले जाना था, ये खुद हाई हो गया। और लोगों को यार प्लेन के फॉल की पड़ी है, जबकि इसका डाउनफॉल शुरू हो गया।
4: मेरा हेयर फॉल भी।
5: मिर्ची, इट्स हॉट। शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
6: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar, this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at STT Snow. Tickets available in all leading ticketing platforms.

0: जानते हो, किसी की सक्सेस को एक्सप्लेन करने का सबसे आसान वर्ड है किस्मत, है ना? हम कितनी आसानी से कह देते हैं कि अरे उसकी तो किस्मत अच्छी थी, उसे तो मौका मिल गया, उसके लिए तो सब कुछ इजीली हो गया। बस प्रॉब्लम ये है कि हमें रिजल्ट दिख जाता है, उसके पीछे के रीटेक्स नहीं दिखते हैं। कितनी बार कोई गिरा, कितनी बार रिजेक्ट हुआ, कितनी बार खुद पर डाउट हुआ, और फिर भी अगले दिन उठकर दोबारा से ट्राई किया। ये सब कुछ तो दिखाई देता ही नहीं है ना, और इसीलिए आज की मेरी शायरी इसी थॉट पर बेस्ड है।
1: आफरीन की डायरी से शायरी। शायरी
0: तो अर्ज किया है कि विरासत में हाथ से मिले, विरासत में हाथ से मिले, हादसों से तजुर्बे मिले, तजुर्बों से किरदार बना, किरदार से फिर नाम बना, नाम हुआ तो पहचानने लगे, समझ रहे हो, नाम हुआ तो पहचानने लगे, गैर भी मुझे अपना मानने लगे। मुनीर, सीखा है गिर कर उठना मैंने, मुनीर खान की शायरी है ये। मुनीर, सीखा है गिर कर उठना मैंने, लोग मेरी कोशिशों को किस्मत मानने लगे। क्या बात है। शायद लकी दिखने से पहले इंसान को बहुत बार अनलकी फील होना पड़ता है। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ, राइटर ऑन विच इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: Delhi Belly, Jalsa, Brown जैसे content के creator. मिस्टर अभिनय देओ
3: मोस्ट लाइकली टू रिमूव बाल की खाल मतलब तह तक जवाब वो बताओ
4: वेट
3: टेल
4: आई हैव अ लिस्ट भयंकर समय लग जाएगा तो उसके अंदर ना घुसे तो ही बेटर है बट मेरे सब लोग आजू बाजू में वही हैं सब बाल की खाल निकालने वाले ही हैं आई टेल यू व्हाट आई मीन ही इज पास्ड अवे बट माय फादर माय गॉड एनीथिंग दैट आई डू एनीथिंग दैट एनी स्क्रिप्ट इज सेड बट ऐसा क्यों अरे भाई साहब film hai imagine no but why and he was a filmmaker an actor himself
2: Abhinay Deo the director is talking about his father Ramesh Deo one of the finest actors the Hindi and the Marathi cinema has seen aap sun rahe hain Mirchi it's hot
0: Bollywood Bolda
1: only on Mirchi it's hot
5: सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
6: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट
7: कैसे किया सीरियसली कैसे किया ये
5: उसे सब पता है
8: शी कैन रीड योर माइंड शी विल ब्लो योर माइंड She is coming for the very first time.
5: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment. Get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah live in

0: अफरीन बिल्कुल बढ़िया 90s की बात चल रही है यहाँ पर। आज बहुत लवली ड्रेस हो आप, लेट मी टेल यू जो लोग सुन रहे हैं एक विजुअल एक इमेजिनेशन का भी एक रहता है ना। अंशु इज वेयरिंग अ रेड टॉप यहाँ पर और ब्लैक स्कर्ट है, प्लीटेड स्कर्ट है और बो है टॉप पर, इमेजिन किए। सो वेल कपड़ों की बात हो रही है और 90s की बात हुई है, ताल मूवी की बात हुई यहाँ पर। ताल मूवी में ऐश्वर्या के कपड़े, डू यू रिमेम्बर व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रांजिशन इट वाज के एक विलेज गर्ल, माउंटेन गर्ल, सिंपल वाइट सॉफ्ट फैब्रिक्स शिफॉन से एकदम ड्रामेटिक कपड़े, वेयर शी गोज टू मुंबई, मतलब किस तरह से कपड़े आपकी पर्सनालिटी
1: को डिफाइन
0: करते हैं, क्या कहना है इस पर?
1: ऐश्वर्या का जो ओवरऑल लुक था, इनफैक्ट ताल के बारे में मुझे पता नहीं कितने लोगों को ये बात पता होगी, सुभाष काय ने इंश्योर किया था कि जो फिल्म का फर्स्ट हाफ है उसमें ऐश्वर्या जो है ना ही सिर्फ कपड़ों के सेंस में सिंपल लगे, इनफैक्ट इट वाज एन एब्सोल्यूट नो मेकअप लुक।
0: ट्रू दैट, यस।
1: जब मेकअप आर्टिस्ट ने शुरू के फेस के लिए ऐश्वर्या के साथ हल्का सा भी स्किन के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, लिटरली सुभाष काय ने यह कहा था कि प्लीज जाओ और अपना चेहरा धो के आओ, ही डिडंट वांट एनीथिंग एक्सेप्ट फॉर अ मॉइस्चराइजर।
0: Wow.
1: तो ऐश्वर्या जो आपको इस फिल्म में नजर आई है शुरू में ऑर्गेनिकली पूरी तरह से अपने ओरिजिनल फॉर्म में नजर आई है। एंड ऐश्वर्या एक ऐसी ब्यूटी है यार, अगर उसके कपड़ों की बात करें चाहे आप उन्हें सादगी से पेश करें या तो एक दीवा के तौर पे पेश करें, शी नोज हाउ टू कैरी हर सेल्फ क्वाइट वेरी वेल एंड दैट फिल्म बेसिकली डिपिक्टेड हर एंटायर कैरेक्टर।
0: देखो भाई जब लड़कियों से फैशन के कपड़े के ये सब बातें करने लगेंगे ना तो हमारा सिलसिला बहुत लंबा चलेगा। तो यहाँ पर मैं लेना चाहती हूँ अलविदा, क्योंकि यार हम दोनों अगर ये बातें करते बैठ जाएंगे तो दिस शो इज नॉट गोइंग टू एंड। सो हियर इट इज, टाटा बाय बाय सायोनारा, आप अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे कल विद डबल ट्रिपल एंड फोर टाइम्स एनर्जी बिकॉज इट इज आवर वीकेंड। विशाल शेखर, के शान और तुलसी कुमार की आवाज में अगला गाना माइक से दिल तक आफरीन के साथ ऑन मर्चेंट्स हॉट। Authentic, original, and better than our right.

0: आवाज में ताल मूवी का ये टाइटल ट्रैक 90s नॉस्टैल्जिया हिटिंग हार्ड राइट नाउ. और जहां 90s की बात हुई है तो थोड़ा सा ये चर्चा आगे बढ़ाते हैं. लेकिन ये चर्चे को आगे बढ़ाने के लिए मैं अकेली नहीं हूँ. यहाँ पर मेरे साथ में है अंशु. है अंशु,
1: क्या हालचाल?

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: यस ऑफ कोर्स, मिर्ची हेल्पलाइन बोलिए।
0: इतनी गर्मी है यार, उसमें एसी नहीं चल रहा। लैंडलॉर्ड को कितनी बार बोला, रिपेयर ही नहीं करवाता, क्या करूं?
1: एसी नहीं चल रहा तो लैंडलॉर्ड क्या करेगा? सिंपल है, एयर लॉर्ड को बोलो, एयर लॉर्ड, ठीक है?
2: खोपड़ी तोड़।

0: कमल कुमार सानू एंड कविता कृष्णमूर्ति की खूबसूरत सी आवाज एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज फ्रॉम द फिल्म खूबसूरत, जो की रिलीज हुई साल 1999 में। इस फिल्म में अगर हमको कोई नजर आए तो वो है संजय दत्त एंड उर्मिला मंतोड़कर। लेकिन यार बात है कि कुछ गाने ऐसे होते हैं ना जो आप इंस्टेंटली कनेक्ट कर पाते हैं, जिनसे आप इंस्टेंटली जुड़ पाते हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि 90s के ये ऐसे कुछ गाने हैं जो हमारी यादों को ना ही सिर्फ पूरी तरह से फ्रेश करते हैं बल्कि हाँ बैक टू मेमोरी लेन हमें ले ही जाते हैं। हैविंग सेड दैट, मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 10:06।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: वैसे सपने को लेकर ना एक बहुत ही खूबसूरत सी बात इस वक्त मेरे जहन में जरूर आती है।
2: मिर्ची अंशु।
0: फर्स्ट ऑफ वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू मीठी मिर्ची एंड दिस इज आरजे अंशु विद यू। वेल, एक बार फिर से आपकी जिंदगी में मिठास के साथ स्पाइस का तड़का लगाते हुए मैं आ ही चुकी हूँ। यह जिंदगी में ना सपने देखना बेहद जरूरी है, वो सपने जो आपकी जिंदगी की खूबसूरत यादों को एक बार फिर से लेकर आते हैं, वो सपने जो आप अपने आज के लिए देखते हैं, वो सपने जो आपने आने वाले दिनों के लिए अपनी जिंदगी में संजोए। तो जहां पर सपने देखना जरूरी है, वहीं उससे भी ज्यादा जरूरी वो है कि भाई उस सपने तक पहुंचने के लिए, उसे पूरा करने के लिए जो कुछ भी हमारे हाथ में है ना, वो हम सब कुछ कर जाएं। यार देखो, जिंदगी को जीना जरूरी है, भागदौड़ में हमेशा रहना ना, मैं इस बात पे उतनी यकीन नहीं रखती। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि वो भागदौड़, वो सारी की सारी जद्दोजहद आपकी जिंदगी में वो खुशी लेकर आती है जो आपके सपने को साकार होने में आपकी मदद करती है, तो ये काम जो है ना जरूर करना। तो सपने देखना जरूरी है, लेकिन सपनों को पूरा करने की कोशिश करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। और इन दोनों के बीच ना एक बहुत बड़ा सा फासला है जो बहुत नाजुक सी डोर से बस अलग हुआ है, लेकिन ये फासला काफी बड़ा है। सपने तो हजार दिखते हैं, लेकिन पूरे उन्हीं के होते हैं जो दिलो जान से, पूरी मेहनत से, शिद्दत ईमानदारी से उन सपनों को पाने के लिए, उन्हें पूरा करने के लिए लग जाते हैं। तो बस सुबह सुबह मोटिवेशन का ये डोज जो है मुझे आपको देना था, जरूर देना था। एंड आपको भी अब मुझे कुछ देना है भाई, एक गुड मॉर्निंग वाला मैसेज, वो गुलाब, आई एम वेटिंग। 5000 1896, लेट्स गेट कनेक्टेड देयर। इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु। शो की शुरुआत करते हुए अरिजीत सिंह की आवाज में ये प्यारा सा गाना आप तक, एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: Mirchi.
1: Escabana, buscabana, sacabana. Rambala. Murga, murga. La vieja la murga.
2: Mirchi, murga.
3: Hello.
4: Hello.
3: हेलो हाँ बोलो कौन
4: हेलो इधर से बोल रहा हूँ आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
3: हाँ बोल कौन रहा है
4: बोल कौन रहे हो कंप्लेंट करी थी आपने सीवर साफ करने की नीचे से बोल रहा हूँ आपके सीवर में घुसा पड़ा हूँ
3: बोल कौन रहे हो
4: आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
3: हाँ बोला था
4: ओ भैया मेरी जान को बचाओ यहाँ पे बहुत गहरा है यार आप लोग खाते क्या हो कितना गहरा कर दिया आपने
3: पूछे घुसे थे क्या अंदर
4: ज्यादा सवाल मत करो मेरी बात सुनो सिर्फ
3: हाँ बोलो
4: यार आपके टॉयलेट पे आपकी कोई बैठा के क्या क्या फेंक रहा है यार ऊपर से बंद करो सर ओ भैया मेरी जान को बचाओ यहाँ पे बहुत गहरा है यार आप लोग खाते क्या हो कितना गहरा कर दिया आपने
3: कौन बोल रहा है कहाँ घुस गए यार
4: हेलो इधर से बोल रहा हूँ आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
3: हाँ हाँ बोला था हुआ क्या है कुछ तो बताओ
4: ज्यादा सवाल मत करो मेरी बात सुनो सर यार आपके टॉयलेट पे आपकी कोई बैठा के क्या क्या फेंक रहा है यार ऊपर से बंद करो सर
3: कब आया था कब घुसा अंदर
4: फिर सवाल यार मैं यहाँ पे अटका पड़ा हूँ मुझे बाहर निकालो यार कैसे भी करके
3: तू कहाँ से रहा है तो नहीं हो गया है
4: सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी नीचे घुसा पड़ा हूँ आपके सीवर में बाहर निकालो यार
3: मैं तो इधर ऑफिस में हूँ अपने
4: ऑफिस क्यों गए सीवर साफ करवाना था मैं तो यहाँ पे घुसा पड़ा हूँ ना अंदर
3: मेरी सीवर में घुसा है किसी और के सीवर में घुस गया
4: ये बदबू से पता चल रहा है सीवर तेरा ही है यार
3: के सीवर में मरा रहा है तू
4: गाली तो मत दो
3: हेलो
4: हेलो
3: फिर फोन कर दिया तूने
4: अच्छा सीवर साफ हो जाएगा काम करो एक चीज बोलो
3: क्या बोलो
4: कुकड़ुकू
5: सर आई एम सो सॉरी मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मुझे किसी ने बताया था कि आपने सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका मुर्गा बन गया
3: कुकड़ुकू
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स

निकिता गांधी की पावर पैक आवाज. फिल्म का नाम टाइगर जिंदा है एंड आई एम प्रीटी श्योर जितने भी सलमान फैंस हैं उनकी जिंदगी में ना इस वक्त भाई साहब वो नहीं आपके भाई हमारे भाई नहीं उनका तड़का उनका मैजिक जो है एक बार फिर से लग ही गया होगा. मिर्ची अंशु वैसे मैजिक की बात करूं तो मैजिकल एंट्री इस वक्त अगर किसी की हुई है तो वो है स्कूल्स में एंड सारे के सारे बच्चों की. किसी की ड्यूटी कम हुई तो किसी की ड्यूटी जो है वो बढ़ चुकी है. हाँ जी, सुबह के वक्त जब फाइनली बच्चे स्कूल्स जाते हैं मम्मी की जिंदगी में थोड़ी सी राहत आती है तो वहीं टीचर्स ये कहते हैं कि इतने महीने हम संभालते हैं, दो महीने हमने आपके साथ क्या छोड़ा, बच्चे तो हमारे जैसे लग ही नहीं रहे. डिसिप्लिन इधर से उधर हो चुका है. इनफैक्ट अब जो है रिचुअल काफी बदल चुका है. मतलब टीचर्स बच्चे से कहते हैं कि वेकेशन में दो महीने जो जो घर पे आए हो ना यहाँ पे वो सारी की सारी चीजें जो है बिल्कुल कंटिन्यू नहीं होनी चाहिए. एक दौर था हमारे जमाने का जब हमारे माँ बाप हमसे कहते थे कि स्कूल की जितनी मस्ती है ना बेटा स्कूल में छोड़ के आया करो. आज के बच्चे और हमारे जैसे तब के बच्चे दोनों में काफी गैप है, अब क्या ही बोले. चलिए लेकिन जहां पे बात होती है स्कूल्स की, एक बार फिर से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन ने एक इंपॉर्टेंट फैक्टर को हाईलाइट किया है. सारे पेरेंट्स एक ही बात कही है कि बच्चे जब छोटे होते हैं या चाहे बड़े होते हैं प्लीज उनका जो बैकपैक है उसके वेट को लेकर काफी ध्यान दें. जितना भी आपके बच्चे का वजन है उनका बॉडी वेट है उनके जो बैकपैक का वेट है उससे 10-15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए. आज के डेट में सब कुछ इतना एडवांस हो चुका है. अगर आपको लगता है कि भैया बुक्स के अलावा खाने का डिब्बा भी जोर जोर के भरना है, अरे भैया एक लंच बैग का अलग सा बैग ही बना दो. इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगी कि ट्रॉली बैग्स जो हैं काफी प्रचलन में हैं, हमारे जैसा जमाना ना रहा. अब बच्चे जो हैं आराम से ड्रैग कर बैग्स को स्कूल ले जा सकते हैं. तो प्लीज इंश्योर कि बच्चों के स्पाइन हेल्थ में उनके बैक हेल्थ में कहीं कोई भी इम्पैक्ट ना पड़े एंड सेफली अच्छी तरह से उनका ग्रोथ भी हो, मेंटल फिजिकल एंड हाँ वो एंटरटेनमेंट वाला भी. हाँ मेरा जोर सबसे ज्यादा वो लास्ट पॉइंट पे होता है. चलिए शान एंड वनिका नायक की आवाज में ब्रांड न्यू ट्रैक आप तक पहुंचाते हैं. कुछ देर में होंगी और भी बातें. एंजॉय. बंदी का नाम अंशु.

0: अच्छी स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक पायलट फूक के प्लेन उड़ा रहा था तो उसकी जॉब फूक गई।
0: इसको प्लेन को हाई ले जाना था, ये खुद हाई हो गया। और लोगों को यार प्लेन के फॉल की पड़ी है, जबकि इसका डाउनफॉल शुरू हो गया।
3: मेरा हेयर फॉल भी।
4: मिर्ची, इट्स हॉट। शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
5: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snow. Tickets available in all leading ticketing platforms.

0: Well, हनून एंड श्रेया घोषाल की खूबसूरत सी आवाज है, व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज, ये प्यारा सा गाना तो इस वक्त मैंने आपको सुना दिया, लेकिन इस खूबसूरत से एक्सपीरियंस के लिए जरा सी सावधानी बरतना जो है इस वक्त बेहद जरूरी है।
1: मिर्ची अंशु
0: देखिए, ये बात आप और हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि पानी जो है ना जिंदगी में भाई गजब एक्सपीरियंसेस लेकर आता है। अगर पीने की बात करें भाई, जो तसल्ली पानी पीने के बाद मिलती है, मैं सच कह रही हूँ, मुझे भूख मिटाने से भी उतनी खुशी जो है ना होती है। लाइफ की हर एक बेसिक नेसेसिटी के लिए वाटर प्लेस अ डोमिनेंट एंड अ प्रोमिनेंट रोल। वहीं अगर मैं बात करूं मरीन एक्टिविटीज़ की, तो ये बात जो वाटर लवर्स हैं, जिन्हें वो वाटर एडवेंचर्स पसंद हैं, उनके लिए ये बात बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि भाई जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही है ना, हम जो है मज़े से उसे एंजॉय करें एंड जिंदगी के मज़े जो हैं हर एक एक्टिविटी के साथ लेते रहें। लेकिन इतना बताना चाहूँगी कि इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने खासकर सी गोअर्स को एक हिदायत के तौर पे यही बात कहने की कोशिश की है कि जितनी भी मरीन एक्टिविटीज हैं, करंट वेदर कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए बेसिकली स्ट्रॉन्ग विंड्स, हाई वेव्स एंड डस्ट अवॉइड करने की कोशिश करें। अगर आपको फिर भी लगता है कि ये जगह सेफ एंड सिक्योर है, तो पूरी की पूरी सेफ्टी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए ही आप जो है किसी भी एक्टिविटी में खुद को इंडल्ज करने की कोशिश करें। भाई मौका भी है, मौसम भी है, दस्तूर भी है, आने वाले दिनों में वेदर जो है और भी बेटर होने वाला है। इसलिए अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो रही है जहां पे लगता है कि 1% भी रिस्क है, उस सिचुएशन में खुद को सेफ रखना ही हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। चलिए आपसे एक बात पूछने की कोशिश करती हूं, अगर मैं वाटर एक्टिविटीज की बात करूं या एडवेंचर्स की बात करूं, तो क्या आपने कोई एडवेंचर्स कभी ट्राई किए और आपका सबसे फेवरेट एडवेंचर कौन सा है? फॉर मी इट इज डीप सी डाइविंग। आई जस्ट लव कैरिंग माई सेल्फ कम्प्लीटली इमर्स्ड इंडल्ज इन वाटर एंड भाई वो अंदर की समुद्र की खूबसूरती को देखना, उसको निहारना, नेचर के करीब जाना, मुझे जिंदगी में एडवेंचर्स में इससे ज्यादा प्यारा दूसरा एक्सपीरियंस और कोई नहीं लगता। हाउ अबाउट यू? इफ यू लव वाटर एडवेंचर्स, इफ यू एंजॉय देम, What according to you is your most favorite one? सुनो निगम और सुनिधि चौहान की आवाज में। Meanwhile, अगला प्यारा सा गाना मैं आपको वो सुनाती हूँ। 5000 1896 पर आपके जवाब का इंतजार करूँ। Enjoy। बंदी का नाम अंशु।

0: Hollywood, Bollywood, Bolder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: शंकर महादेवन,
3: यू रियली ऑल्सो रिवर्स एजिंग, तो हम गाने के बारे में बात कर रहे हैं, स्किन रूटीन के बारे में जरा, कौन सा रेटिनॉल, कौन सा क्या कर रहे हैं आप?
4: नहीं, ऑनेस्टली आई जस्ट रियलाइज जस्ट 2 years बैक, नॉट दैट दैट्स मेड अ चेंज, टू पुट दिस सनस्क्रीन, इट्स नॉट सनस्क्रीन द वन व्हिच यू यूज फॉर द स्पॉटिंग थिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट दैट सनस्क्रीन थिंग इज व्हाट माय वाइफ टोल्ड मी.
2: शंकर महादेवन भी सनस्क्रीन लगा रहे हैं, तो आप किस खेत की मूली हैं? आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
0: Bollywood Bollywood Bollywood Bollywood Bollywood
1: Only on Mirchi It's Hot.
5: सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
6: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
7: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
5: उसे सब पता है.
8: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
5: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QN's.
1: Mirchi, it's hot.
5: सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
6: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
7: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
5: उसे सब पता है.
8: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
5: The Mentalist Suhani Shah.

0: करण परंपरा टंडन की एक खूबसूरत सी आवाज एंड व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज फ्रॉम द फिल्म बागी 4। भाई ये गाना जो है ना दिल को छूता है, जरूर छूता है। वैसे जो अगली धुन मैं आप तक पहुंचाने वाली हूँ वो आपके दिल से दिल तक पहुंचने में कहीं कोई कमी ना छोड़ेगी।
1: मिर्ची अंशु।
0: पता है कई बार फिल्में जो है ना हमें उनके किरदारों के अलावा, उसकी स्टोरी के अलावा, अगर सबसे ज्यादा किसी बात के लिए याद रह जाती हैं तो वो है म्यूजिक। एंड मुझे तो ऐसा लगता है कि फिल्मों के ओवरऑल पूरे के पूरे परफॉर्मेंस को, इनफैक्ट उनके विजुअलाइजेशन को इन्हांस करने में अगर सबसे बड़ा किसी का हाथ है तो वह एक अच्छे संगीत का। गायक अपना काम करते हैं लेकिन बैकग्राउंड स्कोर जो होता है, जो बैकग्राउंड म्यूजिक होती है भाई, वो जो है ना तहलका मचाने में हमारी जिंदगी में कहीं कोई कमी ना छोड़ती। अब चलिए जी, एक ऐसी धुन है जो इस वक्त मैं आपके बीच पेश करने वाली हूँ जो 2000s में न जाने कितने लोगों के सेलफोन की कॉलर ट्यून रिंग टोन जरूर बनी बैठी थी। खासकर लड़कियों की ये स्पेशल फेवरेट हुआ करती थी।

अब ये कौन सी है, ये तो आप बताएंगे, शायद आपकी गर्लफ्रेंड की रही हो, आपकी मम्मी की रही हो, आपकी कोई क्लासमेट या क्रश की रही हो, या आपकी खुद की रही हो। 5000 1896 वी विल गेट कनेक्टेड देयर। इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु। आपके बीच पेश करने वाली हूँ मैं एक थीम म्यूजिक, आपको गौर से सुनना है, आइडेंटिफाई कर बस मुझे ये बताना है कि ये है तो है किस फिल्म से। करेक्ट आंसर 5000 1896। एंड मुझे बहुत खुशी होती है जब जब आपका जवाब आता है, ये बात जो है वो भूलना नहीं। हियर यू गो।

आई लव दिस मैन, आई एब्सोल्युटली लव दिस. मुझे फटाफट से बताओ, ये धुन सुनी तो आखिरकार कहाँ? 5001896 वेटिंग फॉर योर मैसेजेस. मीनवाइल सोहम की आवाज में ये अगला खूबसूरत सा गाना मैं आप तक पहुंचाऊं. एंजॉय. बंदी का नाम अंशु.

ऑलराइट, एक बार फिर से एक काम करते हैं कि जो सवाल मैंने कुछ देर पहले आप तक पहुंचाया था, फॉर द सेक ऑफ पीपल हु हैव जस्ट जॉइन, जल्दी से दोहरा देते हैं। तो अब से कुछ देर पहले ठीक मैंने आपके बीच एक धुन पेश की थी जहां पे आपको आइडेंटिफाई कर बस ये बताना था कि ये है तो है किस फिल्म से। 5000 1896 दिस इज अवर व्हाट्सएप नंबर एंड आई एम ईगरली लुकिंग फॉरवर्ड टू रिसीविंग योर रिप्लाइज। जल्दी जल्दी आइडेंटिफाई करें एंड मुझे ये बताएं कि ये धुन है तो है किस फिल्म से। हियर वी गो।

यार इसी ना जाना इसी ना पहचाना, तो बॉलीवुड लवर हुए तो हुए कैसे? तो अब तक अगर जवाब नहीं दिया तो फटाफट से बताओ 5000186 की ये आइकॉनिक सी धुन तुमने कौन सी फिल्म में सुनी। मीनवाइल अगले घंटे की तरफ आगे बढ़ते हैं, टिक के बने रहें, सुनते रहें कतर का नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन।

0: यार कुछ गाने होते हैं जो हम ना एंटरटेनमेंट के लिए सुनते हैं, लेकिन कुछ गाने ऐसे होते हैं जिनसे हम 101% रिलेट कर पाते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि इस गाने में कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी की दास्तान जो है वो ज़रूर छुपी हुई है। एंड अभी अभी बजरंगी भाईजान फिल्म से जो मैंने आपको गाना सुनाया, मेरे दिल में ना भाई वही हलचल मचाता है। क्या गजब आवाज़ जुबिन नौटियाल की। एंड कॉम्पोजिशन की अगर बात करें, प्रीतम दा आई लव यू। एंड खासकर इस गाने के लिए स्पेशल क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वो है लिरिसिस्ट यानी कि निलेश मिश्रा जी को। चलिए जी अब उस धुन की बात कर लें जिसने हमारी जिंदगी में हलचल मचाई है, जरूर मचाई है। मिर्ची अंशु। पता है कई बार ना कुछ कुछ गाने सुनने के बाद ना मेरे अंदर अलग सी फीलिंग आती है। मतलब खासकर अगर इश्क प्यार मोहब्बत की बात करूँ तो ऐसा लगता है अगर नहीं हुआ है तो होना चाहिए एंड जरूर होना चाहिए। नहीं अब तो नहीं, अब तो काफी वो फेज निकल चुका है। अपने कॉलेज टाइम की बात कर रही हूँ। हाई ऐसा गाना है, काश कोई हो जिसके लिए मैं ये महसूस कर सकूँ। हमारे लिए कईयों ने किया है। चलिए ऐसी कोई धुन है जो आपसे कुछ देर पहले मैंने आप तक पहुंचाई थी, आपको सुनकर आइडेंटिफाई कर बस मुझे ये बताना था कि ये है तो है किस फिल्म से। अब मैं एक अच्छा वाला काम कर देती हूँ जल्दी से, जिन लोगों ने अभी भी ज्वाइन किया उनके लिए मैं फिर से बजाती हूँ। अभी भी अगर सही जवाब पता चल जाए तो 5000186 पर भेज देना। मीनवाइल मैं ये बताऊंगी कि जनता जनार्दन ने क्या ही कहा है। सो हियर यू गो। जितनी खूबसूरत ये धुन उतनी ही प्यारी ये फिल्म यार। चले देखिए लोगों ने क्या कहा है।
1: हाय अंशु, जय जिनेंदर। ये मूवी का नाम है सातिया और गाना बहुत प्यारा है।
2: हेलो, ये मूवी का नाम है सातिया और गाने का नाम है हंसती रहे तू हंसती रहे।
3: गुड मॉर्निंग रेडियो मिर्ची। सातिया मूवी का सॉन्ग है हंसती रहे तू हंसती रहे। थैंक यू।
0: हाउ स्वीट, जितनी खूबसूरत अंदाज में आपने गाया है ना उसके बाद मेरे चेहरे में मुस्कान 101% आ ही गई है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। साल 2002 में रिलीज हुई ये फिल्म साथिया, जिसमें हमें नजर आए रानी मुखर्जी एंड विवेक ओब्रॉय। क्या खूबसूरत सी लव स्टोरी। डायरेक्टर शाद अली की ये डेब्यू फिल्म थी एंड स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले पूरी तरह से मणि रत्न साहब का एंड प्रोड्यूसर थे बॉबी बेदी। लेकिन अगर साथिया की असली धड़कन की मैं बात करूँ ना यार, तो वो था उसका म्यूजिक। क्योंकि जब एक तरफ AR रहमान साहब हो एंड दूसरी तरफ गुलजार साहब हो, तो आप समझ सकते हैं कि जो गाने हैं ना फिर आपको सिर्फ सुनाई नहीं देते, पूरी तरह से महसूस होते हैं। फिर चाहे मैं सोनू निगम की आवाज़ की बात करूं, अदनान सामी की बात करूं, मतलब हर एक बेस्ट सिंगर ने म्यूज़िक के साथ कुछ इस तरह से खेला है ना भाई कि हमारे दिल के साथ ये पूरी तरह से खेले गए। अब इसी के साथ इस वक्त साथिया का टाइटल ट्रैक ना सुना तो फिर क्या ही क्या। एंजॉय दिस ट्रैक 89.6 मिर्ची 1। इट्स हॉट।

0: Mirci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Yabana. Murga, murga. La vieva la murga. Mirci, murga.
2: हेलो
3: हेलो बेटा नवनीत,
2: आप कौन?
3: पापा कहाँ हैं?
2: पापा तो बाहर हैं, आप बताइए।
3: बेटा ऐसा है, आपके पापा और मैं, हम हाँ। बचपन से बड़े अच्छे दोस्त हैं। मेरे को बता रहा था आशीष, आपके पापा ने बताया था मेरे को कि बेटा है, उससे बात कर लेना फोन पे कभी, उससे पूछ लेना। मेरे को आपके पापा ने कहा था कि मेरा बेटा कभी कभी शरारत भी करता है, चलो हर बच्चा कर देता है, लेकिन आशीष दिल का बड़ा अच्छा है, क्योंकि मेरे बचपन का दोस्त है ना आपका पापा, वो किसी को डांट नहीं सकता। अच्छा बेटा, तुम्हारे पापा ने मेरे से ये कहा था आशीष ने कि तू ना नवनीत को फोन कर लियो, क्योंकि वो तो कभी डांटता नहीं है आपको किसी बात पे। तो अभी अभी आपके पास एक मिनट है क्या?
2: लेकिन आपको काम क्या है?
3: बस एक मिनट तक मेरे को आपको डांटना था।
2: पापा ने कहा था?
3: चुप कर। पापा ने कहा था? मेरे दोस्त का पीछा ले रखा है तूने, उठा के पटक के रख दूंगा, बता रहा हूँ मदर को।
2: क्या हुआ अंकल?
3: बेटा आपके पापा ने कहा था मेरे से कि वो टाइम पे वो निकल गए हैं, उनको कुछ जरूरी काम था, आपको डांटने का दिल कर रहा था तो वो डांट नहीं पाए, तो मेरे से कहा था आप डांट देना मेरे, तो दोस्त है ना हम आपस में।
2: अब मुझे क्यों डांट?
3: चुप कर।
2: किस तरह बात कर रहे हैं मेरे से? आप मेरी बात सुनो, मैं पापा से बात कर लूँ।
3: पापा से बात करेगा दांत तोड़ दूंगा, ऐसे बैठे बैठे पापा की तरफ से डांट रहा हूँ मैं। क्यों कर रहा था तूने?
2: पापा को ऐसे किस बात का, मुझे ये भी नहीं
3: पापा को किस बात का बुरा लगा, इससे मेरे को क्या लेना देना है। असल में पापा आपके बड़े बिजी हैं आज, तो मेरे को मैसेज किया था उन्होंने कि वह उसको डांट देना।
2: लेकिन बुरी क्या
3: लगी? अंकल कल देखो एक मारूंगा।
2: बदतमीजी क्या करी
3: थी? ये अपने पापा से पूछना ना, मैं आपके बीच में क्यों पढ़ूं?
2: कह रहा हूं मैंने कोई ऐसी बदतमीजी की नहीं इन दिनों में।
3: एक मरना घुमा के मैंने की नहीं।
2: ठीक है, मैंने वो भी कर लिया, मैं बदमाशी।
3: ठीक है, आप मेरे साथ बोल कुकड़ू को बेटे।
2: क्या बोलूं?
4: नवनीत कुकड़ू को बोलो मैं रेडियो मिर्ची से नवनीत बोल रहा हूँ, तुम्हारे पापा ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, तुम रेडियो मिर्ची पे।
2: आपको पापा ने ऐसे कब बताया था मेरा मुर्गा बनाने को?
3: चुप कर, मारूंगा घुमा के। पापा ने कब बताया था मुर्गा बनाने को?
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
6: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
7: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है।
8: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
7: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at STT Snoo. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist, Suhani Shah.

0: सुबोध शर्मा की ये पावरफुल आवाज, इनका गजब गाना यार, एक बार फिर से जब इसने हमारी जिंदगी में दस्तक दिया है ना, वही मैजिक इसने हमारी लाइफ में छोड़ने में कहीं कोई कमी ना की। चलिए जी, ये गाना तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन मैं आई हूं तो कोई बात भी आप तक पहुंचा दूं।
1: मिर्ची अंशु
0: ऑलराइट देन, क्यों ना अपनी डायरी से एक बार फिर से कोई तो जज्बात मैं आपके बीच पेश कर ही दूं। और आज बात करते हैं प्यार की, दुनिया का शायद सबसे खूबसूरत एहसास। लेकिन पता है क्या इसकी सबसे प्यारी बात क्या है, कि सही इंसान आपकी ज़िंदगी में आकर उसे बदलता नहीं है, बस आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी जगह बना लेता है कि फिर उसके होने से ना सब कुछ थोड़ा सा और खूबसूरत लगने लगता है। वही रास्ते होते हैं, वही शामें होती हैं, वही शहर, बस किसी एक के होने से हर चीज़ के मायने बदल जाते हैं। और शायद प्यार की सबसे खूबसूरत डेफिनेशन क्या है पता है, किसी का आपकी ज़िंदगी बन जाना नहीं, बल्कि आपकी ज़िंदगी में खूबसूरती से शामिल हो जाना। अरे वो इश्क ही क्या जो शर्तों पे किया जाए, जो तुम्हें मजबूर करे कि वो खुद ही खुद को भुला दे। यार प्यार के एहसास को शायद इस तरह हम जरूर देख सकते हैं, तुम मिले तो कोई कहानी नहीं बदली, बस हर कहानी खूबसूरत लगने लगी। जिंदगी तो पहले भी चल रही थी, लेकिन तुम आए तो जीने की वजह मिलने लगी। अब एक बात बताना, जब ये बात सुनी तो किसका चेहरा याद आया? क्या जिंदगी में ऐसा कोई है जिसके बारे में तुम सोच सके? 5001896 I'm waiting to listen to your stories. Messages भेजे Instagram मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु। Meanwhile, Lucky Ali एंड सुनिधि चौहान की आवाज में बहुत प्यारा सा गाना आप तक। Enjoy, बंदी का नाम अंशु।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक पायलट फूक के प्लेन उड़ा रहा था तो उसकी जॉब फूक गई।
3: इसको प्लेन को हाई ले जाना था, ये खुद हाई हो गया। और लोगों को यार प्लेन के फॉल की पड़ी है, जबकि इसका डाउनफॉल शुरू हो गया।
4: मेरा हेयर फॉल भी।
5: मिर्ची, इट्स हॉट। शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
6: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at STT Snow. Tickets available in all leading ticketing platforms.

अरिजीत सिंह की खूबसूरत सी आवाज और व्हाट अ लवली ट्रैक इज, फिल्म का नाम लापता लेडीज। लेकिन सच कहूं ये गाना सुनने के बाद तो लगता है सब लापता हो जाए। ये गाना जो है ना, बस इसी का पता ठिकाना मेरी जिंदगी में रह जाए। मिर्ची अंशु। देखो, इससे पहले कि तुम्हारे अकाउंट में आए हुए पैसे का पता ठिकाना तुम्हारे घर वाले लगाने की कोशिश करें, अपने डिमांड्स की लिस्ट जो है फटाफट बढ़ाने की कोशिश करें, मैं तो कहती हूँ सही ठिकाने पे उसे पहचाने की और पहुंचाने की तैयारी तुम कर ही लो। फटाफट से ट्रांसफर कर, जरा देखें आज आईपे मनी में क्या भौकाल है। पहले अगर आज आप ट्रांसफर करना चाहेंगे तो 1 रियाल के अगेंस्ट आपको मिलेंगे इंडियन रुपीज 26.05, साथ ही पाकिस्तानी रुपीज 76.17, भाई साहब बांग्लादेशी टाका 33.72, लंदन रुपीज 89.98 एंड इसके साथ ही नेपाली रुपीज 41.55। तो बस घर भेजे पैसे, ढेर सारी खुशियां, लेकिन अभी फिलहाल जिंदगी में खुशियों को बरकरार रखने के लिए सुनते रहे कदर का नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची। एंजॉय बंदी का नाम अंशु।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: कविता कृष्णमूर्ति, ऐसा कौन सा गाना है जो आप रात के 12 बजे भी गा सकते हैं, सुबह के 6 बजे भी गा सकते हैं?
3: ये गाना आप जब भी बोले मैं कभी भी गा सकती हूँ। गाना रात को 12 बजे भी कोई उठाएगा तो मैं ना नहीं करूँगी इस गाने के लिए। दिल ने कहा चुपके से, ये क्या हुआ चुपके से, क्यों

0: हुआ चुपके से, ये क्या हुआ चुपके से।
1: कविता कृष्णमूर्ति, आप ये गाना कभी भी गा सकती हैं और हम ये गाना कभी भी सुन सकते हैं। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
2: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
3: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
5: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
6: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
4: उसे सब पता है।
7: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड, शी इज कमिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम।
4: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर, स्पॉन्सर्ड बाय कतर कैलेंडर, दिस 25th सितंबर एट QNCC एंड टू ऐड द डबल बोनांजा ऑफ एंटरटेनमेंट, गेट रेडी टू वॉच म्यूजिक एंड डांस डुओ चरण एंड आरसी। एक शाम, एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट SCT Snow Nu। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स।

0: Well, Vishal Didlani, Anusha Mani and kya gazab ka power pack gana gulab. Bhai sahab, itr jo hai is waqt laga ke aana aur zarur aana, nahi to aapke paseene ka jo itr hai na, usse hum aapke kareeb aaye na aaye, lekin dur zarur bhag jayenge.
1: Mirchi Anshu.
0: यार सच कह रही हूँ, जिंदगी में ना मुझे कुछ बहुत ज्यादा पसंद है आपके अलावा, बातें करने के अलावा, अच्छे कपड़े पहनने के अलावा, तो वो है अच्छा खाना खाना। कहते हैं ना यार, खाने का मजा दुगना तब होता है जब आपके पास कंपनी जो हो वो अच्छी हो एंड कमाल हो, एंड जब दो फूडी एक साथ मिलके बैठ जाए ना, तो भाई इससे डेडली कॉम्बिनेशन एक डिनर टेबल में हो ही नहीं सकता। चलिए एक काम करते हैं, इस वक्त आपके बीच कोई तो खाने का खास डिश है, आइटम है, जो मेरे देश यानी कि राजस्थान से आता है, उसकी कहानी मैं आपके बीच पेश करने वाली हूँ। आपको फटाफट से सुनना है, सुनकर मुझे ये बताना है कि राजस्थान की, मारवाड़ की ये कौन सी खास डिश है जिसे मैं आपके बीच डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रही हूँ। आई एम प्रीटी श्योर मारवाड़ियों को तो ये पसंद है ही है, लेकिन इसके अलावा जो नॉन मारवाड़ी है, जिन्होंने एक बार इसे चखा है ना भाई, हुआ नहीं कि दोबारा खाने के लिए तरसे ना हो। तो लो जी, सही जवाब कहाँ देना है, एज यूजुअल हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, विच इज 5000-1896, 5000-1896। ईगरली लुकिंग फॉरवर्ड टू रिसीविंग योर मैसेजेस। इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु, जवाब देना जरूर। हाँ जी, तो एक है गोल मटोल अंगारों में पक कर आए, एक है गोल मटोल अंगारों में पक कर आए, दूजी दाल मसालों की खुशबू खूब लुटाए, घी की धार

पड़े तो दोनों का रंग निखर जाए, राजस्थान की शान है ये जोड़ी, बताओ ये क्या कहलाए। फटाफट से बताओ मैं बात कर रही हूँ तो किसकी कर रही हूँ। एंड सच कह रही हूँ, काफी सारा हिंट जो है ना मैंने दे दिया ना आपने, फटाफट से बस सही जवाब देना है। इस डुओ को, इस कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं जो राजस्थान की शान भी कहलाती है। 5000 1896 ईगरली वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। अगला गाना सचिन टंडन की आवाज में फ्रॉम द फिल्म जर्सी। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: यस ऑफ कोर्स, मिर्ची हेल्पलाइन, बताइए।
0: हेलो सर, मेरी फोटो में ना कभी भी स्माइल अच्छी नहीं आती। oh, no. क्या करूं?
1: बेबी डॉल, स्माइल फोटो में नहीं, होटो पे अच्छी लगती है।
2: खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़।

खूबसूरत सी आवाज सुबोध शर्मा का साधन, व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज। ये गाना तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन एक बार फिर से वो पहेली आप तक पहुंचा दूं, दोहरा दूं, जो आपके बीच इस वक्त किसी तो खाने की खास डिश की दास्तां बयां कर रही है। एब्सोल्युटली आपसे कुछ देर पहले मैंने आपके बीच पेश किया था एक सवाल जिसमें थी एक पहेली, एंड आपको उस पहेली को बुझाकर बस मुझे ये बताना था कि ये कौन से खाने के आइटम की कहानी बयां कर रही है। अगर अब तक जवाब नहीं दिया तो फटाफट से अब दे देना 5000186 पर, 5000186 पर विल गेट कनेक्टेड इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु। चलिए पहेली क्या है भाई साहब, सबसे पहले फिर से ये बता दूं, ये ना मेरे देश यानी कि राजस्थान की शान है। एक है गोल मटोल जो अंगारों में पककर आए, दूजी दाल मसालों की खुशबू खूब लुटाए, घी की धार पड़े तो दोनों का रंग निखर जाए, वही राजस्थान की शान है ये जोड़ी, बताओ ये क्या कहलाए। फटाफट से बताएं जी ये कौन सा डुओ है, कौन सी जोड़ी है जिसकी दास्तान मैंने आपके बीच पेश की, राजस्थान की शान शान शान, फटाफट से भेजो अरिजीत सिंह एंड सुनिधि चौहान की आवाज में। मीनवाइल मैं आपको ये अगला गाना सुनाती हूँ आपके जवाब के इंतजार पर। 5000186 एंजॉय बंदी का नाम अंशु।

0: लवली ड्रैगन्स फ्रॉम द फिल्म कॉकटेल 2. जी हाँ, ये गाना तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन हाय हाय, जिसकी दास्तान मैंने सुनाई थी, अब उसकी कहानी पूरी हो जाए.
1: मिर्ची अंशु.
0: देखो यार, मुझे ना हर जगह का ट्रेडिशनल फूड जो है वो बहुत ज्यादा पसंद है. ना अगर अपने देश की बात करूँ, यानी कि राजस्थान की बात करूँ, तो वहाँ के खाने की तो बात ही अलग है. लेकिन अब से कुछ देर पहले मैंने आपके बीच पेश की थी एक पहेली, एंड ये जो डिश है, ये जो डुओ कॉम्बिनेशन है, ये राजस्थान की शान जरूर माना जाता है. तो चलिए, जिन लोगों ने अभी अभी ज्वाइन किया है, मैं फटाफट से पहेली फिर से सुनाती हूँ. अगर अभी भी लगे कि सुनते सुनते सही जवाब पहचान लिया, जल्दी से भेजना 5000 1896 पर. मीनवाइल मैं आपको बताऊंगी कि लोगों ने क्या कहा है कि ये हैं तो हैं कौन. भाई, एक है गोल मटोल अंगारों में पककर आए, दूजी दाल मसालों की खुशबू खूब लुटाए, घी की धार पड़े तो दोनों का रंग निखर जाए. भाई, राजस्थान की शान है ये जोड़ी, बताओ जरा क्या कहलाए. देखे लोगों ने क्या कहा.
2: गुड मॉर्निंग अंशु, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? यू सफेद यू. अभी जो आपने डिश का जिक्र किया राजस्थान की, वो है दाल बाटी चूरमा. ओके, थैंक यू, बाय बाय.
3: अंशु दिस साइड राज. आपने अभी एक क्वेश्चन पूछा था ना कि एक मारवाड़ की डिश है, एक्चुअली वो राजस्थान की डिश है. मारवाड़ रीजन की है कि नहीं इतना तो नहीं पता, बट पूरे राजस्थान में फेमस है. दैट इज दाल बाटी एंड चूरमा. वो मतलब सब जगह खाई जाती है, राजस्थान से लेकर के इवन नॉर्थ का भी बहुत सारा पार्ट आता है. थैंक यू.
4: हाय अंशु, दिस इज शाजिया, द आंसर इज दाल बाटी चूरमा.
5: अस्सलाम वालेकुम, राम राम मेरी बहन, कैसी हो आप? ठीक हो? ये है दाल बाटी चूरमा. जो आग में सिकती है वो बाटी है, और दाल बनती है जो हम घर पे बनाते हैं, दाल बाटी चूरमा. मेरा नाम शाहरुख है और मैं इंडिया राजस्थान से हूँ, आपके शहर से.
6: इस लाजवाब डिश का नाम दाल बाटी.
0: बिल्कुल आपने जो कहा ये पूरी तरह से सही. थैंक यू सो मच. एंड राज, आपने जो कहा ये मारवाड़ नहीं राजस्थान की डिश है, आपने बिल्कुल सही कहा. लेकिन क्या है ना, हम जो है मारवाड़ रीजन से आते हैं, और हम मारवाड़ियों की एक दास्तान है कि हम पूरे राजस्थान को सिर्फ अपना मारवाड़ी कहते हैं. लेकिन जी हाँ, दाल बाटी एंड इसके साथ कुछ तड़का लगता है, एक डिलिशियस वाला सा वो होता है चूरमे का. देखिए, अब कैसा माना जाता है कि मेवाड़ में जो राजपूत योद्धा हुआ करते थे ना, जब भी वो युद्ध पे जाते थे, तो उसके पहले वो अपने साथ गेहूं के आटे की लोइयां बनाकर गर्म रेत में दबा जाते थे, कि राजस्थान की तपती धूप और गर्म रेत में वो कुछ इस तरह से पकती थी कि जब वो वापस आते थे तो वही लोइयां पककर बन चुकी होती थी बाटी. एंड फिर उन्हें वो घी में डुबोकर दही या छाछ के साथ इनिशियली खाया करते थे. लेकिन वक्त बदला, वक्त के साथ आई पंचमेल दाल, एंड फिर कहानी बनी बहुत ही ज्यादा डिलिशियस वाली एक्सीडेंटल. ठीक सुना आपने, यहाँ पे आया दाल और बाटी का गजब का कॉम्बिनेशन. अब देखिए, अगर चूरमे की बात करें, एंड अगर आपको लग रहा है ना कि ये चूरमा फिर आया तो कहाँ से आया, सारी बातें एक साथ बता दूंगी तो कुछ देर में क्या ही बातें करेंगे. चलिए कुछ देर में फिर से मिलते हैं. चूरमे का बेसिकली पूरा का पूरा ये ओरिजिन हुआ तो कैसे हुआ, एनी हमारी जिंदगी में आई तो कैसे आई, इसकी दास्तान मैं आपके बीच पेश करूंगी. लेकिन अभी फिलहाल अरिजीत सिंह की आवाज में प्यारा सा गाना एक बार फिर से आपकी जिंदगी में एंजॉय. बंदी का नाम अंशु.
1: मेरी

0: Mirchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. La vieja la burka. Mirchi, burka.
1: Hello.
2: Good evening, Mr. Srivastav. I'm modern school se bol raha hu, aapke bete ke school se. How are you?
1: Thank you.
2: अतुल वैसे पढ़ाई लिखाई में यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके मार्क्स भी अच्छे आते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बिल्कुल आगे नहीं है।
1: I know, वो खेल में कुछ ऐसा है नहीं खास ज्यादा। हाँ,
2: नहीं वही मैं आपको बताना चाह रहा था। अच्छा मिस्टर श्रीवास्तव, क्योंकि हम 26 जनवरी पे एक फंक्शन कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि पेरेंट्स भी उसमें पार्टिसिपेट करें। पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, जितना अच्छा परफॉर्म वो करेंगे उसके मार्क्स बच्चे को दिए जाएंगे। यू नो
1: परफॉर्म क्या करना होगा हमको?
2: कुछ भी ऐसा करिएगा जो कि बच्चों की चीज हो। आप प्लीज आके यहाँ पे पार्टिसिपेट करिए। आप आओ मिलो शिलो शालो करिए ना यहाँ पे आके स्टेज पे।
1: लगे हुए गेम है क्या ये?
2: आओ मिलो शिलो शालो,
1: मतलब पेरेंट्स को परफॉर्म करना होगा?
2: वो सिर्फ आप ही को परफॉर्म करना होगा, आप ही को ये पूरा बोलना होगा आओ मिलो शिलो शालो। एक्चुअली प्रॉब्लम भी है, हमारे पास चार ही थे उसमें से यही बचा है। आओ मिलो शिलो शालो अगर आप ले सकते हैं तो आप इसे प्लीज परफॉर्म कर लीजिए ताकि उसके मार्क्स अच्छे आए। राइट, देखिए शुरू ऐसे होता है, आप मेरे साथ साथ बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। राइट, और इसमें बीच में ना क्लैप करना होता है इस तरह। आओ मिलो,
1: आओ मिलो,
2: शिलो शालो,
1: शालो,
2: कच्चा धागा,
1: कच्चा धागा,
2: रेस लगा लो,
1: रेस लगा लो,
2: दस पत्ते तोड़े,
1: दस पत्ते तोड़े,
2: एक पत्ता कच्चा,
1: एक पत्ता कच्चा।
2: इसको ना प्रैक्टिस करिएगा, आप तेज़ बोलेंगे, दस पत्ते तोड़े,
1: तोड़े,
2: या मिस्टर श्रीवास्तव दस पत्ते तोड़े, दस पत्ते तोड़े,
1: दस दस दस पत्ते तोड़े,
2: हिरण का बच्चा, हिरण का बच्चा, सब हिरण का बच्चा,
1: ओके ओके सॉरी सॉरी, हिरण का बच्चा,
2: घोड़ा दौड़ा दुगड़ू दू,
1: घोड़ा दौड़ा दुगड़ू दू,
2: श्रीवास्तव बोले कुकड़ू को,
1: श्रीवास्तव
2: बोले कुकड़ू को। बहुत अच्छा लगता है जब बाप कोई बच्चा बनने की कोशिश करता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आपकी वाइफ ने मुझे नंबर दिया था, आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका मुर्गा बन गया है।
1: यार ये कोई सुनेगा
2: तो? सर ये सर ये सब सुन चुके हैं, अब प्यार से एक बार बोल दीजिए, इसको रिपीट कर लीजिएगा, बार बार बोलिएगा कुकड़ू को।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट,
3: इट्स ऑल डाउन टू डोनी इज़न्ट इट, फोर बॉल्स लेफ्ट, दे नीड 12 रन्स टू विन।
4: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है।
5: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
4: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. शाम एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट एसटीटी स्नोनो। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव

0: बलक्षत की आवाज में ये खूबसूरत सा गाना तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन इस नादानी के चलते हमारी जिंदगी में क्या मिठास खुली आपको पता है?
1: मिर्ची अंशु
0: पल अब से कुछ देर पहले अगर मैंने आपको कोई सैर कराई तो वो है मेरे देश की, यानी कि राजस्थान। पधारो माहरे देश, आपके बीच कहानी मैंने पेश की आज दाल और बाटी की, लेकिन साथ में जिक्र हुआ चूरमा का कि भाई साहब ये चूरमा का अगर कहना चाहिए ओरिजिन हुआ या ये दुनिया में आई तो आखिरकार आई कैसे। देखिए चूरमे की कहानी जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर मैं लोक कथा की बात करूं तो वहां पे ये माना जाता है कि मेवाड़ में एक बार एक रसोइये ने गलती से बाटी के ऊपर गन्ने का रस जो है वो गिरा दिया, जिससे बाटी जो है वो नर्म हुई, मीठी हुई, एंड इसके साथ ही उसे थोड़ी देर सुखाया गया कि भाई अब इसे खाया जाए तो कैसे खाया जाए। लेकिन जब बाटी मीठी होकर सूखी तो हाय, उसे चूरने के बाद जो स्वाद आया वो काफी अलग एंड काफी निराला था। तब से लोगों को लगने लगा कि जहां पे एक तरफ दाल बाटी है क्यों ना मीठी वाली बाटी भी चूर के बना दी जाए। तो चूर चूर के जो मिठास के साथ बनाई गई उसे कहा गया चूरमा। ग्रेजुअली धीरे धीरे उसमें कुछ और चीजें ऐड हुई एंड आज के रेट में जो ये इनोवेटिव चूरमा हमारी जिंदगी में आता है ना, मिठास जो घोलता है उसे शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। एंड अगर दाल बाटी की बात करें तो इनका सगा भाई कह लो या सगी बहन, जो टाइटल देना है दे दो, चूरमे के बिना जो है ना ये पूरी तरह से अधूरे। सो दाल बाटी चूरमा, इस तरह से ये डिलिशियस प्लेट अगर हमारे सामने आती है तो वह है सीधा राजस्थान के दिल से। अब आप मुझे बताएं कि अगर ऐसी कोई प्लेट मुझे कतर में चाहिए तो मुझे कहाँ जाना है? यार मुझे कतर में एक्चुअल में ऑथेंटिक दाल बाटी कहाँ मिल सकती है? आई रियली डोंट नो। अपने घर पे अगर बना रहे हो तो वो भी बता दो, लेकिन अगर कोई रेस्टोरेंट है जहाँ मैं बार बार आ सकूँ तो प्लीज़ मुझे उसका डिटेल भेज दो। 5000 1896 वेटिंग फॉर योर मैसेजेस इंस्टाग्राम मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु। मीनवाइल देव नेगी की आवाज़ में स्वीट हार्ट, ये अगला गाना सिर्फ आपके लिए। इन्जॉय। बंदी का नाम अंशु।

0: में ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक पायलट फूक के प्लेन उड़ा रहा था तो उसकी जॉब फूक गई।
3: इसको प्लेन को हाई ले जाना था, ये खुद हाई हो गया। और लोगों को यार प्लेन के फॉल की पड़ी है, जबकि इसका डाउनफॉल शुरू हो गया।
4: मेरा हेयर फॉल भी।
5: मिर्ची, इट्स हॉट। शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड, शी इज कमिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम।
6: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर, स्पॉन्सर्ड बाय कतर कैलेंडर, दिस 25th सितंबर एट QNCC। एंड टू ऐड द डबल बोनांजा ऑफ एंटरटेनमेंट, गेट रेडी टू वॉच म्यूजिक एंड डांस डुओ चरण एंड आरसी। एक शाम, एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट STT Snow Nu। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स।

0: दर्शन रावल एंड अंतरा मित्रा की खूबसूरत सी आवाज एंड व्हाट एन एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल ट्रैक इट इज ओ मेहरमा आई एक्चुअली लिटरली फॉल इन लव विद दिस
1: मिर्ची अंशु
0: वैसे सच कह रही हूँ, इसकी खूबसूरती जब जब मेरी ज़िंदगी में आती है ना तो इश्क प्यार मोहब्बत तो इससे हो ही जाता है। क्या करें यार, औरतें लड़कियां हैं, हमारा कनेक्शन इनसे ना हो तो फिर किनसे ही हो। हैविंग सेड दैट, आज के डेट में रेट की बात करें तो ये बड़ा कमाल है एंड ज़िंदगी में कोई तो गज़ब कोहराम मचा रहा है। ज़रा देखें आज अल फरदान एक्सचेंज में गोल्ड मनी क्या कहती है।
2: गोल्ड अपडेट।
0: पर अगर आज आप सोना खरीदने की कोशिश कर रहे हैं तो पैम्प 1 ग्राम गोल्ड एडी फॉर्चुना बार इस प्राइस एट 587 कतरे रियाज एंड इसके साथ ही अगर 5 ग्राम की बात करूं सो इट इस प्राइस एट 2757 कतरे रियाज। 10 ग्राम की बात करें सो इट इस प्राइस एट 5445 कतरे रियाज एंड 1 ounce गोल्ड एडी फॉर्चुना बार की बात करूं सो इट इस प्राइस एट 16834 कतरे रियाज। वहीं 10 तोला भाई बड़ा ही मोला है, इट इस प्राइस एट 62514 रियाल। जाइए अच्छी खासी शॉपिंग जो है वो करके आइए, बाकी जब कुछ ज्वेलरी वुलरी बनाओगे मिलके पहनेंगे, बांट के पहनेंगे, प्यार बढ़ता है। एंजॉय। बंदी का नाम अंशु।
3: Stay ahead of today's gold rates with Al Fardan Exchange, PAMP's official agent in Qatar. Buy authentic Swiss-made 24-carat PAMP gold bars
4: and earn Qatar Airways Avios today.
3: Visit our branches or download the app now.

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: शंकर महादेवन,
3: यू रियली ऑल्सो रिवर्स एजिंग. तो हम गाने के बारे में बात कर रहे हैं, स्किन रूटीन के बारे में जरा, कौन सा रेटिनॉल, कौन सा क्या कर रहे हैं आप?
4: नहीं, ऑनेस्टली आई जस्ट रियलाइज जस्ट 2 years बैक, नॉट दैट दैट्स मेड अ चेंज, टू पुट दिस सनस्क्रीन, नॉट सनस्क्रीन, द वन व्हिच यू यूज फॉर द स्पॉटिंग थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट दैट सनस्क्रीन थिंग इज व्हाट माय वाइफ टोल्ड मी.
2: शंकर महादेवन भी सनस्क्रीन लगा रहे हैं, तो आप किस खेत की मूली हैं? आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood,
1: Bollywood. Only on Mirchi, it's hot.
5: सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
6: आई यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आई यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
7: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
5: उसे सब पता है.
8: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
5: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar, this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at STT Snow. Tickets available in all leading ticketing platforms.

0: चोपड़ा गर्ल की खूबसूरत सी आवाज, फिल्म का नाम हसी तो फसी है। भाई मैं तो इस गाने में हसी भी मुस्कुराई भी एंड हाय दिल को अपने फंसा ही बैठी। व्हाट अ लवली ट्रैक इट इज, परिणीति चोपड़ा, सिद्धार्थ मल्होत्रा। ये गाना तो मैंने आपको सुना दिया, लेकिन अभी अभी किसी की फंसने की बारी जो है ना वो आ चुकी है।
1: मिर्ची अंशु
0: ये बस वही शख्स है जो हर दिन ऐसे कारनामे करता है, इसे लगता है कि ये फंसेगा नहीं। एक बात बताओ, मेरा टिफिन निकाल के तुमने खाया ना?
2: मैंने छुआ तक है, लेकिन थोड़ा सा, पूरा नहीं खाया। जब मैं खाने वाला तो फिर सबने खाना शुरू कर दिया, तो फिर हम क्या कर सकते थे?
0: ये बचपन से इसकी यही आदत है, पता है, अपने स्कूल टाइम से यही काम करता था। तुमने ऐसा कोई काम किया हुआ है? मुझे एक बात बताओ, मतलब किसी की और की टिफिन निकाली हो, वो भी जब क्लास चल रही है, चुपचाप चलती हुई क्लास के बीच में खाना खाया? भाई
2: यार, मैं सच बोलूं, चलती क्लास के बीच में खाना खाना ना किसी 5-स्टार रेस्टोरेंट में खाना खाने से भी ज्यादा मजा दिया।
0: एब्सोल्युटली, वो अंदर में एक डर लेकिन मजा, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है ना।
2: मैं सच बोलता हूँ, मुझे लगता है स्कूल डेज में अगर आपने ये नहीं किया ना बच्चों, तो आप कुछ तो भूल रहे हैं, और अगर आपने किया है तो आप अभी हंस रहे हैं।
0: और एक बात बता दूं, इसकी हरकतें आज भी कायम है, क्योंकि यही सोचते हैं दिल तो बच्चा है।
2: बिल्कुल, उम्र में आप चाहे कितने बड़े हो जाएं, दिल में एक बच्चा हमेशा अपने जिंदा रखेगा। क्योंकि मेरा ये मानना है, जो बच्चा अंदर है ना, वो अगर जीवन भर हमारे साथ जिंदा रहेगा तो हम भी लंबा जिंदा रहेंगे।
0: बस गौरव अपने 72 उम्र के इस एक्सपीरियंस का पूरा जो
2: आप भूल रही है
0: सबरी हमारे बीच पेश किए। चलिए जी, गौरव आ चुके हैं, लेकिन अब से कुछ देर में आपके साथ मिलेंगे। इन्होंने मेरा टिफिन चोरी किया, तो मैंने सोचा कि आप सबको, आवाम को, जनता को बता दूं कि कानून के हवाले इनको कर दिया जाए।
2: ना की बदनामी कर रही है मेरी।
0: चलिए मुलाकात होगी कल सारी बातों के साथ, वीकेंड वाइब के साथ। मीनवाइल, ऑल स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची। इट्स हॉट, मस्सलाम।

0: समय रैना फैंस कृपया ध्यान दें।
1: श्रुति, मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड हो आप एंड आई एम 110% श्योर इस इंसान का नाम सुनते ही आपके कान खड़े हो गए होंगे, आपने रेडियो सेट्स के वॉल्यूम बढ़ा दिए होंगे, तो प्लीज सुन भी लो कि क्या ही चर्चा करने वाली हूँ। सो आपको समय का वो कमबैक एक्ट तो याद होगा, स्टिल अलाइव, एंड स्पेशली द मैन आउट देयर जो समय के उस सेट के बाद अपने पापा को आई लव यू बोल रहे थे। वेल, आपके लिए डायरेक्टर हरीश व्यास जो हैं वो एक फिल्म लेकर आ रहे हैं और इसका नाम है हरिओम। नहीं नहीं, नाम पे मत जाइएगा, कोई भक्ति वाली मूवी नहीं है ये। बट इस फिल्म का इमोशनल कोर है द टाइमलेस टग ऑफ वॉर जो फादर सन के इस ओल्डेस्ट राइवलरी में नजर आती है। इनफैक्ट इस कहानी के जरिए एक बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछने की कोशिश भी की गई है कि भाई कैसा होता अगर हम अपने पापा को बता पाते कि भाई हम उनसे कितना प्यार करते हैं एंड वाइस वर्सा। सो द बैक स्टोरी इज दैट इस फिल्म के साथ डायरेक्टर हरीश व्यास अपनी ट्रिलॉजी कंप्लीट कर रहे हैं। सो उन्होंने अपना फीचर फिल्म डेब्यू किया था विद अ मूवी अंग्रेजी में कहते हैं, और इस फिल्म में संजय मिश्रा के साथ साथ पंकज त्रिपाठी, एकावली खन्ना और अंशुमन झा भी नजर आए थे, जहां एक रिलेशनशिप में आई लव यू बोलने की इम्पोर्टेंस को एक्सप्लोर किया गया। कई दफा हमने देखा है कि रिलेशनशिप को अगर काफी टाइम हो जाता है तो लोग एक दूसरे को आई लव यू बोलना भूल जाते हैं, ये सोच के कि यार उसको तो समझ में आता ही है क्या है क्या नहीं है। बट एक्चुअली दैट मूवी रिमाइंड्स यू कि प्यार को सिर्फ अज्यूम नहीं किया जा सकता, इट नीड्स टू बी एक्सप्रेस्ड। और उसके बाद आई थी उनकी दूसरी फिल्म दैट इज हम भी अकेले एंड तुम भी अकेले, जिसका बैकड्रॉप भी कुछ ऐसा सा ही था। सो इन शॉर्ट, अगर आपको अच्छी स्टोरी टेलिंग पसंद है, अगर आप ऐसे टॉपिक्स को एक्चुअल में एक्नॉलेज करते हैं, देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू वॉच हरिओम जो रिलीज हो रही है ऑन द 18th of September, वो भी थिएटर्स में। एंड सीरियसली यार, इट्स हाई टाइम जब हम अच्छे डायरेक्शन, अच्छी कहानी को अप्रिशिएट करना शुरू करें। ये नहीं कि बस बड़े नाम हो मूवी में, बड़ा बजट हो तो हम उसको ही सपोर्ट करेंगे। बाकी तो जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, बच्चे को गुब्बारा काफी और समझदार को इशारा काफी। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Mirci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. La
1: virpa la burka. Mirci, burka. Hello?
2: Hello? Hello?
1: भैया आवाज साफ नहीं आ रही, कम आ रही है आवाज।
2: साहब आपकी दुकान से कल एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन ले गया था, याद है आपको?
1: हाँ जी।
2: आपकी दुकान से एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन लेके गया था मैं कल।
1: अच्छा अच्छा,
2: तो ये यार ये ड्रिल मशीन कैसे दिए, ये बहुत आवाज कर रही है, एक सेकंड रुको।
1: भाई ड्रिल मशीन तो आवाज तो करेगी यार।
2: एक सेकंड यार, आवाज करेगी। आप ये बंद कर, इसको बंद कर, बंद कर, बंद कर। रमेश इसे बंद कर दे यार, आप मरवाओगे, ड्रिल मशीन आवाज करेगी, यहाँ सारे जाग जाएंगे तिजोरी खुलने से पहले।
1: मैं
2: आपको यही बता रहा हूँ, ये ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, ये यहाँ पे जो मैं ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना, ये जिस कोठी में आया हुआ हूँ अभी इनकी तिजोरी खुली भी नहीं है, मैं तो ये ड्रिल मशीन यार इसको बंद कर दे रमेश, बंद कर दे। भाई साहब ये तिजोरी मैं खोल रहा हूँ, ये आवाज बहुत कर रही है यार।
1: क्या कह रहे हो, तिजोरी ड्रिल मशीन कर क्या रहे हो आप?
2: इनके घर की चोरी कर रहा हूँ, खोपड़े में बात नहीं आती क्या तेरे यार? मुझे फंसवाएगा तू?
1: तो ड्रिल मशीन हमारा लेके तो चोरी करने गया।
2: एक तो आवाज इतनी दी है तूने, ड्रिल मशीन के सारे जाग जाएंगे यार।
1: तू चोरी करने के लिए गया?
2: तुमने पहले क्यों
1: बताया? तू खुद चोरी कर रहा, मुझे फंसवाएगा।
2: बात सुन,
1: मुझे मरवाएगा, मुझे फोन कर दिया। हेलो
2: यार, कमाल है आप तो, मेरी रोजी फिर रात मार रहे हो।
3: सर सर सर सर, मेरी बात सुनिए, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आपकी दुकान का नंबर मुझे किसी ने दिया था, आप रेडियो मिर्ची में हैं, सब आपको सुन रहे हैं, आपके साथ मजाक किया है, मुर्गा बना दिया आपका।
1: कहाँ से बोल रहे भैया?
3: रेडियो मिर्ची से सर, आपके साथ मजाक किया है मैंने। जरा हंस के मेरे साथ एक बार।
2: अब ठीक है।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है।
7: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
6: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist, Suhani Shah,

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। नेटफ्लिक्स एक बार फिर से लेकर आ रही है अपनी ये एंथोलॉजी सीरीज का नया चैप्टर। आई एम टॉकिंग अबाउट लस्ट स्टोरीज, जिसका पार्ट 3 आने वाला है, आई मीन सीजन 3, 18th of September को। एंड नॉट टू मेंशन, दिस इज एन इंटरनेशनल एमी नॉमिनेटेड एंथोलॉजी सीरीज, जिसमें एक नहीं चार डायरेक्टर्स अपनी चार अलग अलग कहानियां लेकर आते हैं, विच इंक्लूड्स विक्रमादित्य मोटवानी, किरण राव, शकुन बत्रा एंड विशाल भारद्वाज। और ये चारों एक बार फिर से लस्ट, लव और रिलेशनशिप्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं विद न्यू स्टोरी लाइंस, जिसके बारे में डिटेल्ड बातचीत बाद में होगी। राकेश ओम प्रकाश मेहरा 5 सालों से एक फिल्म डेवलप कर रहे हैं एंड उसका नाम है कर्ण, जो फाइनली अगले साल से शूट होगी, दैट टू फ्रॉम अगस्त। दिस इज गोइंग टू बी अ 2 पार्ट्स फिल्म, जिसका लीड निभाने वाले हैं नन अदर देन सलमान खान एज द वॉर हीरो कर्ण। महाभारत के मोस्ट कॉन्फ्लिक्टेड कैरेक्टर कर्ण के ऊपर बन रही है ये फिल्म। बट हेलो हेलो, उसके पहले राकेश ओम प्रकाश मेहरा एक क्विक 30-day फिल्म भी बना रहे हैं, विच इज गोइंग टू बी अ स्मॉल टाउन लव स्टोरी, और उसको लीड करने वाले हैं नन अदर देन विक्रांत मस्से। लीजिए, आफ्टर मंथ्स ऑफ स्पेकुलेशंस, फाइनली बादशाह और ईशा रिखी ने अपने सेपरेशन को कंफर्म कर दिया है। विल द कपल सेड कि उन्होंने ये डिसीजन म्यूचुअली लिया है एंड ऑफकोर्स दे वॉन्ट सम प्रिवेसी। देखो, इससे ज्यादा डेट्स तो इन जनरल किसी को नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप वो कदम उठाते हैं तो भैया आपके घर में वो चाचा फूफा फूफी है ना, बस उनका ही किरदार निभा रहे हैं आप रियल लाइफ में। बाकी तो जैसे बच्चे को गुब्बारा काफी, वैसे समझदार को इशारा काफी। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: अब इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, लेट मी एक्सप्लेन। ऑफ कोर्स इट्स टाइम टू फाइंड मिर्ची फिल्मची। यहाँ पे मैं आपको एक मस्त फिल्मी गेम खिलाती हूँ जिसके थ्रू आपके अंदर के फिल्मची को भी जगाती हूँ। तो आज हमारे साथ सबसे पहले टेलीफोन लाइन पे है राजीव जैन जी फ्रॉम दिल्ली। तो तैयार है सर
3: जी?
0: बॉलीवुड फिल्म जिसमें करीना कपूर खान इलेक्ट्रिक गिटार पे कसम की कसम ये वाला गाना गाती हैं।
3: मैं प्रेम की दीवानी हूँ।
0: क्या बात है। मैं प्रेम की दीवानी हूँ में गरीब प्रेम कौन है?
3: ऋतिक रोशन।
0: ऋतिक रोशन किस फिल्म में एक सीन में स्टैचू बने हैं?
3: धूम।
0: कौन सा पार्ट?
3: टू टू।
0: धूम टू में फीमेल विलन कौन है?
3: ऐश्वर्या राय।
0: क्या बात है। ऐश्वर्या राय किस फिल्म में मरने के बाद साड़ी पहन के सारे एक्टर्स के
3: आज
0: आपको कैसे पता था मैं यही पूछने वाली हूँ?
3: मैम ये तो एक्चुअली क्या है, ये जब आई वॉज यंग काइंड ऑफ थिंग, तो मैंने ऑलरेडी ये मेरे ख्याल से 15-16 बार थिएटर में देखी।
0: ऑलराइट, लवली मूवी वैसे। सो मोहब्बतें में वायलिन बजाने वाले प्रोफेसर कौन है?
3: शाहरुख खान, राज आर्यन।
0: शाहरुख खान की फिल्म जिसमें उनके पीछे 11 मुल्कों की पुलिस पड़ी है?
3: डॉन।
0: डॉन की जंगली बिल्ली कौन है?
3: प्रियंका चोपड़ा।
0: प्रियंका चोपड़ा की फिल्म जो मिठाई के नाम पे है?
3: प्रियंका चोपड़ा बर्फी।
0: क्या बात है। बर्फी में मेल लीड कौन है?
3: रणबीर कपूर।
0: रणबीर कपूर की फिल्म जिसमें वो हैप्पी क्लब के प्रेसिडेंट है?
3: अजब प्रेम की गजब कहानी।
0: सर गलत लेवल फिल्मची चल रहे हैं आप। अजब प्रेम की गजब कहानी में रणबीर की लवर कौन है?
3: कटरीना कैफ।
0: कटरीना कैफ की किस फिल्म में उनके भाई डॉन होते हैं?
3: वेलकम।
0: क्या बात है। वेलकम में कौन है जो जिस दिन ब्रश उठाता है उस दिन गन नहीं उठाता?
3: मजनू। अनिल कपूर।
0: अनिल कपूर किस फिल्म में रमता जोगी बने हैं?
3: ताल।
0: ताल में ऐश्वर्या राय को किससे प्यार होता है?
3: अक्षय खन्ना।
0: अक्षय खन्ना की फिल्म जिसमें वो अपने दोस्तों के साथ रोड ट्रिप पे जाते हैं?
3: दिल चाहता है।
0: दिल चाहता है में स्टार्टिंग में प्यार पे किसको भरोसा नहीं होता?
3: आमिर खान।
0: आमिर खान की फिल्म जिसमें वो अंग्रेज के साथ क्रिकेट खेलते हैं?
3: लगान।
0: लगान की फीमेल लीड कौन है?
3: ग्रेसी सिंह।
0: ग्रेसी सिंह की फिल्म जिसमें वो डॉक्टर सुमन AKA चिंकी बनी है?
3: मुन्ना भाई MBBS।
0: वाओ। मुन्ना भाई में सर्किट कौन है?
3: अरशद वारसी।
0: अरशद वारसी की फिल्म जो जिसमें वो वॉर कॉरेस्पॉन्डेंट बने हैं?
3: काबुल एक्सप्रेस।
0: क्या बात। काबुल एक्सप्रेस में उनके फेलो जर्नलिस्ट कौन है?
3: जॉन अब्राहम।
0: जॉन अब्राहम बाइक पे चोरी किस फिल्म में करते हैं?
3: धूम।
0: आपने अलग लेवल धूम मचाई है। आप एक गो में ये फिल्मची गेम खेल के खत्म कर चुके हैं, एकदम नेस्तो नाबूद कर दिया आपने हमारे क्वेश्चंस को।
3: थैंक यू सो मच श्रुति, थैंक यू सो मच।
0: तो भाई इतना अच्छा गेम जो खेला है आपने उसके लिए ये टैग तो जरूर बनता है।
1: मिर्ची फिल्मची।
0: It was a pleasure, sir. Have a great day.
3: Thank you so much. Thanks a lot.
0: तो इतने मस्त वाले गेम को सुनके अगर आपके अंदर के फिल्मची को फोमो हो रहा है, then worry not, my friend. You know the drill. मिर्ची श्रुति के Instagram पे अपना नंबर भेजिए, and I'll give you a call. Till then, stay tuned to Mirchi. It's hot.

0: आए हाय
1: मिर्ची स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना, एक पायलट फूक के प्लेन उड़ा रहा था तो उसकी जॉब फूक गई।
4: इसको प्लेन को हाई ले जाना था, ये खुद हाई हो गया। और लोगों को यार प्लेन के फॉल की पड़ी है, जबकि इसका डाउनफॉल शुरू हो गया।
5: मेरा हेयर फॉल भी।
6: मिर्ची, इट्स हॉट। शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
7: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar, this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at STT Snow. Tickets available in all leading ticketing platforms.

0: खेलू मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
0: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ, मैं तो मिर्ची फिल्मची गेम खेलने की बात कर रही हूँ। सो द ड्रिल इज कि आपको मेरे इंस्टा पे जाके अपना नंबर डीएम करना होता है, फिर मैं आपको कॉल करके इस गेम की शुरुआत करती हूँ। तो आज हमारे साथ सबसे पहले टेलीफोन लाइन पे हैदराबाद से हैं विवेक जी। तो क्या तैयार हैं आप?
2: यस यस।
0: ऑल राइट, मैं कोई मंदिर का घंटा हूँ, कोई भी आके बजा जाता है, मंदिर का घंटा कौन है?
2: राजपाल यादव।
0: राजपाल यादव किस फिल्म में गुल्लू कैब वाला बने हैं?
2: भागम भाग।
0: भागम भाग में एमजी गांधी किसकी सुटाई करते हैं,
2: किसकी पिटाई करते हैं?
0: हाँ,
2: ये परेश रावल को।
0: परेश रावल किस फिल्म में भगवान के ऊपर केस करते हैं?
2: ओ माई गॉड।
0: ओ माई गॉड में भगवान के लंबे बाल वाले मैनेजर कौन है?
2: मिथुन चक्रवर्ती।
0: मिथुन चक्रवर्ती किस फिल्म में अपने जवानी के प्यार से बुढ़ापे में शादी करते हैं?
2: गोलमाल थ्री।
0: गोलमाल थ्री में पप्पी भाई कौन है?
2: जॉनी लिवर।
0: जॉनी लिवर रोड रोलर किस फिल्म में चलाते हैं?
2: खट्टा मीठा।
0: क्या बात है, खट्टा मीठा में रोड कॉन्ट्रैक्टर कौन है?
2: अक्षय कुमार।
0: अक्षय कुमार किस फिल्म में नकली अंडरटेकर से लड़ते हैं?
2: खिलाड़ियों का खिलाड़ी।
0: क्या बात है, खिलाड़ियों का खिलाड़ी में मैडम माया कौन है?
2: रेखा।
0: रेखा की फिल्म जिसमें उनका बेटा एलियन से कॉन्टैक्ट करता है?
2: कोई मिल गया।
0: कोई मिल गया में चॉकलेट मिल्क किसको पसंद है?
2: ऋतिक रोशन।
0: ऋतिक रोशन किस फिल्म में एक पल का जीना फिर तो है जाना करते हैं?
2: कहो ना प्यार है
0: में सोनिया सक्सेना कौन है?
2: अमीषा पटेल।
0: अमीषा पटेल की फिल्म जिसमें उनको ट्रक ड्राइवर से प्यार हो जाता है?
2: गदर।
0: गदर में हैंडपंप कौन उखाड़ता है?
2: सनी देओल।
0: सनी देओल की फिल्म जिसमें वो स्पाई बने हैं?
2: हीरो।
0: क्या बात है, हीरो में एक्चुअल लव किससे होता है उनको?
2: प्रीति जिंटा।
0: प्रीति जिंटा की लिव इन रिलेशनशिप वाली फिल्म
2: सलाम नमस्ते।
0: सलाम नमस्ते में वो किसके साथ लिव इन में है?
2: सैफ अली खान।
0: सैफ अली खान किस फिल्म में अपनी बेस्टी से प्यार करते हैं?
2: कल होना हो।
0: कल होना हो में टर्मिनल इलनेस किसको है?
2: शाहरुख खान।
0: शाहरुख की फिल्म जिसमें वो अपनी बंदी को बिल्डिंग से धक्का मार देते हैं?
2: बाजीगर।
0: बाजीगर में मरने वाली बंदी की बहन कौन है?
2: काजोल।
0: काजोल किस फिल्म में तुस्सी बड़े मजाकिया हो करती हैं?
2: कभी खुशी कभी गम।
0: सर कहीं तो रुक जाओ यार, कभी खुशी कभी गम में लड़कों को रेटिंग कौन देता है?
2: करीना कपूर।
0: करीना कपूर की फिल्म जिसमें वो एक छोटी बच्ची को बॉर्डर क्रॉस कराती हैं?
2: बजरंगी भाईजान।
0: बजरंगी भाईजान में मुन्नी को अपनी पीठ पे कौन लेके चलता है?
2: सलमान खान।
0: सलमान खान किस फिल्म में एक बार कमिटमेंट कर देते हैं तो फिर किसी की नहीं सुनते?
2: वांटेड।
0: क्या बात है, आई गेस यू ऑल्सो वॉन्टेड द टैग सो बैड कि एक गो में ही आपने ये गेम कम्प्लीट कर लिया। तो इसी बात पे आप बने हैं आज के हमारे
1: मिर्ची फिल्मची।
0: वैसे आपके अंदर के फिल्मी कीड़े को ना फोमो फील करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये गेम एक बार फिर आएगा कल, बट उसके अलावा दो और गेम्स यहाँ अभी बाकी हैं। मैं हूँ श्रुति आपके साथ राइट हियर ऑन मिर्ची। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: इंडियन एक्टर्स में से अक्षय कुमार इज द प्रैंकस्टर ऑन सेट। अगर सिंगर्स की बात करें तो अनुराधा पौडवाल से पूछते हैं।
3: उदित नारायण आई वुड से यू नो ही वाज मोर ऑफ अ प्रैंकस्टर देन अ सिंगर बट अ वेरी लवेबल प्रैंकस्टर एंड ऑल द टाइम ही यूज्ड टू कीप ऑन टॉकिंग एंड पासिंग सम कमेंट्स मेकिंग एवरीबॉडी लाफ।
2: ये थी अनुराधा पौडवाल टॉकिंग अबाउट द वन द ओनली सर सर सर सर उदित नारायण ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
4: सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
5: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
6: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
4: उसे सब पता है।
7: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
4: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment. Get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snoo Noo. Tickets available in all leading ticketing platforms.

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन
1: जी। बिल्कुल, बताइए सवाल क्या है।
0: मैं मार दूंगा यार, बहुत गुस्सा आता है। रोज कोई ऑफिस में मेरी चेहरा बदल देता है, क्या करूं?
1: सिंपल है, बॉस की गोदी में बैठ जा, प्रमोशन भी मिलेगा।

0: ऐसी अप्रोच वाली मूवीज की कमी है हमारी इंडस्ट्री में।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: हाँ जी बाबू मोशा, इससे पहले कि आप कंफ्यूज्ड हो जाएं, लेट मी टेल यू, मैं बात कर रही हूँ विमेन सेंट्रिक इश्यूज पे बनने वाली फिल्मों के बारे में। और आज जो पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं पांच फिल्मों को डिस्कस करने वाली हूँ, दीज आर बेसिकली इंडियन शॉर्ट फिल्म्स जो आपको अपनी वॉच लिस्ट में जरूर डालना चाहिए। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द मूवी चटनी, जिसको डायरेक्ट किया है ज्योति कपूर दास ने। इसका स्क्रीन प्ले लिखा था ज्योति कपूर, इसका चोपड़ा और अवनीश मिश्रा ने मिलकर, और एक्टिंग की है फिल्म में टिस्का चोपड़ा, रसिका दुग्गल और आदिल हुसैन ने। सो द फिल्म पीप्स इनटू द सीमिंगली मॉरल वर्ल्ड ऑफ ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास फैमिली, जहां अब नए एस्पिरेशंस हैं ऑफ इंपोर्टेड कार्स एंड ऑर्गेनिक फूड। और इसी बीच एक कहानी चलती है इस महिला की, जो दूसरी एक फीमेल से कॉन्वर्सेशन कर रही होती है, और माइंड यू ये दूसरी फीमेल जो है वो पहली वाली महिला के पति के साथ फ्लर्ट करती नजर आती है इन अ पार्टी। उसके बाद चीजें किस तरीके से डार्क साइड लेती हैं वो जानने के लिए आपको ये फिल्म तो देखनी पड़ेगी यार। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच चटनी ऑन Amazon Mini TV। बाकी ऐसी ही और चार फिल्मों की बातें बाकी हैं, बट इन अ वाइल। टिल देन यू एंजॉय द अपकमिंग सॉन्ग्स राइट हियर ऑन मिर्ची विद दिस लड़की बड़ी फिल्मी, जिसका नाम है श्रुति।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rambana. Burka, burka. Na vjet bala burka. Milci, burka.
1: Hello.
2: Hello.
1: हेलो हाँ बोलो कौन
2: हेलो इधर से बोल रहा हूँ आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
1: हाँ बोल कौन रहा है
2: बोल कौन रहे हो कंप्लेन करी थी आपने सीवर साफ करने की नीचे से बोल रहा हूँ आपके सीवर में घुसा पड़ा हूँ
1: बोल कौन रहे हो
2: आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
1: हाँ बोला था
2: ओ भैया मेरी जान को बचाओ यहाँ पे बहुत गहरा है यार आप लोग खाते क्या हो कितना गहरा कर दिया आपने
1: तो पूछ के घुसे थे क्या अंदर
2: ज्यादा सवाल मत करो मेरी बात सुनो सिर्फ
1: हाँ बोलो
2: यार आपके टॉयलेट पे अपनी कोई बैठा के क्या क्या फेंक रहा है यार ऊपर से ओए बंद करो सर ओ भैया मेरी जान को बचाओ यहाँ पे बहुत गहरा है यार आप लोग खाते क्या हो कितना गहरा कर दिया आपने
1: कौन बोल रहा है कहाँ घुस गए यार
2: हेलो इधर से बोल रहा हूँ आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
1: हाँ हाँ बोला था हुआ क्या है कुछ तो बताओ
2: ज्यादा सवाल मत करो मेरी बात सुनो सिर्फ ओए यार आपके टॉयलेट पे अपनी कोई बैठा के क्या क्या फेंक रहा है यार ऊपर से ओए बंद करो सर
1: कब आया था कब घुसा अंदर
2: फिर सवाल यार मैं यहाँ पे अटका पड़ा हूँ मुझे बाहर निकालो यार कैसे भी करके
1: तू कहाँ से आया तो नहीं हो गया है
2: सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी नीचे घुसा पड़ा हूँ आपके सीवर में बाहर निकालो यार
1: मैं तो इधर ऑफिस में हूँ अपने
2: ऑफिस क्यों गए सीवर साफ करवाना था मैं तो यहाँ पे घुसा पड़ा हूँ ना अंदर
1: मेरी सीवर में घुसा है किसी और के सीवर में घुस गया
2: ये बदबू से पता चल रहा है सीवर तेरा ही है यार
1: सीवर में मरा रहा है तू
2: गाली तो मत दो
1: हेलो
2: हेलो
1: फिर फोन कर दिया तूने
2: अच्छा है सीवर साफ हो जाएगा काम करो एक चीज बोलो
1: क्या बोलो
2: कुकुलुकू
3: सर आई एम सो सॉरी मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मुझे किसी ने बताया था कि आपने सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका पुरका बन गया
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
5: इट्स ऑल डाउन टू डोनी इज़न्ट इट फोर बॉल्स लेफ्ट दे नीड 12 रन्स टू विन
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला लेकिन उसे पता है
7: शी कैन रीड योर माइंड शी विल ब्लो योर माइंड She is coming for the very first time.
6: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment. Get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah live

0: ऐसी अप्रोच वाली फिल्में हमारी इंडस्ट्री में और आनी चाहिए। श्रुति श्रुति
1: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: हाँ जी बाबू मोशाय, मैं बात कर रही हूँ फीमेल सेंट्रिक इश्यूज को लेकर बनी फिल्मों के बारे में, जिसकी कमी ऑफ कोर्स हमारी इंडस्ट्री में है। बट आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं आपके वॉच लिस्ट में कुछ अमेजिंग शॉर्ट फिल्म्स ऐड करने वाली हूँ विच रिवॉल्व अराउंड विमेन सेंट्रिक इश्यूज। सो सबसे पहले इन द लिस्ट वी टॉक्ड अबाउट द मूवी चटनी। अब नंबर दो पे बात करते हैं द ब्रोकन टेबल के बारे में, जो रिलीज हुई थी इन द ईयर 2023, डायरेक्टेड बाय चिंतन सारदा। एंड इस फिल्म में नासिरुद्दीन शाह है एज गिरी और उनके साथ है रसिका दुग्गल हु इज प्लेइंग द पार्ट ऑफ दीप्ति इन द मूवी। सो बेसिकली गिरी का जो कैरेक्टर है, ही इज एन अल्जाइमर पेशेंट जो अपनी जिंदगी की सारी चीजें भूल जाते हैं अदर देन हिज वाइफ। वहीं दूसरी तरफ दीप्ति इज अ बडिंग साइकोलॉजिस्ट जिसकी लाइफ में उसकी शादी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी चल रही हैं। बट वंस शी मीट्स गिरी, वो उनकी जिंदगी से बहुत सारी ऐसी चीजें सीखती है, अपने लाइफ में इनकलकेट करती है, जिसके बाद इस मूवी का एंड बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग लगता है। नहीं देखी है मूवी तो अपने वॉच लिस्ट में इसको जरूर डाल लो। नाम है द ब्रोकन टेबल। चलो नंबर तीन पे आप बात करते हैं अबाउट द फिल्म नीति शास्त्र, जो प्राइम वीडियो पे आपको मिलेगी। दिस मूवी रिलीज इन द ईयर 2018, जिसमें तापसी पन्नू है, विकी अरोड़ा है और ये फिल्म एक सेल्फ डिफेंस इंस्ट्रक्टर की है, रोशनी है इसका नाम, प्लेड बाय तापसी पन्नू ऑफकोर्स, जो औरतों को मदद करती है अपने आप को प्रोटेक्ट करने में। हाउएवर इसकी जिंदगी एकदम से उथल पुथल हो जाती है जब इसका खुद का सगा भाई एक क्राइम कमिट करता है एंड देन शी इज टोन बिटवीन हर इंटेग्रिटी एंड हर फैमिली। इंट्रीगिंग राइट? तो अपनी वॉच लिस्ट में नीति शास्त्र को भी जरूर ऐड कर लेना। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बाकी के दो फिल्मों को डिस्कस करेंगे। राइट हियर ऑन मिर्ची, यू आर ट्यून्ड इन विद दिस लड़की बड़ी फिल्मी जिसका नाम है श्रुति।

0: हाइला, हमारी इंडस्ट्री में ऐसी फिल्में भी हैं।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: हाँ जी बाबू मोशाय, कुछ ऐसा ही रिएक्शन आया था मेरा जब मैंने ये फिल्में देखी थी। सो बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट 5 विमेन सेंट्रिक इश्यूज पे बेस्ड शॉर्ट फिल्म्स जिन्होंने मुझे एकदम से झकझोर दिया था। तो चलो लिस्ट को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट द मूवी चटनी, उसके बाद हमने नंबर 2 पे बात की द ब्रोकन टेबल के बारे में, नंबर 3 पे था नीति शास्त्र, अब नंबर 4 पे बात करते हैं एवरीथिंग इज फाइन के बारे में। वेल दिस मूवी रिलीज इन द ईयर 2017, जो फिलहाल आपको प्राइम वीडियो पे देखने को मिलेगी। और इस मूवी को डायरेक्ट किया है मानसी निर्मल जैन ने, जिसमें सीमा पाहवा हैं और पालोमी घोष जैसे अमेजिंग एक्टर्स हैं यार। सो बेसिकली फिल्म में एक मिडिल एजेड वुमन है जिसका नाम है आशा, जो अपने अनहैप्पी मैरिज को खत्म करना चाहती है और अपनी बेटी के पास जाती है जिसका नाम है नताशा फॉर सपोर्ट। हाउएवर उनकी बेटी इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती कि भाई उसकी माँ अपनी शादी खत्म करना चाहती है, एंड दस ट्राइज टू डिसवेड हर फ्रॉम डूइंग इट। ट्रस्ट मी व्हेन आई से इट इज अ मस्ट वॉच। चलो लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और नंबर 5 पे बात करते हैं अबाउट द फिल्म देवी, जो रिलीज हुई थी इन द ईयर 2020। और इस मूवी को डायरेक्ट किया है प्रियंका बैनर्जी ने, जो आपको Amazon प्राइम पे देखने को मिलेगी। फिल्म में है काजोल, श्रुति हासन, नेहा धूपिया, नीना कुलकर्णी, मुक्ता बारवे, शिवानी रघुवंशी, यशस्विनी दयामा, रमा जोशी एंड संध्या महात्रे। सो बेसिकली इस फिल्म में एक ग्रुप ऑफ वुमेन को फोर्स किया जाता है टू को एग्जिस्ट इन अ स्मॉल रूम, एंड माइंड यू ऑल ऑफ देम आर विक्टिम ऑफ रेप। और जिस तरीके से हर एक औरत की कहानी इस मूवी में बयां की गई है, गूज़बम्स इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट व्हाइल वॉचिंग इट। खैर, मेरी इस लिस्ट में अगर आप भी कोई फीमेल सेंट्रिक इश्यूज को डील करती हुई फिल्म ऐड करना चाहो, then feel free to do that. MIRCHISHRUTI, that is Mirchi Shruti ke naam se main aapko Facebook ya fir Insta pe milungi. In the meantime, stay tuned to Mirchi, it's hot.

0: में ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक पायलट फूक के प्लेन उड़ा रहा था तो उसकी जॉब फूक गई।
3: इसको प्लेन को हाई ले जाना था, ये खुद हाई हो गया। और लोगों को यार प्लेन के फॉल की पड़ी है, जबकि इसका डाउनफॉल शुरू हो गया।
4: मेरा हेयर फॉल भी।
5: मिर्ची, इट्स हॉट। शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड, शी इज कमिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम।
6: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर, स्पॉन्सर्ड बाय कतर कैलेंडर, दिस 25th सितंबर एट QNCC, एंड टू ऐड द डबल बोनांजा ऑफ एंटरटेनमेंट, गेट रेडी टू वॉच म्यूजिक एंड डांस डुओ चरण एंड आरसी। एक शाम, एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट SCT Snow Nu. टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स।

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। नेटफ्लिक्स एक बार फिर से लेकर आ रही है अपनी ये एंथोलॉजी सीरीज का नया चैप्टर। आई एम टॉकिंग अबाउट लस्ट स्टोरीज, जिसका पार्ट 3 आने वाला है, आई मीन सीजन 3, 18th ऑफ सितंबर को। एंड नॉट टू मेंशन, दिस इज एन इंटरनेशनल एमी नॉमिनेटेड एंथोलॉजी सीरीज, जिसमें एक नहीं चार डायरेक्टर्स अपनी चार अलग अलग कहानियां लेकर आते हैं, विच इंक्लूड्स विक्रमादित्य मोटवानी, किरण राव, शकुन बत्रा एंड विशाल भारद्वाज। और ये चारों एक बार फिर से लस्ट, लव और रिलेशनशिप्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं विद न्यू स्टोरी लाइंस, जिसके बारे में डिटेल्ड बातचीत बाद में होगी। राकेश ओम प्रकाश मेहरा 5 सालों से एक फिल्म डेवलप कर रहे हैं एंड उसका नाम है कर्ण, जो फाइनली अगले साल से शूट होगी, दैट टू फ्रॉम अगस्त। दिस इज गोइंग टू बी अ 2 पार्ट्स फिल्म, जिसका लीड निभाने वाले हैं नन अदर देन सलमान खान एज द वॉर हीरो कर्ण। महाभारत के मोस्ट कॉन्फ्लिक्टेड कैरेक्टर कर्ण के ऊपर बन रही है ये फिल्म। बट हेलो हेलो, उसके पहले राकेश ओम प्रकाश मेहरा एक क्विक 30-day फिल्म भी बना रहे हैं, विच इज गोइंग टू बी अ स्मॉल टाउन लव स्टोरी, और उसको लीड करने वाले हैं नन अदर देन विक्रांत मस्से। लीजिए, आफ्टर मंथ्स ऑफ स्पेकुलेशंस, फाइनली बादशाह और ईशा रिखी ने अपने सेपरेशन को कंफर्म कर दिया है। वेल, द कपल सेड कि उन्होंने ये डिसीजन म्यूचुअली लिया है एंड ऑफकोर्स दे वॉन्ट सम प्रिवेसी। देखो, इससे ज्यादा डेट्स तो इन जनरल किसी को नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप वो कदम उठाते हैं तो भैया आपके घर में वो चाचा फूफा फूफी है ना, बस उनका ही किरदार निभा रहे हैं आप रियल लाइफ में। बाकी तो जैसे बच्चे को गुब्बारा काफी, वैसे समझदार को इशारा काफी। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स ऑल।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi, it's hot.
1: कुमार शानू, आपके हिसाब से आपके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर कौन थे?
2: मेरा कॉलिग के बारे में मैं आज तक कभी कुछ नहीं बोला, अब मैं ना बोलना चाहता हूँ। हमारे जो कॉलिग्स थे, दे आर ऑल ग्रेट सिंगर्स, अलग अलग अपना पहचान बनाया, जो आज के सिंगरों में है नहीं, पहचान है नहीं किसी का, एक ही टाइप का सिंगर आपको 6 मिल जाएगा।
1: वेयर इज द लाई कुमार शानू, वेयर इज द लाई? आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
4: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
5: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
3: उसे सब पता है।
6: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड, शी इज कमिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम।
3: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर, स्पॉन्सर्ड बाय कतर कैलेंडर, दिस 25th सितंबर एट QNCC एंड टू एट द डबल बोनांजा ऑफ एंटरटेनमेंट। गेट रेडी टू वॉच म्यूजिक एंड डांस डुओ चरण एंड आरसी। एक शाम, एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट SCT Snow Nu. टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: यस ऑफ कोर्स, मिर्ची हेल्पलाइन बोलिए।
0: इतनी गर्मी है यार, उसमें एसी नहीं चल रहा। लैंडलॉर्ड को कितनी बार बोला, रिपेयर ही नहीं करवाता, क्या करूं?
1: एसी नहीं चल रहा तो लैंडलॉर्ड क्या करेगा? सिंपल है, एयर लॉर्ड को बोलो, एयर लॉर्ड, ठीक है?
2: साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले का।
3: मिर्ची घड़ी में बजने वाले हैं 3।
4: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल।

इस फिल्म के नरेशन में ही सो गए थे शत्रुघ्न सिन्हा। सारा शहर मुझको लॉयन के नाम से जानता है। गेस कर लिया? ओहो, इतने बड़े वाले फिल्मची नहीं हो आप। चलो बता ही देती हूँ, मैं बात कर रही हूँ 1976 में रिलीज हुई फिल्म कालीचरण के बारे में, जिसके साथ ही सुभाष घई सर ने अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू किया था। और इस फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा, डैनी, रीना रॉय और अजीत जैसे अमेजिंग स्टार्स थे। सो इस फिल्म के नरेशन के दौरान शत्रुघ्न सिन्हा सो गए थे। इनफैक्ट ही वॉज नॉट इवन इंटरेस्टेड इन द मूवी। बट बाद में इस फिल्म के प्रोड्यूसर एनएन सिप्पी ने जब उनको उनका मार्केट प्राइस पे करने पे अग्री किया, देन ही डिड द मूवी। वैसे पता ना हो तो बताना चाहती हूँ, ये पहली बार हुआ था दैट इस फिल्म के साथ ही शत्रुघ्न सिन्हा को एक हीरो का रोल मिला था, वरना तो वो हमेशा साइड रोल्स या फिर विलन्स के रोल्स ही किया करते थे। एंड अबाउट द सो जाने वाली कहानी, बेसिकली वो उस वक्त ना 3 शिफ्ट्स किया करते थे अलग अलग फिल्मों के, एंड दैट वाज द रीजन ही वाज स्लीप डिप्राइव्ड और नरेशन के टाइम पे वो सो गए थे। सो या, बड़े पर्दे पे जो हम फिल्में देखते हैं उसके पीछे बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां छुपी होती हैं, और वो ढूंढ कर मैं आप तक लेकर आती हूँ। तो अपनी फेवरेट फिल्म का नाम मुझे बताओ ना, आई डू द होमवर्क फॉर यू। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na vidva la burka. Milci, burka.
1: हेलो
2: हेलो बेटा नवनीत,
1: आप कौन?
2: पापा कहाँ हैं?
1: पापा तो बाहर हैं, आप बताइए।
2: बेटा ऐसा है, आपके पापा और मैं हम बचपन से बड़े अच्छे दोस्त हैं। मेरे को बता रहा था आशीष, आपके पापा ने बताया था मेरे को कि बेटा है, उसे बात कर लेना फोन पे, कभी उससे पूछ लेना। मेरे को आपके पापा ने कहा था कि मेरा बेटा कभी कभी शरारत भी करता है, चलो हर बच्चा कर देता है, लेकिन आशीष दिल का बड़ा अच्छा है, क्योंकि मेरे बचपन का दोस्त है ना आपका पापा, वो किसी को डांट नहीं सकता। अच्छा बेटा, तुम्हारे पापा ने मेरे से ये कहा था आशीष ने कि तू ना नवनीत को फोन कर लियो, क्योंकि वो तो कभी डांटता नहीं है आपको किसी बात पे। तो अभी आपके पास एक मिनट है क्या?
1: लेकिन आपको काम क्या है?
2: बस एक मिनट तक मेरे को आपको डांटना था।
1: पापा ने कहा था?
2: चुप कर। पापा ने कहा था? मेरे दोस्त का पीछा ले रखा है तूने, उठा के पटक के रख दूंगा, बता रहा हूँ मैं तेरे को।
1: क्या हुआ अंकल?
2: बेटा आपके पापा ने कहा था मेरे से कि वो टाइम पे वो निकल गए हैं, उनको कुछ जरूरी काम था, आपको डांटने का दिल कर रहा था तो वो डांट नहीं पाए, तो मेरे से कहा था आप डांट देना मेरे, जो दोस्त तो दोस्त है ना हम आपस में।
1: अब मुझे क्यों डांट?
2: चुप कर।
1: किस तरह बात कर रहे हैं मेरे से? आप मेरी बात सुनो, मैं पापा से बात कर लूं।
2: पापा से बात करेगा दांत तोड़ दूंगा, ऐसे बैठे बैठे पापा की तरफ से डांट रहा हूं मैं। क्यों कर रहा है ऐसा तूने?
1: पापा को ऐसे किस बात का बुरा? मुझे ये भी नहीं,
2: पापा को किस बात का बुरा लगा, इससे मेरे को क्या लेना देना है। असल में पापा आपके बड़े बिजी हैं आज, तो मेरे को मैसेज किया था उन्होंने कि वह उसको डांट देना।
1: लेकिन बुरी क्या लगी?
2: अंकल कल एक मारूंगा।
1: बदतमीजी क्या करी
2: थी? ये अपने पापा से पूछना ना, मैं आपके बीच में क्यों पढ़ूं?
1: कह रहा हूँ मैंने कोई ऐसी बदतमीजी की नहीं इन दिनों में।
2: एक मरना घुमा के मैंने की नहीं।
1: अंकल ठीक है, मैंने वो भी कर लिया, मैं बदमाशी।
2: ठीक है मेरे साथ बोल कुकड़ू को बेटे।
1: क्या बोलूं?
3: नवनीत कुकड़ू को बोलो मैं रेडियो मिर्ची से नवनीत बोल रहा हूँ, तुम्हारे पापा ने ही मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, तुम रेडियो मिर्ची पे।
1: आपको पापा ने ऐसे कब बताया था मेरा मुर्गा बनाने को?
2: चुप कर। मारूंगा घुमा के। पापा ने कब बताया था मुर्गा बनाने को?
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
4: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
5: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है।
6: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
5: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah live.

0: जिंदगी बिल्कुल गोलमाल वाले पप्पी भाई जैसी चल रही है यार।
1: ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड नू, आप मैं हूँ आपके साथ श्रुति। और अगर आपको गोलमाल के पप्पी भाई नहीं याद है तो भूला, अरे मतलब ये उनका बैकग्राउंड स्कोर होता था क्योंकि वो हर दूसरी चीज भूल जाते थे। और कुछ ऐसा ही जिंदगी में चल रहा है, इसलिए दुनिया में दो तरीके के भूलने वाले लोगों की बात करना चाहती हूँ, जिसमें फर्स्ट आर द पीपल जो अगर कोई चीज भूलते हैं तो उसका ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन निकालते हैं। मतलब ये टू डू लिस्ट बनाएंगे, रिमाइंडर सेट करेंगे एंड उस हिसाब से अपनी जिंदगी बसर करेंगे। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं ना, उनको भगवान ने बड़े फुर्सत में बनाया है क्योंकि इनको भूलने की आदत है, उसके लिए ये रिमाइंडर भी सेट करते हैं, टू डू लिस्ट भी बनाते हैं, लेकिन ना इनका रिमाइंडर बजता है ना ये टू डू लिस्ट खोल के देख पाते हैं। वो भूल जाते हैं कि भाई ये सब कुछ किया भी है मैंने अपने आप को याद दिलाने के लिए। और मुझे इनके बारे में इतने अच्छे से इसलिए पता है क्योंकि मैं ही ये इंसान हूं, इस लूप में फंसी पड़ी हूं। कोई सोल्यूशन हो तो प्लीज बताइएगा। मिर्ची श्रुति के नाम से मैं फेसबुक और इंस्टा पे मिल जाऊंगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: इस फिल्म के आने के बाद कॉलेज लाइफ का मतलब ही चेंज हो गया।
1: 90 ml विद श्रुति।
0: मैं बात कर रही हूँ करण जौहर डायरेक्टोरियल 1998 में रिलीज हुई फिल्म कुछ कुछ होता है। ये फिल्म आई और सडनली कॉलेज लाइफ का मतलब एकदम से बदल गया। बास्केटबॉल कोर्ट, कलरफुल ओवरसाइज टी शर्ट्स, फ्रेंडशिप बैंड, स्कूल वाला पेंडेंट, हेड बैंड एंड हर दूसरे दिन एक नया हेयर स्टाइल। काजोल का टॉमबॉय अंजलि लुक तो प्रॉपर ट्रेंड बन गया था। बैगी टी शर्ट्स, डंगरीज, स्नीकर्स, शॉर्ट क्रॉप्ड हेयर और वो आइकॉनिक हेड बैंड। कसम से मेरे पास मल्टीपल कलर के ये बैंड्स हुआ करते थे। ये बात और है कि स्कूल में आप या तो ब्लैक या तो व्हाइट लगा सकते थे अकॉर्डिंग टू द ड्रेस। वहीं दूसरी तरफ रानी मुखर्जी ने एज टीना मिनी स्कर्ट्स, फिटेड ड्रेसेस और ग्लैमरस कॉलेज फैशन को पॉपुलर किया। ये बात और है कि हम बी टाउन मार्केट्स वाली लड़कियां अपने कॉलेज में सूट्स ही पहना करती थी। और फिर राहुल की ओवरसाइज हुडीज और कूल वाला पेंडेंट जो हर दूसरा लड़का कहीं ना कहीं कॉपी करने लगा था। बाय द वे फिल्म की स्टाइलिंग मनीष मल्होत्रा ने की थी और उनके फैशन ट्रेंड्स ने तो लिटरली हम 90s किड्स की वार्डरोब को डिफाइन किया है। लेकिन इस फिल्म को अगर आज देखो तो कुछ एक चीज थोड़ी प्रॉब्लमेटिक भी है। बताओ, राहुल को शॉर्ट हेड स्पोर्टी अंजलि में प्यार नहीं दिखता और जैसे ही उसके बाल बड़े हो जाते हैं वो साड़ी पहन के ट्रेडिशनली फेमिनिन लुक में आती है तो राहुल को कुछ कुछ होने लगता है। मतलब पर्सनैलिटी सेम, लड़की सेम, बस हेयर स्टाइल चेंज हुआ और राहुल का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। और आयरनी देखिए, आज अंजलि का वही टॉमबॉय लुक फिर से कूल हो रहा है। जेन ज़ी इज लिटरली ब्रिंगिंग द 90s वाली अंजलि बैक। सो या, कुछ कुछ होता है नॉस्टैल्जिया के लिए एवरग्रीन है। बस राहुल के ये जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स थे ना, उसको आज 2026 में अपने डू नॉट फॉलो वाले फोल्डर में रखना। बाकी तो समझदार को इशारा काफी यार। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: में शी स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक पायलट फूक के प्लेन उड़ा रहा था तो उसकी जॉब फूक गई।
3: इसको प्लेन को हाई ले जाना था, ये खुद हाई हो गया। और लोगों को यार प्लेन के फॉल की पड़ी है, जबकि इसका डाउनफॉल शुरू हो गया।
4: मेरा हेयर फॉल भी।
5: मिर्ची, इट्स हॉट। शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
6: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at STT Snow. Tickets available in all leading ticketing platforms.

0: ये डिसीजन हर इंसान अपनी जिंदगी में नहीं ले पाता।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: द डिसीजन टू शो करेज, साहस दिखाना अपने जीवन में किसी भी चीज को लेकर। हेलो जी बाबू मोशाई, कैसे हो आप? और आज हिंदी सिनेमा से इंस्पायर्ड कुछ कैरेक्टर्स की बात करने वाली हूँ जिन्होंने हमें मोमेंट्स ऑफ करेज दिया है थ्रू दैट फिल्म। सो पांच का पंच की लिस्ट की शुरुआत करते हैं फ्रॉम द फिल्म तमाशा। और इस मूवी में रणबीर कपूर का जो कैरेक्टर था वेद का, अपने पेरेंट्स को कन्फ्रंट करना मुश्किल होता है और इस फिल्म में वेद हमारी जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है। ही इज ट्रैप्ड, अ स्टोरी टेलर जो अपनी कॉर्पोरेट वाली मैकेनिकल प्रोडक्ट मैनेजर वाली जिंदगी से बाहर निकलना चाहता है। वो अपने कहानीकार वाले जीवन को एक्सप्लोर करना चाहता है। एंड फाइनली व्हेन ही स्टैंड्स अप फॉर हिमसेल्फ इज द मोमेंट ऑफ करेज इन दिस पर्टिकुलर मूवी। अगर आपकी जिंदगी में भी कुछ लोज चल रहे हैं फिलहाल, देन व्हाई डोंट यू वॉच तमाशा फॉर अ चेंज। खैर, ऐसी ही कुछ और फिल्मों की बातें बाकी हैं इन माय लिस्ट, बट ऑल ऑफ दैट इन अ व्हाइल। टिल देन यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची विद दिस लड़की बड़ी फिल्मी जिसका नाम है श्रुति।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: सुनिधि चौहान, आपका हर गाना हमारा फेवरेट गाना है, लेकिन आपका कौन सा खाना आपका फेवरेट खाना है?
3: दाल चावल और अचार ना हो आम का। हाँ, पानी आ गई। स्पाइस होना चाहिए ना लाइफ में, तो गले को भी स्पाइस की जरूरत है। मिर्ची मैं दिल्ली में बहुत खाती थी, क्योंकि वहाँ नॉर्थ इंडियन फूड में खाना में होती ही है मिर्ची। यहाँ आके आदत हो गई कम मिर्ची खाने की।
2: सुनिधि चौहान, तो फिर लगाइए ना आदत मिर्ची ज्यादा खाने की भी और मिर्ची ज्यादा सुनने की भी। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
5: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग अ फ्लाइंग कार्पेट?
6: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
4: उसे सब पता है।
7: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड, शी इज कमिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम।
4: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर, स्पॉन्सर्ड बाय कतर कैलेंडर, दिस 25th सितंबर एट QNCC, एंड टू ऐड द डबल बोनांजा ऑफ एंटरटेनमेंट, गेट रेडी टू वॉच म्यूजिक एंड डांस डुओ चरण एंड आरसी। एक शाम, एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट SCT Snuno. टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। The Mentalist Suhani Shah live

0: 2007 की एक शाम जब मैंने इस गाने को सुनते ही कहा था कि ये कमाल करेगी मूवी, तब तो मूवी का सिर्फ पार्ट वन आया था, अब तो पार्ट टू। 20 सालों बाद भी ये फिल्म कितनी रिलेटेबल लग रही है। फिलहाल हम आपके एकदम रिलेटेबल आदमी हैं, शाम होते ही आ जाते हैं मस्ती की दुकान लगाने। मस्त मौला गौरव के साथ शाम शानदार की शुरुआत होगी। मिर्ची घड़ी का टाइम शाम के 4:03 से ज्यादा।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: वैसे गर्मी अभी भी कंटिन्यू कर रही है और मसपोल गौरव इतने कहेगा प्लीज थोड़ा अपना ध्यान रखिए। इन सब के बीच हमारे खतरों मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ने कुछ वायलेशंस को पिछले 6 महीनों में पकड़ा है ड्यूरिंग इंस्पेक्शन, वो बताएंगे। इसके अलावा किस तरह से तैयारी हो रही है हमारे कतर के उस बास्केटबॉल वर्ल्ड कप की होस्टिंग की जो कि अगले साल होने वाला है, साथ ही साथ किस तरह से 7-9 सितंबर हमारे कतर में एक खास चीज हो रही है, ये सब कुछ यहीं पता लगेगा। बस कान लगाकर सुन लो। और वेब समिट 2027 की डेट क्या है ये भी यहीं पता लगेगी। मस्त बोलो गौरव के साथ शाम शानदार में अपना कान लगाया रहो, मिर्ची सुनते रहो। इट्स हॉट

0: Milci.
1: Escabana, puscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
2: हेलो
3: गुड इवनिंग मिस्टर श्रीवास्तव, मैं मॉडर्न स्कूल से बोल रहा हूँ, आपके बेटे के स्कूल से। हाउ आर यू?
2: वेरी फाइन, थैंक यू।
3: अतुल वैसे पढ़ाई लिखाई में यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके मार्क्स भी अच्छे आते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बिल्कुल आगे नहीं है।
2: आई नो, वो खेल में कुछ ऐसा है नहीं खास ज्यादा। हाँ,
3: नहीं वही मैं आपको बताना चाह रहा था। अच्छा मिस्टर श्रीवास्तव, क्योंकि हम 26 जनवरी पे एक फंक्शन कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि पेरेंट्स भी उसमें पार्टिसिपेट करें। पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, जितना अच्छा परफॉर्म वो करेंगे उसके मार्क्स बच्चे को दिए जाएंगे। यू नो,
2: परफॉर्म मतलब क्या, परफॉर्म क्या करना होगा हमको?
3: कुछ भी ऐसा करिएगा जो कि बच्चों की चीज हो। आप प्लीज आके यहाँ पे पार्टिसिपेट करिए। आप आओ मिलो शिलो शालो करिए ना यहाँ पे आके स्टेज पे।
2: गेम है क्या ये?
3: आओ मिलो शिलो शालो।
2: पेरेंट्स को परफॉर्म करना होगा?
3: वो सिर्फ आप ही को परफॉर्म करना होगा, आप ही को ये पूरा बोलना होगा आओ मिलो शिलो शालो। एक्चुअली प्रॉब्लम भी है, हमारे पास चार ही थे उसमें से यही बचा है। आओ मिलो शिलो शालो अगर आप ले सकते हैं तो आप इसे प्लीज परफॉर्म कर लीजिए ताकि उसके मार्क्स अच्छे आए। राइट,
2: पूरी कोशिश करूंगा। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट।
3: देखिए शुरू ऐसे होता है, आप मेरे साथ साथ बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। राइट, और इसमें बीच में ना क्लैप करना होता है इस तरह। आओ मिलो,
2: आओ मिलो
3: शिलो शालो,
2: शालो
3: कच्चा धागा,
2: कच्चा धागा
3: रेस लगा लो,
2: रेस लगा लो,
3: दस पत्ते तोड़े,
2: दस पत्ते तोड़े,
3: एक पत्ता कच्चा,
2: एक पत्ता कच्चा।
3: इसको ना प्रैक्टिस करिएगा आप तेज से बोलेंगे। दस पत्ते तोड़े,
2: तोड़े
3: या मिस्टर श्रीवास्तव, दस पत्ते तोड़े, दस पत्ते तोड़े,
2: दस दस दस पत्ते तोड़े।
3: हिरण का बच्चा, हिरण का बच्चा, सब हिरण का बच्चा।
2: ओके ओके, सॉरी सॉरी, हिरण का बच्चा।
3: घोड़ा दौड़ा दुगड़ू दू,
2: घोड़ा दौड़ा दुगड़ू दू,
3: श्रीवास्तव बोले कुकड़ू को,
2: मिस्टर
3: श्रीवास्तव बहुत अच्छा लगता है जब बाप कोई बच्चा बनने की कोशिश करता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आपकी वाइफ ने मुझे नंबर दिया था, आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका मुर्गा बन गया है।
2: यार ये कोई सुनेगा
3: सर? ये सर ये सब सुन चुके हैं। अब प्यार से एक बार बोल दीजिए, इसको रिपीट कर लीजिएगा, बार बार बोलिएगा कुकड़ू को।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
5: इट्स ऑल डाउन टू डोनी, इज़न्ट इट? फोर बॉल्स लेफ्ट, दे नीड 12 रन्स टू विन।
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है।
7: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
6: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar, this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah.

दुनिया के बड़े बड़े टेक्नोलॉजी इनोवेटर्स से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स एक बार फिर से कतर में होंगे। अरे भाई, क्योंकि जब प्लेटफॉर्म वेब समिट का हो तो कोई पीछे कैसे रह सकता है। कतर की वेब समिट 2027 की डेट्स आ गई है। #974 चेयर्ड बाय शेख जासिम बिन मंसूर बिन जाबर अल थानी, डायरेक्टर ऑफ द गवर्नमेंट कम्युनिकेशन ऑफिस एंड चेयरमैन ऑफ परमानेंट वेब समिटिंग ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। उन्होंने बता दिया है कि हमारे कतर में 31st of January से लेकर 3rd of February 2027 होने वाला है वेब समिट। एक बार फिर से दुनिया भर के बड़े बड़े लोग यहां पर होंगे एंड इस बार बहुत सारे अदर गवर्नमेंट एंटिटीज भी साथ आ रही हैं, इंक्लूडिंग मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, QIA कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के अलावा इन्वेस्ट कतर, कतर टूरिज्म, कतर एयरवेज एंड सब मिलकर बनेंगे वेब समिट। एंड आई एम श्योर मोर देन 70 ग्लोबल पार्टनर्स 2027 एडिशन के लिए अब तक एग्री कर चुके हैं। इसमें डेल, PwC एंड पालो एंड ऑल्टो नेटवर्क्स जैसे बड़े नाम है। कुल मिलाकर दुनिया के बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स से लेकर टेक्नोलॉजी लीडर्स तक, इन्वेस्टर्स तक, सब इसका हिस्सा बनते हैं। और मेरे लिए तो मैं लकी था, इस साल मैं इसका हिस्सा बना और अगले साल भी पूरी कोशिश रहेगी। इनफैक्ट हमारी अंशु तो कई सारे स्टेजेस जो है अलग अलग वो इवेंट के होस्ट करती है। वेल, इतना ही कहना चाहता हूँ, एक फ्लैगशिप इवेंट जो हमारे कतर की और ज्यादा दुनिया में साख बढ़ा रहा है, वो एक बार फिर से आने को तैयार है। तो भाई बस तैयार हो जाइए दुनिया के बड़े बड़े क्रिएटर्स से लेकर इन्वेस्टर्स को देखने के लिए। 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: मिले तुम क्या मिले नहीं, लेकिन हमें सबसे ज्यादा खुशी होती है जब सैलरी मिले। क्योंकि कुछ पलों के लिए सही, जैसे ही सैलरी का टक से मैसेज आता है ना, पता नहीं आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंस का एक अलग लेवल जाग जाता है। लेकिन फिलहाल कॉन्फिडेंस तो आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट करके भी आता है। अगर आपकी लाइफ में अब पैसा थोड़ा ज्यादा है तो इन्वेस्ट करो।
1: गोल्ड अपडेट।
0: वेल, अल फरदान गोल्ड एक्सचेंज रेट आज आपको कुछ यूं मिलने हैं। यस, पैम्प 1 ग्राम गोल्ड लेडी फॉर्चुना बार 588, 5 ग्राम गोल्ड लेडी फॉर्चुना बार 2763 कतारी रियाल, पैम्प 10 ग्राम गोल्ड लेडी फॉर्चुना बार 5457 कतारी रियाल, एंड अगर इसके बात करें 1 आउंस गोल्ड लेडी फॉर्चुना बार की तो ये मिलने वाला है आपको 16870 कतारी रियाल, एंड 10 तोला गोल्ड बार 62651 कतारी रियाल। राइट नाउ के एक्सचेंज रेट, अगर आप अल्फरदान गोल्ड रेट जानना चाहते हैं तो रोज यहां मस्त बॉलर गौरव के साथ इसी टाइम पर आप पता कर सकते हैं, और पैसे जैसे ही आए तुरंत इन्वेस्ट करो। सबसे सेफेस्ट मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट है मिर्ची शॉट।
1: स्टे अहेड ऑफ टुडेज गोल्ड रेट्स विद अल्फरदान एक्सचेंज, पैम्स ऑफिशियल एजेंट इन कतार। बाय ऑथेंटिक स्विस मेड 24 कैरेट पैम्प गोल्ड बार्स एंड अर्न कतार एयरवेज एवियोस टुडे। विजिट आवर ब्रांचेस और डाउनलोड द ऐप नाउ।

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक पायलट फूक के प्लेन उड़ा रहा था तो उसकी जॉब फूक गई।
3: इसको प्लेन को हाई ले जाना था, ये खुद हाई हो गया। और लोगों को यार प्लेन के फॉल की पड़ी है, जबकि इसका डाउनफॉल शुरू हो गया।
4: मेरा हेयर फॉल भी।
5: मिर्ची इट्स हॉट।
6: रेडी
7: रेडी
6: टू लर्न?
7: यस।
6: टू प्ले?
7: एब्सोल्युटली।
6: टू ग्रो?
7: विद मेजराती।
8: This school season, fuel every day with delicious and nutritious Maserati fresh products.
7: Milk, cheese, yogurt, labneh, eggs.
8: From breakfast to lunchbox and snacks, Maserati has your family covered. Grow with Maserati fresh.

0: हाँ जी, इलीगल वेपन गाने का नाम था जैस्मिन सैंडलर्स गैरी सांडू ने मिलके गा दिता है और सुना दिता है किस बंदे ने। लेकिन इतने दिन से हम सुना रहे हैं सूरज चाचू को, लेकिन उनको तो दया नाम की चीज आई नहीं रही।
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान।
2: वेदर अपडेट।
0: अब आप सोचो, ये हवा जो 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रही है, 35 किलोमीटर पर आवर, उसका कोई काम आ ही नहीं रहा है गर्मी, क्योंकि अपना इफेक्ट उससे ज्यादा बना रही है। 43 डिग्री सेल्सियस दिन का मैक्सिमम, मिनिमम विल गो अराउंड 32, और ये इसी का अराउंड हवर करेगा इस पूरे वीकेंड भी। तो दोस्तों, बस इतना ही कहना चाहते हैं, ह्यूमिडिटी का पारा 31% के आसपास, सुबह शाम मौसम में ठीक ठाक नजारा, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब हम पानी पी पी कर सूरज चाचू को कोसेंगे और 20-25 सितंबर के बाद चीजें बेहतर होंगी। लेकिन तब तक के लिए ओके जानू, इस मौसम को एंजॉय करते रहो। मिर्ची इट्स हॉट जानू।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: शंकर महादेवन,
3: यू रियली ऑल्सो रिवर्स एजिंग. तो हम गाने के बारे में बात करें, स्किन रूटीन के बारे में जरा, कौन सा रेटिनॉल, कौन सा क्या कर रहे हैं आप?
4: नहीं, ऑनेस्टली आई जस्ट रियलाइज्ड जस्ट 2 years बैक, नॉट दैट दैट्स मेड अ चेंज, टू पुट दिस सनस्क्रीन, नॉट सनस्क्रीन द वन व्हिच यू यूज फॉर द स्पॉटिंग थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट दैट सनस्क्रीन थिंग इज व्हाट माय वाइफ टोल्ड मी.
2: शंकर महादेवन भी सनस्क्रीन लगा रहे हैं, तो आप किस खेत की मूली हैं? आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
1: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Only on Mirchi, it's hot.
5: हर बार वही रेगुलर रिचार्ज क्यों? अपने हाला नंबर के लिए ओरेडो का योर स्पेशल ऑफर पाइए. मोर वैल्यू मेड फॉर योर नीड्स. अभी ओरेडो ऐप पर चेक करें या करीबी रिटेलर से मिलें. एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडो.
6: सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
7: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग ऑफ फ्लाइंग कार्पेट?
8: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
6: उसे सब पता है.
9: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
6: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम, एक स्टेज और दो कमाल. बुक योर टिकट्स नाउ एट SCT Snowno. टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स. द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव.

0: 89.6 मिर्ची वन पर तबाही गाना खत्म हुआ और आपका भाई आ गया। लेकिन हम आपके भाई तो हैं, पर अगर आप गलत काम करते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते मेरे भाई, सीधे आप जेल की चक्की पीसेंगे होंगे। 5:04
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: बताइए, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ने पिछले 6 महीनों में हमारे कतर में इंस्पेक्शन कैंपेन चलाई। इस दौरान कई राइड हेलिंग कंपनीज, यानी कि जो बहुत सारी राइड कंपनीज हैं, उनके काफी सारे वायलेशंस जो है वो पकड़ में आए हैं। जैसे कि सबसे पहला वाला, बिना बिजनेस लाइसेंस के चकाचक टैक्सी ऑपरेट की जा रही थी, तो अनलाइसेंस ऐप का यूज करके आपको कहीं ना कहीं ये वायलेशन देखने को मिला है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ने बकायदा ये जॉइंट ऑपरेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के साथ मिलकर चलाया था, एंड इस दौरान 987 व्हीकल्स को इंस्पेक्ट किया गया और हैवी ट्रैफिक टाइम पर बिजनेस एरियाज में, मेट्रो स्टेशन के आसपास, ओल्ड दोहा पोर्ट, कतारा, पर्ल आइलैंड, यहां पर ही सबसे ज्यादा वायलेशंस वाली चीजों को पाया गया है। एंड कहा यही जा रहा है कि ये जो भी इंस्पेक्शन चलाया गया था पिछले 6 महीनों में, ये हमारे आपके राइड एक्सपीरियंस को अच्छा बनाने के लिए चलाया गया था। तो अगली बार जब आपको कोई ऐसे चिक चिक लाइट मार के बोले ना टैक्सी, तो आप कह देना भैया निकल लो, बिना लाइसेंस के हम बैठते नहीं, 4 पैसे बचेंगे, उस चक्कर में 40 पैसे का नुकसान होगा, ये समझ लो, क्योंकि इन कंपनीज की कोई जिम्मेदारी होती नहीं है, क्योंकि इनके पास लाइसेंस होता नहीं। सो अगली बार अपनी सेफ्टी के लिए राइड हेलिंग कंपनीज जिनके पास ऑथराइज लाइसेंस हो उन्हीं की गाड़ियों में बैठो। मस्त बोला गौरव आपके साथ है। 89.6 मिर्ची वाले थॉट।

Yeah, भाई तेरा बस लिखता गाने, हर दुनिया देती ताने, बस इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने, शौकीन चाहिए टिकटे, चाहे होने देना शौको, ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो, घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते, भर डाला ओटू इनके फेस बनते, इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते, ए

0: Mirci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rambana. Burga, burga. Na vjet bala burga. Mirci, burga.
1: Hello?
2: Hello? Hello?
1: भैया आवाज साफ नहीं आ रही, कम आ रही है आवाज।
2: साहब आपकी दुकान से कल एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन ले गया था, याद है आपको?
1: हाँ जी।
2: आपकी दुकान से एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन लेके गया था मैं कल।
1: अच्छा अच्छा,
2: तो ये यार ये ड्रिल मशीन कैसे दिए, ये बहुत आवाज कर रही है, एक सेकंड रुको।
1: भाई ड्रिल मशीन तो आवाज तो करेगी यार।
2: एक सेकंड यार, आवाज करेगी। आप बंद कर इसको, बंद कर रमेश, इसे बंद कर दे यार। आप मरवाओगे, ड्रिल मशीन आवाज करेगी, यहाँ सारे जाग जाएंगे तिजोरी खुलने से पहले ही।
1: मैं
2: आपको यही बता रहा हूँ, ये ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, ये यहाँ पे जो मैं ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना, ये जिस कोठी में आया हुआ हूँ अभी इनकी तिजोरी खुली भी नहीं है। मैं तो ये ड्रिल मशीन यार, इसको बंद कर दे रमेश, बंद कर दे। भाई साहब ये तिजोरी मैं खोल रहा हूँ, ये आवाज बहुत कर रही है यार।
1: क्या कह रहे हो, तिजोरी ड्रिल मशीन कर क्या रहे हो आप?
2: इनके घर की चोरी कर रहा हूँ, खोपड़े में बात नहीं आती क्या तेरे यार? मुझे फंसवाएगा तू?
1: तो ड्रिल मशीन हमारे लेके तो चोरी करने गया।
2: एक तो आवाज इतनी दी है तूने, ड्रिल मशीन के सारे जाग जाएंगे यार।
1: तू चोरी करने के लिए गया?
2: तुमने पहले क्यों नहीं बताया
1: यहाँ पे मशीन से है कौन? तू खुद चोरी कर रहा, मुझे फंसवाएगा।
2: एक बात सुन,
1: तू मुझे मरवाएगा, मुझे फोन कर दिया।
2: बात सुन।
1: हेलो
2: यार, कमाल है, आप तो मेरी रोजी फिर रात मार रहे हो।
3: सर मेरी बात सुनिए, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपकी दुकान का नंबर मुझे किसी ने दिया था, आप रेडियो मिर्ची में हैं, सब आपको सुन रहे हैं, आपके साथ मजाक किया है, मुर्गा बना दिया आपका।
1: कहाँ से बोल रहे भैया?
3: रेडियो मिर्ची से सर, आपके साथ मजाक किया है मैंने। जरा हंस के मेरे साथ एक बार।
2: अब ठीक है, मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स
4: हॉट। नीड टू सेंड मनी होम? मेक इट फास्ट, मेक इट सेफ, मेक इट अल्फा डॉन एक्सचेंज,
5: योर ट्रस्टेड चॉइस फॉर सेंडिंग मनी, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज एंड गोल्ड बार्स एंड कॉइन्स। विजिट आवर नियरेस्ट ब्रांच और डाउनलोड द अल्फा डॉन एक्सचेंज ऐप नाउ। फॉर असिस्टेंस कॉल और व्हाट्सएप 4453777777।
6: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
7: Mahendra Singh Dhoni ke dimag mein kya chal raha hai, ye samne wali team ko kabhi pata nahi chala, lekin use pata hai.
8: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
7: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar, this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at STT Snoonu. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah live.

0: घर की एक दो पार्टी अच्छे से मैनेज करने के बाद तुम्हें भी घर वालों ने कहा है इवेंट मैनेजर बनने लायक हो, तो ये एग्जीबिशन आप ही के लिए है। इनफैक्ट आज भी है ये और कल भी है, लास्ट डे कल है, जितनी जल्दी हो सके आप चले जाओ।
1: #974974 द मोस्ट ट्रेंडिंग लोकल न्यूज ऑफ द डे।
0: बात करो मैं कतर इवेंट शो 2026 की, जो आपको दोहा एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर में मिल जाएगा। एंड बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप अगर इवेंट इंडस्ट्री से जुड़े हैं, आपको भी इंटरेस्ट है कि कुछ ऐसा लाया जाए जो कतर के मार्केट में इवेंट इंडस्ट्री में एकदम छा जाए, तो इस बार आप यहां जा सकते हो। एंड इवेंट अपने पिछले एडिशन से इस बार ऑलमोस्ट 100% और बढ़ गया है, यानी कि अगर पिछली बार एग्जीबिटर्स 25 थे तो इस बार 50 हो गए हैं। वहीं 5000 से ज्यादा इंटरनेशनल डेलीगेट्स यहां पर आए हुए हैं जो इवेंट इंडस्ट्री का हिस्सा रह चुके हैं, और इस बार ये हमारे कतर में कतर इवेंट शो का हिस्सा बने हैं। इस बार की थीम है द न्यू इवेंट इकोनॉमी, स्केल, कॉम्प्लेक्सिटी एंड अपॉर्चुनिटी। तो भाई इसका फायदा उठाइए। अगर आपको भी लगता है कि यार छोटी छोटी बर्थडे पार्टीज इवेंट वगैरह तो हो गए, अब कुछ बड़ा करना है, तो इस इंडस्ट्री में जाकर बड़ा करने के लिए आपके पास मौका है कतर इवेंट शो का हिस्सा बनकर अपने लिए कुछ नया खोज पाने का। सो मैं बस इतना ही कहूंगा, अगर इवेंट में दिल लगता है तो अब दिमाग और पैसा लगाकर इसे और बड़ा करो, क्योंकि यहां पर बहुत कुछ फोकस होने वाला है। यस, और अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हो तो कल भी आपके पास मौका है, जहां पर कतर कैलेंडर इस महीने भी एक बड़ा इवेंट लेकर आया है। एंड मैं यही कहूंगा, आपके लिए बेस्ट टाइम है बी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट। एंड दोहा एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर में जाकर आप इवेंट इंडस्ट्री का हिस्सा बनने की पहली शुरुआत कर दें, और अगर कमाई धमाई हो जाए तो फिर मस्मौला वर्ल्ड तुरंत पार्टनर बन जाएगा। हमें बहुत मजा आता है लोगों के साथ पार्टनरशिप करने में। मिर्ची इट्स हॉट।

ट्विस्ट नहीं दोस्त, दिमाग को एकदम ट्विस्ट कर देगी। अरे बात कर रहा हूँ मैं उस लेडी की जो इस वक्त पूरी दुनिया में तहलका मचा रही है। यस, अमेरिका में जाकर स्पेल बाउंड में लोगों को स्पेल बाउंड कर दिया है। हाँ जी, बात कर रहा हूँ दी मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर फॉर दी वेरी फर्स्ट टाइम, स्पॉन्सर्ड बाय कतर कैलेंडर, प्रेजेंटेड बाय आईपे, जहां पर सुहानी आ रही है हमारे कतर 25th of September को। शी इज वेरी एक्साइटेड एंड आई एम टेलिंग यू, कतर में जो मेहमान नवाजी हम दिखाएंगे वो तो अपनी जगह, लेकिन उसके बाद इनके दिमाग से जो ये रीड करके हमें दिखाने वाली है, हम सब एकदम से हबीबी चक्कर खाने वाले हैं। अल्लाह हबीबी शोई मदद वाली स्थिति हो जाएगी, क्योंकि यार दिस गर्ल इज अमेजिंग नो डाउट। जितने वीडियोस चेक करते जाओ उतना ज्यादा लगता है कि कैसे कर पा रही है। वेल, अगर आप भी इस मैजिक से रूबरू होना चाहते हो 25th of September QNCC में सुहानी शाह हमारे कतर आ रही है, एंड यू हैव टू बुक योर टिकट्स ऑन ऑल लीडिंग प्लेटफॉर्म। जहां पर भी आप टिकट प्लेटफॉर्म को जहां भी यू नो आप मेंबर वहां जाओगे आपको मिल जाएगी। एस सिटी स्नूनू पर आपको एक एडवांटेज है, 30 Qatari riyal का कैशबैक मिल रहा है। तो अगर आप आपके दोस्त प्लान कर रहे हो कि हमें जाना है, हम बाइट देखेंगे, हमें तो देखना है कैसे करती है, तो फटाफट से अपनी टिकट बुक कर लो। और अगर एस सिटी पे कर रहे हो तो आपको 30 Qatari riyal का कैशबैक मिलेगा। एंड लेट मी टेल यू, सुहानी शाह अकेले नहीं आ रही है, म्यूजिक एंड डांस की महफिल भी सजेगी जब सिंगर चरण एंड डांसर आसी ये दोनों परफॉर्म करेंगे इसी इवेंट में। सो गेट रेडी गाइस, मुझे लगता है एक ऐसी शाम जो आप बहुत दिनों से चाह रहे हैं, पर अब हम करेंगे आपके नाम। पहले उसके लिए आप टिकट खरीद लो 89.6 मिर्ची 1। अगला गाना मेरी उसी उम्मीद का इंतजार कर रहा है जो आपके टिकट बुक करने को लेकर है। मिर्ची इट्स हॉट।

0: सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
1: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग अ फ्लाइंग कार्पेट?
2: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
0: उसे सब पता है।
3: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड, शी इज कमिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम।
0: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर, स्पॉन्सर्ड बाय कतर कैलेंडर, दिस 25th सितंबर एट QNCC एंड टू ऐड द डबल बोनांजा ऑफ एंटरटेनमेंट, गेट रेडी टू वॉच म्यूजिक एंड डांस डुओ चरण एंड आरसी। एक शाम, एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट STT Snow No. टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। The Mentalist Suhani Shah.

मखड़ा। वेल गाना खत्म हो गया लेकिन आपके साथ अभी भी जुड़ा हुआ है। यार मुझे स्कूल टाइम में ना एक चीज हमेशा याद रहेगी, जो मेरे स्कूल टाइम के गेट के बाहर होती थी वो थी लाला जी की पाचक की दुकान। यार मतलब केमिस्ट्री लैब की खुशबू से भी अलग खुशबू थी उस पाचक में। सच बताऊं मतलब स्कूल के बाहर जाकर पाचक की वो 15-20 अलग अलग वैरायटी के पाउडर एंड वो एक इमली वाली खट्टी गोली, यार वो सब कभी लाइफ में वापस आ पाएगा क्या? नहीं ना। खैर छोड़ो, तब पैसे नहीं होते थे तब रोज खाने का मन करता था, अब पैसे हैं तो है ही नहीं पाचक। फिलहाल पैसे हैं तो घर भेजेंगे। वेल अगर बात करें इस वक्त एक कतरे रियाल के बदले मिलने वाले इंडियन रुपीस 26.04 हैं, 26.04 है जी 04। ये इतने में ना मुझे लगता है मैं उस वक्त उनकी पूरी दुकान खरीद सकता था। खैर इसके बाद अगर श्रीलंका की बात करें अगेंस्ट 1 कतरे रियाल श्रीलंकन रुपीस 90.04। वहीं अगर जनाब पाकिस्तान रुपीस की बात की जाए कल वाले रेट पे ही आज भी है 76.17 वाहिद कतरे रियाल के बदले 76.17 पाकिस्तान रुपीज। तपाई को नेपाली रुपीज का रेट से आज 41.55 का भल्चर रेट बनी है जी। 41.55 को नेपाली रुपीज का रेट छदाई घर भेजन लाइस आई टाइम छ। अगर बंधु बांग्लादेशी टाका बात करके था एक कतरे रियाल के बदले 33.72 तो हाँ जी तो बाड़ी दे पाटी देव मस्त मोलो गौरव ने बताया। आई एम 89.6 मिर्ची वन पर अगला गाना, उसके बाद हम अजान ब्रेक की तरफ। मिर्ची थॉट

0: ओमी श्रेया घोषाल यारो फॉरएवर एंड हमारे आपके गाड़ी चलाने के एक्सपीरियंस भी बदलने जा रहे हैं। मिर्ची घड़ी में शाम के 6:04
1: टाइम चेक स्टेशन विद नसीब मेडिकल सेंटर कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: हाँ जी, व्रुम व्रुम करके हम जो बचपन से गाड़ियों को चलते देख रहे हैं अब उसका एक बदलता स्वरूप हमें देखने को मिलने वाला है। स्टीयरिंग व्हील को पकड़ने का तरीका हो या गाड़ी ऐसी जिसमें ड्राइवर ही ना हो, ये

0: सब कुछ होने वाला है, क्योंकि ना तो ट्रैफिक का स्ट्रेस होगा ना पार्किंग की झिकझिक। हमारे कतर में ऑटोनोमस ई मोबिलिटी फोरम 2026 आ रहा है।
1: #974974 द मोस्ट ट्रेंडिंग लोकल न्यूज ऑफ द डे।
0: यस, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट अंडर द पेट्रोनेज ऑफ हिज एक्सीलेंसी शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन मोहम्मद अल थानी, उन्होंने बाकायदा ये क्लियर किया है कि पूरी की पूरी दुनिया के बड़े एक्सपर्ट्स, पॉलिसी मेकर्स और इनोवेटर्स एक ही जगह असेंबल होकर फ्यूचर ऑफ ट्रांसपोर्ट लेकर आ रहे हैं। और कैसे इंटेलिजेंट मोबिलिटी होगी, ये तीन दिन तक नॉनस्टॉप हाई लेवल डिस्कशंस हमारे कतर में होने जा रहे हैं। और फ्यूचर के जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होंगे वो किस तरह के होंगे, इसके लिए भी अब तैयारियों ने कमर कस लिया है। और हमारे कतर में अब जब ये होने जा रहा है तो मुझे पूरी उम्मीद है कुछ तो बड़ा देखने को मिलने वाला है। दोस्त तैयार हो जाइए, 7 सितंबर से 9 सितंबर सुबह 9 बजे से देर शाम 4 बजे तक QNCC में ये होने जा रहा है। एंड टिकटिंग प्राइजेस हैं, अगर आप चाहें तो इसका हिस्सा बन सकते हैं। एंड मुझे लगता है एक बार आप यहां गए तो आपको पता लगने वाला है कि फ्यूचर में जिंदगी कैसे बदलेगी भाई। स्पेशली अगर हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करें तो कतर का नेशनल विजन 2030 उसको बिल्कुल अलाइन करता हुआ ये एग्जीबिशन बहुत कुछ लेकर आ रहा है। बी अ पार्ट ऑफ इट अगर आपको इंटरेस्ट है कि फ्यूचर में कैसे इधर से उधर जाएंगे। तो मिर्ची इट्स हॉट,
2: मिर्ची बैंगर, ये गाना हॉट है।
3: मिर्ची बैंगर, गाना हॉट है।

0: Mirci. Iskabana, puskabana, sakabana. Yabana. Burka, burka. La vizba la burka. Mirci, burka.
1: Hello.
2: Hello.
1: हेलो
2: हाँ
1: बोलो कौन
2: हेलो इधर से बोल रहा हूँ आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
1: हाँ बोल कौन रहा है
2: बोल कौन रहे हो कंप्लेंट करी थी आपने सीवर साफ करने की नीचे से बोल रहा हूँ आपके सीवर में घुसा पड़ा हूँ
1: बोल कौन रहे हो
2: आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
1: हाँ बोला था
2: ओ भैया मेरी जान को बचाओ यहाँ पे बहुत गहरा है यार आप लोग खाते क्या हो कितना गहरा कर दिया आपने
1: तो पूछ के घुसे थे क्या अंदर
2: ज्यादा सवाल मत करो मेरी बात सुनो सिर्फ
1: हाँ बोलो
2: ओए यार आपके टॉयलेट पे आपकी कोई बैठा के क्या क्या फेंक रहा है यार ऊपर से ओए बंद करो सर ओ भैया मेरी जान को बचाओ यहाँ पे बहुत गहरा है यार आप लोग खाते क्या हो कितना गहरा कर दिया आपने
1: कौन बोल रहा है कहाँ घुस गए यार
2: हेलो इधर से बोल रहा हूँ आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
1: हाँ हाँ बोला था हुआ क्या है कुछ तो बताओ
2: ज्यादा सवाल मत करो मेरी बात सुनो सर ओए यार आपके टॉयलेट पे आपकी कोई बैठा के क्या क्या फेंक रहा है यार ऊपर से ओए बंद करो सर
1: कब आया था कब घुसा अंदर
2: फिर सवाल यार मैं यहाँ पे अटका पड़ा हूँ मुझे बाहर निकालो यार कैसे भी करके
1: तो कहाँ करा कमी हो गया है
2: सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी नीचे घुसा पड़ा हूँ आपके सीवर में बाहर निकालो यार
1: मैं तो इधर ऑफिस में हूँ अपने
2: ऑफिस क्यों गए सीवर साफ करवाना था मैं तो यहाँ पे घुसा पड़ा हूँ ना अंदर
1: मेरी सीवर में घुसा है किसी और के सीवर में घुस गया
2: ये बदबू से पता चल रहा है सीवर तेरा ही है यार
1: सीवर में मरा रहा है तू
2: गाली तो मत दो
1: हेलो
2: हेलो
1: फिर फोन कर दिया तूने
2: अच्छा सीवर साफ हो जाएगा काम करो एक चीज बोलो
1: क्या बोलो
2: कुकड़ू को
3: सर आई एम सो सॉरी मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मुझे किसी ने बताया था कि आपने सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका पुरका बन गया
1: कुकड़ू को
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ only on मिर्ची it's hot
5: it's all down to Dhoni isn't it four balls left they need 12 runs to win
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला लेकिन उसे पता है
7: she can read your mind she will blow your mind She is coming for the very first time.
6: The Mentalist, Suhani Shah live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment. Get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah live

0: साहेबा गाना तो सुनाए ना।
1: मस्त मौला गौरव, मस्त मौला गौरव।
0: लेकिन अब उससे इम्पोर्टेंट चीज बताएंगे कि भाई वो एशिया कप जो पहले होने वाला था श्रीलंका में, लेकिन किसी वजह से श्रीलंका से होस्टिंग राइट छिन गए, वो अब अगले साल इंडिया में होने वाला है। यस, मैं बात कर रहा हूँ विमेन्स एशिया कप क्रिकेट की। वही मस्त गौरव आपको तो चाहेगा कि इसके अलावा अगर बात की जाए तो हालत खराब हो गई है बुमराह साहब। वैसे तो आप खेल ही नहीं रहे, इस वजह से ही शायद आपकी ये पहले नंबर की पोजीशन चली गई है। यस, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में थर्ड पोजीशन पर आ गए इंडिया के बॉलर बुमराह साहब, एंड ऐसे में हमें तो घबराहट होने लगी है। बुमराह भाई, टीम तो कम से कम टेस्ट में ना खेल पाई, आईसीसी का टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल तक ना पहुंच पाए, कम से कम आप तो फाइनल वाली गद्दी पकड़े रहो, उसमें अगर झटका लगता है तो बुरा लगता है। इन सब के बीच तैयारी पहली महिला चैंपियंस ट्रॉफी की, अब अगले साल 14 से 28 फरवरी के बीच मुंबई और वडोदरा में टूर्नामेंट होगा, तो एक साल इंतजार करना पड़ेगा, यानी कि लगभग 6 महीने का हमें अगर विमेन्स एशिया कप देखना है। तो दोस्तों क्रिकेट के फैंस, अगला गाना हमारी तरफ से आपके लिए मिर्ची पर।

हाँ जी, मैं तो चलिया आपकी ओर और आप चलो सुहानी शाह की ओर। आपके साथ है एंड याद दिलाना चाहता हूँ शाम के बारे में जो लेकर आ रही थी मेंटलिस्ट सुहानी शाह फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन कतर, स्पॉन्सर्ड बाय हमारे कतर कैलेंडर एंड प्रेजेंटेड बाय आईपे, जहां पर मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा जबरदस्त तरीके का माहौल बनने जा रहा है, जहां पर सुहानी लोगों का माइंड रीड करेगी, ऐसा इल्यूजन क्रिएट करेगी कि उनका मैजिक भी सच लगेगा। अब वो कैसे कर पाती हैं, क्या कर पाती हैं और कैसे आपको शॉक देती हैं, इसके लिए तो आपको उनके सामने रूबरू होकर इस प्रोग्राम को देखने आना पड़ेगा। इस उम्मीद में कि आपने अभी तक अपनी टिकट्स करा ली हैं और नहीं कराई तो मैं स्मॉल गौरव याद दिलाना चाहता है, यस जल्दी से जाइए, किसी भी प्लेटफॉर्म टिकट पर आपको ये अवेलेबल मिलेगी। लेकिन उससे भी खास बात, एस सिटी सुनू ऐप पर अगर आप जाएंगे 30 कतरी रियाल का कैशबैक चल रहा है, यानी कि आप किसी भी कैटेगरी की टिकट खरीदो, अभी अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है उसमें टिकट्स ले लो एंड फटाफट से बुक कर लो। 25 सितंबर यानी कि आज से 23 दिन दूर खड़े हम, एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसी शाम जो संगीत एंड डांस के नाम भी होगी, क्योंकि चरण और आसी भी आ रहे हैं, दोनों परफॉर्म करेंगे, कमाल की शाम होने वाली है। आप इंतजार ना करो, आप फटाफट से टिकट बुक करो, सैलरी आ गई है दोस्तों, इससे पहले कि इधर उधर खर्चे हो जाएं, कुछ अपने लिए भी कराएं। 89.6 मिर्ची वाली थॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक पायलट फूक के प्लेन उड़ा रहा था तो उसकी जॉब फूक गई।
3: इसको प्लेन को हाई ले जाना था, ये खुद हाई हो गया। और लोगों को यार प्लेन के फॉल की पड़ी है, जबकि इसका डाउनफॉल शुरू हो गया।
4: मेरा हेयर फॉल भी।
5: मिर्ची, इट्स हॉट। शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
6: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar, this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at STT Snow. Tickets available in all leading ticketing platforms.

आप जिंदगी में अच्छे काम कर लीजिए तो शायद आपको कोई याद कर ले। लेकिन अगर आप एशियन और क्रिकेट खेलिए तो आपके रिटायरमेंट के बाद भी लोग आपको याद करेंगे। फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ विराट कोहली साहब की, जो टेस्ट तो नहीं खेले, T20 तो नहीं खेले, लेकिन फिर भी उनके बारे में मीडिया को पूरी खबर रहती है। वैसे कोहली साहब के एकदम लेटेस्ट टैटू की बात करें तो उन्होंने 12वां टैटू बनवा लिया है भैया। हाँ जी, कहा ऐसे ही जा रहा है कि इसका जो बिल्कुल पैटर्न ऐसा है जैसे पानी में ड्रॉप नहीं गिरता है तो फिर वेव्स बनती हैं, बिल्कुल वो लहरों जैसा, बूंद गिरने पर जो लहर आती है वैसी एकदम चीजें बनवाई इन्होंने, और इसी के साथ 12वां टैटू इनके शरीर पे आ गया है। वेल, अगले महीने होने वाली वनडे सीरीज के लिए बिल्कुल तैयार है एंड कुछ नया देने के लिए भाई हमेशा तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं। बट आई एम वेरी श्योर विराट कोहली के इतने सारे टैटू के बाद मैं यही सोचता हूँ यार कि यहाँ एक बनवाने की जीवन भर से सोच रहे हैं, एक भाई है हमारा जो मौका देखता है कहता है चलो भाई कुछ और नहीं कर रहे तो टैटू कर ले, वैसे कुछ और नहीं कर रहे तो ये कर ले वाले आइडिया हमारे पास भी बहुत होते हैं। जैसे कि मुझे याद है कि मैं जब अपनी कॉलोनी में होता था और सब कहते थे अबे यार मैच खेल के थक गए हम कुछ और करते हैं, तो हम लोग मोहल्ले भर के घर को अपने आइस पाई के लिए यूज कर लेते थे। भाई वो सब भी एक दौर था दोस्तों। आज जिंदगी के जिस पैमाने पर खड़े हैं पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है उस वक्त अगर रियलाइज किए होते कि कितने खूबसूरत दिन हैं तो शायद रात भर सोते नहीं उन्हीं के साथ खेलते रहते। वो दोस्त जो अब कहते हैं गौरव यार बेंगलुरु में ना जॉब करें बड़ा मुश्किल है यार अब मिल पाना हमारा, बुरा लगता है यार, लेकिन कोई नहीं, जिंदगी में आगे बढ़ना ही तो सबसे बड़ा काम है। मिर्ची इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: कुमार शानू, आपके हिसाब से आपके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर कौन थे?
3: मेरा कॉलिग के बारे में मैं आज तक कभी कुछ नहीं बोला, मैं ना बोलना चाहता हूँ। हमारे जो कॉलिग्स थे दे आर ऑल ग्रेट सिंगर्स, अलग अलग अपना पहचान बनाया, जो आज के सिंगरों में है नहीं, पहचान है नहीं किसी का, एक ही टाइप का सिंगर आपको 6 मिल जाएगा।
2: वेयर इज द लाई कुमार शानू, वेयर इज द लाई? आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल,
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं
5: या आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग अ फ्लाइंग कार्पेट?
6: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
4: उसे सब पता है।
7: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड, शी इज कमिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम।
4: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर, स्पॉन्सर्ड बाय कतर कैलेंडर, दिस 25th सितंबर एट QNCC एंड टू ऐड द डबल बोनांजा ऑफ एंटरटेनमेंट, गेट रेडी टू वॉच म्यूजिक एंड डांस डुओ चरण एंड आरसी।
5: फ्लाइंग कार्पेट?
6: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
4: उसे सब पता है।
7: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड, she is coming for the very first time.
4: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar, this 25th September at QNCC, and to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and Aarti.

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन
1: जी, बिल्कुल बताइए सवाल क्या है।
0: मैं मार दूंगा यार, बहुत गुस्सा आता है, रोज कोई ऑफिस में मेरी चेहरा बदल देता है, क्या करूं?
1: सिंपल है, बॉस की गोदी में बैठ जा, प्रमोशन भी मिलेगा।

0: संजू राठौड़ की आवाज में बैंगल्स गाना सुनाया किसने? संजू राठौड़ की आवाज में बैंगल्स गाना सुनाया किसने? लेकिन फिलहाल मिर्ची घड़ी का टाइम भी हम बताएंगे, शाम के 7:04।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, खतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: वैसे अब सफर और खूबसूरत होने जा रहा है विद कतर एयरवेज। 89.6 मिर्ची 1 पर मस्मोला गौरव आपके साथ है, और कतर में जो फ्रीक्वेंट फ्लायर्स हैं या कॉर्पोरेट बॉसेस या फिर बिजनेस ट्रेवलर्स, उनके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यस, अब आपका बिजनेस ट्रेवल जो एक्सपीरियंस है ना, वो और लग्जूरियस होने जा रहा है और कंफर्ट का नेक्स्ट लेवल अब आपको मिलने जा रहा है। असल में कतर एयरवेज ने साइन किया एक मेजर पार्टनरशिप जो कि प्रायोरिटी पास के साथ है। ये वर्ल्ड लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट एयरपोर्ट लाउंज प्रोग्राम है, और इसमें सबसे खास बात यह है, यहां पर आपको अक्सर गिफ्ट मिल रहे होते हैं, लेकिन कतर एयरवेज के बियॉन्ड बिजनेस कॉर्पोरेट ट्रेवल प्रोग्राम मेंबर्स को इसमें कुछ खास मिलने जा रहा है। अब आप सोचेंगे क्या मिलने वाला है, तो बॉस बियॉन्ड बिजनेस मेंबर्स अपने क्यू रिवॉर्ड को रिडीम कर अब एक्सेस कर सकते हैं 1900 से भी ज्यादा एयरपोर्ट लाउंजेस वर्ल्ड वाइड। यानी कि अगर आप बियॉन्ड बिजनेस कॉर्पोरेट ट्रैवल प्रोग्राम का हिस्सा हैं, तो आप दुनिया भर के 1900 से भी ज्यादा एयरपोर्ट लाउंजेस में जाइए, एंजॉय कीजिए। कतर एयरवेज के 160 से ज्यादा ग्लोबल डेस्टिनेशंस पर अगर आप फ्लाई करके पहुंच रहे हो, तो वीआईपी लाउंजेस का एक्सेस मिल जाएगा भाई, प्रीमियम फैसिलिटीज एंजॉय करोगे आप एंड कहोगे यार मजा तो है। इसके अलावा ये मामला ही खत्म नहीं होता है, 3-3 स्टार लिंक एनेबल्ड डेली फ्लाइट्स पर भी हाई स्पीड वाईफाई फ्री ऑफ चार्ज मिलने वाला है, और 35,000 की फीट की हाइट पर भी आपके लिए अनइंटरप्टेड इंटरनेट प्रोसेस करता रहेगा, ताकि आपको ऐसा लगे ही ना कि आप आसमान के हवाइयों में, आपको लगे कि आप अपने ड्राइंग रूम में बैठकर सफर कर रहे हैं। चलिए जी, इस प्रोग्राम वालों के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, हम तो अभी भी वही जुगाड़ करते हैं कि कैसे एक बार हमको जिंदगी में कभी तो अपग्रेड मिले और हम भी इकोनॉमी से बिजनेस तक पहुंच जाए। 89.6 मिर्ची 1 हमारे दोस्त, थोड़ा ध्यान दो, अगली बार जब हम कतर एयरवेज की फ्लाइट में हो तो हमें थोड़ा सा ध्यान देना। गौरव अच्छी बात बताता है कतर एयरवेज के लिए। मिर्ची इट्स हॉट।

0: हेलो
1: हेलो बेटा नवनीत,
0: आप कौन?
1: पापा कहाँ हैं?
0: पापा तो बाहर हैं, आप बताइए।
1: बेटा ऐसा है, आपके पापा और मैं, हम बचपन से बड़े अच्छे दोस्त हैं। मेरे को बता रहा था आशीष, आपके पापा ने बताया था मेरे को कि बेटा है, उससे बात कर लेना फोन पे कभी, उससे पूछ लेना। मेरे को आपके पापा ने कहा था कि मेरा बेटा कभी कभी शरारत भी करता है, चलो हर बच्चा कर देता है, लेकिन आशीष दिल का बड़ा अच्छा है, क्योंकि मेरे बचपन का दोस्त है ना आपका पापा, वो किसी को डांट नहीं सकता। अच्छा बेटा, तुम्हारे पापा ने मेरे से ये कहा था आशीष ने कि तू ना नवनीत को फोन कर लियो, क्योंकि वो तो कभी डांटता नहीं है आपको किसी भी बात पे। तो अभी अभी आपके पास एक मिनट है क्या?
0: लेकिन आपको काम क्या है?
1: बस एक मिनट तक मेरे को आपको डांटना था।
0: पापा ने कहा था?
1: चुप कर! पापा ने कहा था, मेरे दोस्त का पीछा ले रखा है तूने, उठा के पटक के रख दूंगा, बता रहा हूँ मदर को।
0: क्या हुआ अंकल?
1: बेटा आपके पापा ने कहा था मेरे से कि वो टाइम पे वो निकल गए हैं, उनको कुछ जरूरी काम था, आपको डांटने का दिल कर रहा था तो वो डांट नहीं पाए, तो मेरे से कहा था आप डांट देना, मेरे जो दोस्त तो दोस्त है ना हम आपस में।
0: अब मुझे क्यों डांट?
1: चुप कर!
0: किस तरह बात कर रहे हैं मेरे से? आप मेरी बात सुनो, मैं पापा से बात कर लूं।
1: पापा से बात करेगा दांत तोड़ दूंगा, ऐसे बैठे बैठे पापा की तरफ से डांट रहा हूं मैं। क्यों कर रहा था तूने?
0: पापा को ऐसे किस बात का बुरा? मुझे ये भी नहीं,
1: पापा को किस बात का बुरा लगा, इससे मेरे को क्या लेना देना है। असल में पापा आपके बड़े बिजी हैं आज, तो मेरे को मैसेज किया था उन्होंने कि वह उसको डांट देना।
0: लेकिन
1: अंकल कल देखो एक मारूंगा।
0: बदतमीजी क्या करी
1: थी? ये अपने पापा से पूछना ना, मैं आपके बीच में क्यों पढ़ूं?
0: कह रहा हूँ मैंने कोई ऐसी बदतमीजी की नहीं इन दिनों में।
1: एक मरना घुमा के मैंने की नहीं।
0: ठीक है, मैंने वो भी कर लिया, मैं बदमाशी।
1: ठीक है, मेरे साथ बोल कुकड़ू को बेटे।
0: क्या बोलूं?
2: नवनीत कुकड़ू को बोलो, मैं रेडियो मिर्ची से नवनीत बोल रहा हूँ, तुम्हारे पापा ने ही मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, तुम रेडियो मिर्ची पे।
0: आपको पापा ने ऐसे कब बताया था मेरा मुर्गा बनाने को?
1: चुप कर! मारूंगा घुमा के। पापा ने कब बताया था मुर्गा बनाने को?
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
4: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
5: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है।
6: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
5: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar, this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah live.

0: राहुल प्रेजेंट सर, गौरव प्रेजेंट सर, पंकज एब्सेंट सर।
1: मस्त मौला गौरव।
0: याद है हमारे दौर में ऐसे ही हमारे क्लास टीचर्स हमारी अटेंडेंस लेते थे, लेकिन अब चीजें बदल नहीं हुई है। डिसिप्लिन मेंटेन करने के सिंपल प्रोसेस आ गए। आईडी कार्ड गुम हो जाए तो हम स्कूल में परेशान हो जाते थे, कहते थे अरे बाप रे बाप, अब तो टीचर डांटने वाली है। लेकिन दोस्तों हमारे कतर में अब ये मामला पूरा बदल चुका है। यस, अब हाथ उठाओ और सीधे पाम दिखाकर अटेंडेंस लगाओ वाली सिचुएशन आ गई है। यस, हम आपको बता दें कतर के एजुकेशन मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है पाम रिकॉग्निशन अटेंडेंस सिस्टम सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में, और स्कूल बसेस के लिए भी ये लोग सेम टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। पाम रिकॉग्निशन से अटेंडेंस लग जाएगी, एंड इससे अच्छी बात यह है कि अटेंडेंस तो लगी लग जाएगी, पेरेंट्स को भी एक्यूरेट तरीके से मॉनिटर करने को मिलेगा कि उनका बच्चा कहां पहुंचा। स्कूल में डिसिप्लिन प्रमोट करने का यह भी एक तरीका होगा, जहां पर हाईटेक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बच्चा स्कैनर के आगे अपना पाम दिखाया और उसकी अटेंडेंस डन हो गई। अब बच्चों की सेफ्टी भी बढ़ेगी, उन्हें ट्रैक कर एग्जैक्ट टाइम के साथ मॉनिटर भी कर सकते हैं, चाहे वो स्कूल में जा रहे हो या फिर स्कूल से वापस घर आ रहे हो, क्लासरूम में एंटर कर रहे हो, तो भाई टॉप लेवल सिक्योरिटी के साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी का ये जबरदस्त कॉम्बिनेशन जो कि अब कतर के गवर्नमेंट स्कूल में दिखने वाला है। और मैं कह रहा हूं भाई, सच में बच्चों की सेफ्टी नेक्स्ट लेवल जा रही है। वरना कई बार तो ऐसा होता था, हम छुप के गार्डन में घूम रहे थे, पापा मम्मी को पता लगता है कि मैंने आज बंक मारा है, लेकिन आज के बच्चों तुम्हारे लिए तो स्कूल भी किसी जबरदस्त जगह से कम थोड़े। हमारे वहां तो आरबी सिंह सर होमवर्क ना करने पे लेट डंडे मारते थे। आप लोग तो बहुत लकी हो। चलो जी, 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट, वो हाथ जो आगे भविष्य बनाएंगे, फिलहाल अटेंडेंस लगाएंगे।

बजा दूं।

अलका याग्निक शान की आवाज में हम तुमका ये गाना सुनाया किसने? फिलहाल इस गाने में गजब पिंगल कसती है लड़की लड़के पे, वैसे इसी उम्मीद में कि हम और आप दिमाग में जो भी सोचे वो पिंगल उस लड़की को पता है जिसका नाम है दी मेंटलेस सुहानी शाह कमिंग टू कतर फॉर दी वेरी फर्स्ट टाइम। Yes, the Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar, presented by IPay, and trust me, एक ऐसी शाम जहां पर हम दिमाग को एकदम उड़ते हुए देखेंगे अपने वाले को, क्योंकि इस लड़की के पास वो टैलेंट है कि आपके दिमाग से आप क्या सोच रहे हैं ये तक बता सकती है और ऐसा इल्यूजन क्रिएट करेगी जो सच लगेगा और सच ऐसा लगेगा कि आप बोलोगे कर कैसे रही है। और अगर आप ये पूरा फील करना चाहते हो तो पहले तो सुहानी की वीडियोज देख लो, इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे हर जगह सुहानी शाह है, एंड में उसके बाद आप कहोगे पहले टिकट बुक कर लो भाई कैसे कर पा रही है। यस, रूबरू होकर इसे देखना समझना बहुत मजेदार होगा, जितनी जल्दी हो सके अपनी टिकट्स बुक कर लो। इसी उम्मीद में कि आप टिकट्स बुक कर रहे हो, मैं एक छोटी सी बात बता देता हूं, एस सिटी स्नूनू ऐप पर अगर आप टिकट बुक कर रहे हो ना तो 30 कतारी रियाल का कैशबैक है, क्योंकि अभी अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है, वैसे ही टिकट प्राइसेस कम है, और जितनी जल्दी हो सके आप अपनी टिकट्स बुक कर लो, 30 कतारी रियाल का कैशबैक एट एनी कैटेगरी। इस मौके का फायदा उठाओ दोस्तों, अपनी टिकट्स बुक करो और मस्त फॉलो करो को थैंक यू को जो हर बात में आपके प्रॉफिट के बारे में जरूर सोचता है। 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।

0: में शी स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक पायलट फूक के प्लेन उड़ा रहा था तो उसकी जॉब फूक गई।
3: इसको प्लेन को हाई ले जाना था, ये खुद हाई हो गया। और लोगों को यार प्लेन के फॉल की पड़ी है, जबकि इसका डाउनफॉल शुरू हो गया।
4: मेरा हेयर फॉल भी।
5: मिर्ची, इट्स हॉट। शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
6: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar, this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snoonu. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah live in

अरे स्कूल के दौर में हमें भी एक एडिक्शन था, और वो एडिक्शन बड़ा ही खूबसूरत एडिक्शन था। हाँ जी, जैसे ही हम किसी टीचर को देखते थे तुरंत ऐसे खड़े होते थे जैसे दुनिया के सबसे सीधे बच्चे, एंड गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मिस, गुड मॉर्निंग सर, ऐसे बोलते थे कि टीचर कहते थे ग्रेस मार्क्स की अगर बात आएगी तो गौरव को 2-3 नंबर दे देंगे, यार बहुत प्यारा बच्चा है। वैसे मेरे अंदर एक कलाकारी थी, स्टेज और थिएटर जब भी मुझे मिला मैंने पूरी मेहनत से शिद्दत से एक्टिंग करी, और इस वजह से टीचर्स के दिल में जगह छोड़ता था, और जब एग्जाम में नंबर कम आ रहे थे तो थोड़ा बहुत ग्रेस मार्क्स मैंने पाए, इसमें कोई दो डाउट नहीं है। मेरी सारी टीचरों ने, चाहे रेखा मिस थी, मनोरमा मिस थी, मिश्रा मिस थी, इसके अलावा मेरी सारी क्लास टीचर निलमा रॉय मिस, मैं सबके नाम ले सकता हूँ, मुझे इतना याद है, क्योंकि मैं पढ़ाई में इतना कमजोर था कि इनके ग्रेस मार्क्स की वजह से आज मैं जिंदगी के इस ग्रेस पीरियड में हूँ। इसी उम्मीद में कि आपने भी स्कूल लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा किया एंड टीचर्स के ऊपर इंप्रेशन छोड़ा। मस्त मौला गौरव लेगा अलविदा एंड लौटेगा कल शाम वीकेंड की वाइब लेकर यही मिर्ची पर। तब तक के लिए मोहम्मद फैज की आवाज में हबीबी अगला गाना मस्त सलाम मिर्ची थॉट देखा।

0: बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: सुनिधि चौहान, आपका हर गाना हमारा फेवरेट गाना है, लेकिन आपका कौन सा खाना आपका फेवरेट खाना है?
3: दाल चावल और अचार ना हो आम का, हाँ पानी आने, स्पाइस होना चाहिए ना लाइफ में, तो गले को भी स्पाइस की जरूरत है। मिर्ची मैं दिल्ली में बहुत खाती थी क्योंकि वहाँ नॉर्थ इंडियन फूड में खाना में होती ही है मिर्ची। यहाँ आके आदत हो गई कम मिर्ची खाने की।
2: सुनिधि चौहान, तो फिर लगाइए ना आदत मिर्ची ज्यादा खाने की भी और मिर्ची ज्यादा सुनने की भी। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल,
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 8. सुनते रहिए 89.6 मिर्ची 1. It's hot.
2: Time check.
3: In association with Naseeb Medical Center, Qatar's largest private medical center.

0: जब तक मैंने ये गाना नहीं सुना था या ये फिल्म नहीं देखी थी, आई कुड हैव नेवर इमेजिन्ड कि कोई एक पीस ऑफ बर्फी को एक चांद से कंपेयर कर सकता है। स्वानंद किरकिरे, हैट्स ऑफ टू यू।
1: मिर्ची कैफे
0: सुन रहे हैं आप, मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। बर्फी के टुकड़े साथ चांद देखो आधा है, धीरे धीरे चखना जरा, हंसने रुलाने का आधा पौना वादा है, कनखी से तकना जरा। डू यू नो व्हाट इज कनखी? कनखी इज आंखों का कोना, ऐसे तिरछी निगाहों से तको। यार अनबिलीवेबली मैजिकल। सुन रहे हैं आप मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। और ये जो यू नो अरिजीत सिंह, स्वानंद किरकिरे, प्रीतम का मैजिकल कॉम्पोजिशन है फ्रॉम द फिल्म बर्फी, आई कैन नेवर Forget this song ever. चलो well, अब मैं आपको जो अभी मुझे सुन रहे हैं इस वक्त, उनको एक टास्क देने वाली हूँ। जल्दी से आंखें बंद करो अपनी, अगर ड्राइव कर रहे हो तो मत करना प्लीज। हाँ, अगर आप घर पे बैठे हो या बाजू वाली सीट पे बैठे हो, अपनी आंखें बंद करके या आंखें खोल के भी इमेजिन करो वो तीन लोग जिनसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो। क्या इमेजिन? आपको बताए, एक सर्वे के अकॉर्डिंग 88% लोग उन तीन लोगों में अपने आप को नहीं याद करते हैं। बिकॉज ऐसे बहुत पैशनेट तरीके से ना, हम खुद से तो प्यार करते ही नहीं है। ऑब्वियसली मैं भी उन्हीं 88% लोगों में से आती हूँ, क्योंकि जब मैंने ये एक्टिविटी करी थी मैंने भी अपने आप को याद नहीं किया था। एंड क्यों मैंने आपसे ये एक्टिविटी करवाई? क्योंकि अगला गाना जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, बेकरां इस गाने का नाम है, फ्रॉम द फिल्म सात खून माफ। विशाल भारद्वाज ने खुद ने ये गाना गाया है, और जब आप इसकी इंटेंसिटी इमेजिन करोगे ना आंखें बंद करके, वो खुद भी कह रहे हैं लिरिक्स में, तो आपको लगेगा यार कैसे ये लोग ऐसा लिखते हैं, कैसे ये लोग ऐसा गा देते हैं। तो मैं बस अब आपके और इस गाने के बीच में बिल्कुल नहीं आना चाहती। जस्ट लिसन टू दिस सॉन्ग, मुझे जरूर हाई लिखकर भेजना इस गाने के बाद। नाम है मेरा पारुल, मिर्ची कैफे सुन रहे हो आप। 7045983983 इज माय नंबर। इंस्टाग्राम पे paruls.world। सुनो इस अल्टीमेट गाने को, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirci. Iskabana, puskabana, sakabana. Yabana. Burga, burga. La
1: virgula, la burga. Mirci, burga. Hello.
2: Good evening, Mr. Srivastav. मैं मॉडर्न स्कूल से बोल रहा हूँ, आपके बेटे के स्कूल से. How are you?
1: I'm very fine, thank you.
2: अतुल वैसे पढ़ाई लिखाई में यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके मार्क्स भी अच्छे आते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बिल्कुल आगे नहीं है.
1: I know, वो खेल में कुछ ऐसा है नहीं खास ज्यादा. हाँ,
2: नहीं, वही मैं आपको बताना चाह रहा था. अच्छा मिस्टर श्रीवास्तव, क्योंकि हम 26 जनवरी पे एक फंक्शन कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि पेरेंट्स भी उसमें पार्टिसिपेट करें. पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, जितना अच्छा परफॉर्म वो करेंगे उसके मार्क्स बच्चे को दिए जाएंगे.
1: परफॉर्म मतलब क्या, परफॉर्म क्या करना होगा हमको?
2: कुछ भी ऐसा करिएगा जो कि बच्चों की चीज हो. आप प्लीज आके यहाँ पे पार्टिसिपेट करिए. आप आओ मिलो शिलो शालो करिए ना यहाँ पे आके स्टेज पे.
1: मतलब ये गेम है क्या ये?
2: आओ मिलो शिलो शालो.
1: मतलब पेरेंट्स को परफॉर्म करना होगा?
2: वो सिर्फ आप ही को परफॉर्म करना होगा, आप ही को ये पूरा बोलना होगा आओ मिलो शिलो शालो. एक्चुअली प्रॉब्लम भी है, हमारे पास चार ही थे उसमें से यही बचा है. आओ मिलो शिलो शालो अगर आप ले सकते हैं तो आप इसे प्लीज परफॉर्म कर लीजिए ताकि उसके मार्क्स अच्छे आए. राइट, देखिए शुरू ऐसे होता है, आप मेरे साथ साथ बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी. राइट, और इसमें बीच में ना क्लैप करना होता है इस तरह.
1: आओ मिलो
2: शिलो शालो,
1: शालो.
2: कच्चा
1: धागा.
2: रेस
1: लगा लो.
2: दस
1: पत्ते तोड़े.
2: एक
1: पत्ता कच्चा.
2: इसको ना प्रैक्टिस करिएगा, आप तेज़ बोलेंगे. दस पत्ते तोड़े. या मिस्टर श्रीवास्तव, दस पत्ते तोड़े.
1: दस पत्ते तोड़े.
2: हिरण का बच्चा. हिरण का बच्चा. सब हिरण का बच्चा.
1: ओके सॉरी, हिरण का बच्चा.
2: घोड़ा
1: दौड़ा टुकड़ू दू.
2: श्रीवास्तव बोले कुकड़ू को. मिस्टर श्रीवास्तव, बहुत अच्छा लगता है जब बाप कोई बच्चा बनने की कोशिश करता है. मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, आपकी वाइफ ने मुझे नंबर दिया था, आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका मुर्गा बन गया है.
1: यार ये कुछ सुनेगा
2: सर, ये सर ये सब सुन चुके हैं. अब प्यार से एक बार बोल दीजिए, इसको रिपीट कर लीजिएगा, बार बार बोलिएगा कुकड़ू को.
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
4: इट्स ऑल डाउन टू डोनी, इज़न्ट इट? फोर बॉल्स लेफ्ट, दे नीड 12 रन्स टू विन.
5: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है.
6: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
5: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snow. Tickets available in all leading ticketing platforms.

0: नेहा भसीन की आवाज ने आपको मस्त मलंग डेफिनेटली किया होगा। आपको पता है धुन की ये जो वर्ड है, अगर आप इसका गूगल मीनिंग ढूंढोगे तो इसका मीनिंग होता है अ बो शेप्ड टूल जो कि कॉटन को क्लीन करने के काम आता है। ओके, लेकिन मेटाफोरिकली एक ऐसा स्टेट ऑफ बीइंग एब्जॉर्ब्ड अपनी खुद की ही धुन में जो लगा रहता है, यू नो, जो बिल्कुल ऐसे फ्री स्पिरिटेड पैशनेट इंसान होता है, केयर फ्री होता है, वो कहलाता है कि धुन की लग गई उसको तो यार ही, अपनी धुन में लगा हुआ इंसान।
1: मिर्ची कैफे,
0: ब्यूटिफुल लिरिक्स एंड ब्यूटिफुल सॉन्ग सुन रहे हैं आप मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। और यू नो धुन की वर्ड और ये गाना जब भी मैं सुनती हूँ मुझे ये याद आता है कि जब हम छोटे होते थे ना तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती थी जिसमें यू नो हमारी धुन लग जाती थी, फिर हम वही करते रहते थे। जैसे हम किसी छोटे बच्चे को देखते हैं तो वो किसी एक्टिविटी में, खेल कूद में, डांस में मगन रहता है, अपना एंजॉय करता रहता है। लेकिन आजकल क्या हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्यूटिफुल गैजेट वी हैव इन आवर हैंड्स, हमारी सारी जिंदगी का वक्त ही उसमें धुनकी में जा रहा है क्योंकि हम उसी पे लगे रहते हैं माइंडलेस स्क्रॉलिंग में। तो गाइस यार, हैव सम रिज, कम ऑन, किसी तो ऐसी चीज की धुनकी लगाओ ना जो आपको भी खुशी दे, इंस्टेंट डोपामाइन्स को लात मारो, खुश रहना सीखो, असली खुशी। ओके, वेल अगला गाना आपके लिए आ रहा है अलका याग्निक सोनू निगम की आवाज में, एंड यू नो व्हाट, इसमें जो इंग्लिश वाले लिरिक्स हैं वो खुद करीना कपूर ने गाए हैं। चेक आउट दिस सॉन्ग ओनली ऑन मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: आपको बताए, ये जो गाना है ना उसकी मेरी एक बहुत ही कोर मेमोरी है जो मेरे दिल में बसी हुई है। तो ये जब गाना आया था तो बहुत ऐसा फैशन था कि सब लोग अपने अपने फोन्स पे ऐसे डायल टोन्स लगाते थे, मतलब अगर मैं किसी को फोन कर रही हूँ तो मुझे एक गाना सुनाई देगा। और बहुत वक्त तक मेरे पापा की उस टोन में ये गाना था। सो व्हेनेवर आई यूज्ड टू कॉल माय फादर, वो गाना बजता था, मैं यहाँ हूँ यार, एंड आई फेल्ट सो गुड जब मैंने ये गाना बहुत दिन बाद सुना।
1: मिर्ची कैफे।
0: वेल, सुन रहे हैं आप मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ। आप इमेजिन करो, एक इंसान है, एक शख्स है, ठीक है, 1998 की फिल्म कयामत से कयामत तक के ट्रैक पापा कहते हैं से सुपर सक्सेस मिली। एक ऐसे मेल सिंगर हैं वो, एक लौते जिन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड्स जीते हैं अक्रॉस डिस्टिंक्ट डेकेड्स, 80s, 90s, 2000s, वो जीते ही जा रहे हैं। 25,000 गाने गाए हैं उन्होंने अक्रॉस 36 लैंग्वेजेस। यार इस आदमी के लिए ना स्टैंडिंग ओवेशन बनती है, द मैन कॉल्ड उदित नारायण। अरे क्या मतलब आवाज है इनकी भाई, गजब। खुद ही कहते हैं ना ये डैश क्या गाया है मैंने। अब वो डैश वाला वर्ड मैं बोल नहीं सकती इसलिए मैं बोल नहीं रही, बट ही इज अल्टीमेट यार। Hats off to the amazing singers we have जो हमारी जिंदगी को खुशनुमा बनाते हैं, just because you know कुछ गाने सुनकर हम थोड़ी देर के लिए अपनी परेशानियां भूल जाते हैं और एक स्माइल हमारे चेहरे पे आ जाती है। Well, एक और ऐसा ही गाना आपके लिए लेकर आ रही हूँ सुनिधि चौहान और गायत्री अय्यर की आवाज में। ये है एक प्यार की कहानी, सुन के आओ इसको। मिलती हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। Stay tuned to Mirchi, it's hot.
2: प्यार

0: Bollywood, Bollywood, Boulder. Only on Mirchi. It's hot.
1: कविता कृष्णमूर्ति, ऐसा कौन सा गाना है जो आप रात के 12 बजे भी गा सकती हैं, सुबह के 6 बजे भी गा सकती हैं?
2: ये गाना आप जब भी बोले मैं कभी भी गा सकती हूँ। गाना रात को 12 बजे भी कोई उठाएगा तो मैं ना नहीं करूँगी इस गाने के लिए। दिल ने कहा चुपके से, ये क्या हुआ चुपके से,

0: हुआ चुपके से, ये क्या हुआ चुपके से।
1: कविता कृष्णमूर्ति, आप ये गाना कभी भी गा सकती हैं और हम ये गाना कभी भी सुन सकते हैं। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
2: बॉलीवुड बोलडाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोलडाल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रात भी कुछ कह देगी, चांद भी कुछ कह देगा, लेकिन ये लोग ना सिर्फ तभी आपसे बात करते हैं जो एंटायर नेचर होती है, जब आप उसके लिए रेडी होते हो, स्पेशली जब आप प्यार में होते हो, तो ऐसा लग रहा होता है कि सब आपसे ही बात कर रहे हैं।
1: मिर्ची कैफे
0: सुन रहे हैं आप, मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। और ये वो मोड़ आ गया है जहां पर मुझे आपको अलविदा कहना पड़ेगा, बिकॉज यू नो द शो गेट्स ओवर, और उसके बाद मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगी। आप जरूर से नोट करके रखो, इंस्टाग्राम आईडी है मेरा paruls.world, मेरी दुनिया, ओके, माई वर्ल्ड paruls.world, और नंबर है मेरा व्हाट्सएप का 7045983983, उसको भी नोट करके रखो। प्लीज मुझे बताओ आपको ये शो कैसा लगता है, आप मुझे गाना प्लीज बता सकते हो कि आपको कौन सा है, जैसे अच्छी फीलिंग वाले गाने, गुड वाइब डेप्थ वाले गाने मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। सजेस्ट करो ना कौन सा और गाना सुनना है आपको। और मैं आज आपको छोड़ के जाने वाली हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉ के बारे में बताकर। मैंने रिसेंटली पढ़ा अबाउट फॉकलैंड्स लॉ। आपने कभी फॉकलैंड्स लॉ के बारे में सुना है? जस्ट लिसन टू दिस, ओके, आराम से। इफ इट इज नॉट नेसेसरी टू मेक अ डिसीजन, इट इज नेसेसरी नॉट टू मेक अ डिसीजन। अगर कोई जल्दबाजी नहीं है किसी डिसीजन को लेने में, तो ये जरूरी है कि आप वो डिसीजन तब ना लें। यू गेटिंग माय पॉइंट? आप इसके बारे में और पढ़ना फॉकलैंड्स लॉ के बारे में, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है ना कि बस क्योंकि हमने सोच लिया और हमें डिसाइड करना है तो हम तुरंत डिसाइड कर लेते हैं। नेवर डू दैट, गिव योरसेल्फ सम स्पेस एंड टाइम यार, थोड़ा तो सब्र अपने आप को दो, सोचना इस बारे में, ओके? सो इफ इट इज नॉट नेसेसरी टू टेक अ डिसीजन, डोंट टेक इट। बहुत इंटेंस बात है, आप इसके बारे में सोचोगे तो आपको रियलाइज होगा कि कैसे यू नो हम पैटर्न्स में फंस जाते हैं और फिर वही हरकतें करने लगते हैं जो हमें शायद नहीं करनी थी। वेल, अगला गाना आपके लिए छोड़कर जा रही हूँ, ये एक बहुत ही प्यारा मोहब्बत से भरा गाना है, सुनो इसको। और हाँ, मुझे जरूर लिखना इंस्टाग्राम और नंबर पे जो मैंने आपको बताया व्हाट्सएप वाला, एंड डू टेक अ लॉट ऑफ केयर ऑफ योरसेल्फ। सुनते रहो मिर्ची, बिकॉज इट्स हॉट। मैं हूँ आपके साथ पारुल, मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय।

0: सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
1: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग अ फ्लाइंग कार्पेट?
2: कैसे किया? सीरियसली कैसे किया ये?
0: उसे सब पता है।
3: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
0: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar, this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at STT Snoo Noo. Tickets available in all leading ticketing platforms.

कहते हैं कि आपकी दिल की खूबसूरती आपकी आवाज में छलक जाती है। पुरानी जीन्स पे हेलो वेलकम, मैं हूँ श्रेया और रफी साहब की इस खूबसूरत आवाज के पीछे जो खूबसूरत दिल था उसके बारे में बताती हूँ। यू नो ही वाज सच अ काइंड हार्टेड मैन और अपनी काइंडनेस को ना वो लोगों के सामने भी नहीं लाना चाहते थे। वो हमेशा हरफन मौला रहते थे लेकिन अंदर से वो काफी सेंसिटिव थे। सो, एक बार उनके घर के बगल में एक लेडी रहती थी। वो लेडी उनके हस्बैंड नहीं रहे और जब उनके हस्बैंड नहीं थे तो उनके पास ना रोज के पैसे के लिए किल्लत होने लगी। उनके पास पैसा ही नहीं था गुजारने के लिए। ये बात जब रफी साहब को पता चली तो रफी साहब ने उनको एक मनी ऑर्डर भेजना शुरू किया। लेकिन उन्होंने पोस्ट ऑफिस में जब ये काम शुरू किया तो वो एक अनोनिमस मनी ऑर्डर की तरह जाता था, यानी उनका नाम पता कुछ भी नहीं कि कौन ये मनी ऑर्डर भेज रहा है। ये मनी ऑर्डर रुकना तब शुरू हुआ जब रफी साहब नहीं रहे। तो भाई वो जो नेबर थी वो गई और उन्होंने पोस्ट ऑफिस में पता किया कि क्यों नहीं आ रहा है उनके पास वो पैसा। देन शी केम टू नो क्योंकि रफी साहब नहीं रहे और वो ही उन्हें ये पैसा भेजा करते थे। इमेजिन, रोंगटे खड़े हो गए ना, गूज बम्स। पुरानी जीन्स पे हेलो एंड वेलकम, श्रेया आ गई है। उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें इस जमाने की श्रेया के साथ चलते रहेंगे। तो गाने सुन करके वापस आओ, आज का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.
1: It's all down to Dhoni, isn't it? Four balls left, they need 12 runs to win.
2: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है.
3: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
2: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

जहरीला इंसान मूवी से ये गाना विच इज पिक्चराइज्ड ऑन ऋषि कपूर, इट इज संग बाय किशोर दा। सुनाने वाली कौन है आपको पुरानी जीन्स पे? करेक्ट, आपकी प्यारी श्रेया। अच्छा सुनो ना, ये गाने के लिए ऋषि कपूर अड़ गए थे आर डी बर्मन के साथ, जिन्होंने ये गाना कंपोज किया है। वो चाहते थे कि ये गाना उनके लिए शैलेंद्र जी प्लेबैक करें। ऋषि कपूर को लग रहा था कि शायद किशोरदा की आवाज ना उनके लिप सिंक के साथ जाएगी नहीं, तो उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की भाई पंचम दास से कि प्लीज इसमें शैलेंद्र जी को ले लीजिए। लेकिन भाई आर डी बर्मन तो वही करते थे जो उन्हें सही लगता था। सो किशोरदा को लाया गया और क्या खूबसूरत रेंडिशन है ऑफ दिस प्रिटी प्रिटी ट्रैक, ओ हंसिनी। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, और कौन कौन से गाने हैं? अभी तो सिलसिला शुरू हुआ है, आगे आगे सुनते जाओ, होगा क्या।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड, शी इज कमिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम।
2: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर, स्पॉन्सर्ड बाय कतर कैलेंडर, दिस 25th सितंबर एट QNCC एंड टू एट द डबल बोनांजा ऑफ एंटरटेनमेंट। गेट रेडी टू वॉच म्यूजिक एंड डांस डुओ चरण एंड आरसी। एक शाम, एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट SCT स्नोनो। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

सॉन्ग फ्रॉम द फिल्म तेजाब बाय नितिन मुकेश, पुरानी जींस पे आप श्रेया के साथ। एंड इसी गाने के बाद होटल में हड़कंप मच गया था। कोई एक तरफ पुलिस को बुला रहा था और कोई एम्बुलेंस को बुला रहा था। एक्चुअली हुआ ये कि ये गाने की शूटिंग ना लेट इन द नाइट हो रही थी, और जो फिल्म की कास्ट थी, यानी इस गाने की जो कास्ट थी, अनिल कपूर एंड द रेस्ट ऑफ द क्लैन, वो ना बिना अपना मेकअप ऑफ किए, बिना अपना मेकअप रिमूव किए एक होटल में पहुंच गए, क्योंकि उन्हें बहुत भूख लग रही थी। तो किसी के कहीं से खून निकल रहा है, किसी की आंख के पास ब्रूसेस आ रखे हैं, किसी के ऊपर पंचेस के निशान हैं, कोई जो है उसका मुंह पूरा कटा हुआ है। ये देख करके ना होटल वाले एकदम सदमे में आ गए थे। कोई पुलिस को फोन कर रहा था, कोई एम्बुलेंस बुला रहा था, कि तब उनको बताया गया नहीं नहीं नहीं यहाँ पे शूटिंग हो रही है, हम ना ये गाना सो गया ये जहाँ इसको शूट करके आए हैं, बस अभी मेकअप रिमूव कर देंगे, हम ठीक हो जाएंगे। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, उस जमाने के गाने और बातें चलती रहेंगी। सो कम राइट बैक। और हाँ, अगर मुझसे कोई वन टू वन बात करनी है तो ऑफ कोर्स 24/7 अवेलेबल हूँ, फेसबुक और इंस्टा, आरजे श्रेया विद लव, दैट्स माय हैंडल, आरजे SHREYA विद लव।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: इंडियन एक्टर्स में से अक्षय कुमार इज द प्रैंकस्टर ऑन सेट। अगर सिंगर्स की बात करें तो अनुराधा पौडवाल से पूछते हैं।
4: उदित नारायण, आई वुड से यू नो ही वाज मोर ऑफ अ प्रैंकस्टर देन अ सिंगर, बट अ वेरी लवेबल प्रैंकस्टर। एंड ऑल द टाइम ही यूज्ड टू कीप ऑन टॉकिंग एंड पासिंग सम कमेंट्स, मेकिंग एवरीबॉडी लाफ।
3: ये थी अनुराधा पौडवाल टॉकिंग अबाउट द वन द ओनली सर सर सर सर उदित नारायण ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
2: Only on Mirchi, it's hot.
5: सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
6: आई यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आई यू थिंकिंग फ्लाइंग कार्पेट?
7: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
5: उसे सब पता है।
8: She can read your mind. She will blow your mind. She is coming for the very first time.
5: The Mentalist, Suhani Shah, live in Qatar. Sponsored by Qatar Calendar. This 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at STT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

24 बार, 24 टाइम्स ये पिक्चर देखी थी, 24 टाइम्स एक कैरेक्टर देखा था। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, ये जो गाना आपने सुना इज फ्रॉम द फिल्म अमर फ्रेम, जो कि शक्ति सामंत ने बनाई थी और राजेश खन्ना इसमें थे। राजेश खन्ना साहब ने ये जो कैरेक्टर था आनंद बाबू, ये 24 बार देखा था। कैसे देखा था? ओके, सो इस फिल्म को बनाया गया था एक बंगाली फिल्म के ऊपर। बंगाली फिल्म का नाम था निशी पद्मा और उसी फिल्म पे ये फिल्म अमर प्रेम बेस्ड थी। अब हुआ ये कि जब काका से कहा गया कि निशी पद्मा का फेमस एक्सट्रीमली पॉपुलर कैरेक्टर अनंता बाबू को आपको रेप्लीकेट करना है, तो उन्होंने आनंद बाबू करके इसमें अपना किरदार निभाया। लेकिन उससे पहले उन्होंने इस पिक्चर को, निशी पद्मा को, 24 बार देखा, एकदम खोल करके पी गए थे। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया और मुझे लगता है कलाकार चाहे जितना भी बड़ा हो, वो अपना होमवर्क करके जरूर आता है। फिर चाहे वो सेट पे करके आए, चाहे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में करके आए, चाहे कैमरे के पीछे आए, लेकिन हाँ, जो भी सक्सेसफुल हुआ है ना, उसके पीछे उनका होमवर्क बहुत सॉलिड रहता था। पुरानी जीन्स पे श्रेया के साथ हो, कम राइट बैक।

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: क्या बताऊं सर, बहुत दुविधा है, समझ नहीं आ रहा प्यार चूज करूं या करियर।
1: अरे सिंपल है रे, तुम ना वो चूज करो जिससे तुम्हारा खर्चा निकले।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये गुब्बारे
1: क्यों कर रहे हो? कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

इसी फिल्म से राम से ब्रदर्स ने शुरुआत की थी। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ ये जो गाना आपने सुना इज फ्रॉम द फिल्म बुड्ढा मिल गया। एंड दिस वॉज द फिल्म जिससे कहानी लिखने की शुरुआत की थी राम से ब्रदर्स ने, श्याम राम से एंड तुलसी राम से। लेकिन जब आप फिल्म के क्रेडिट देखोगे तो उसमें राम से नहीं है, उसमें सिर्फ श्याम और तुलसी लिखा हुआ है। बट राइट आफ्टर दिस फिल्म इन दोनों ने इंडिया को डराना शुरू कर दिया था। बोलो कैसे? क्योंकि रामसे ब्रदर्स वर नोन फॉर द हॉरर फिल्म्स। सो इसी फिल्म के बाद उन्होंने बनाई थी दो गज जमीन के नीचे। 1970s की ये अच्छी खासी डरावनी फिल्म थी और उसके बाद रामसे ब्रदर्स ने तो ओहो लड़ी छड़ी लगा दी थी भाई डरावनी फिल्मों की। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची।
2: हेलो
1: हेलो
2: हाँ बोलो कौन।
1: हेलो इधर से बोल रहा हूँ। आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए।
2: हाँ बोल कौन रहा है।
1: बोल कौन रहे हो। कंप्लेंट करी थी आपने सीवर साफ करने की। नीचे से बोल रहा हूँ आपके सीवर में घुसा पड़ा हूँ।
2: बोल कौन रहे हो।
1: आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए।
2: हाँ बोला था।
1: ओ भैया मेरी जान को बचाओ, यहाँ पे बहुत गहरा है यार। आप लोग खाते क्या हो, कितना गहरा कर दिया आपने।
2: तो पूछ के घुसे थे क्या अंदर।
1: ज्यादा सवाल मत करो, मेरी बात सुनो सिर्फ।
2: हाँ बोलो।
1: यार आपके टॉयलेट पे आपकी कोई बैठा के क्या क्या फेंक रहा है यार ऊपर से। ओए बंद करो सर। ओ भैया मेरी जान को बचाओ, यहाँ पे बहुत गहरा है यार। आप लोग खाते क्या हो, कितना गहरा कर दिया आपने।
2: कौन बोल रहा है, कहाँ घुस गए यार।
1: हेलो इधर से बोल रहा हूँ। आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए।
2: हाँ हाँ बोला था। हुआ क्या है कुछ तो बताओ।
1: ज्यादा सवाल मत करो, मेरी बात सुनो सिर्फ। यार आपके टॉयलेट पे आपकी कोई बैठा के क्या क्या फेंक रहा है यार ऊपर से। ओए बंद करो सर।
2: कब आया था, कब घुसा अंदर।
1: फिर सवाल यार, मैं यहाँ पे अटका पड़ा हूँ, मुझे बाहर निकालो यार कैसे भी करके।
2: तू कहाँ से रहा है, तो नहीं हो गया है।
1: सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी, नीचे घुसा पड़ा हूँ आपके सीवर में, बाहर निकालो यार।
2: मैं तो इधर ऑफिस में हूँ अपने।
1: ऑफिस क्यों गए, सीवर साफ करवाना था। मैं तो यहाँ पे घुसा पड़ा हूँ ना अंदर।
2: मेरी सीवर में घुसा है, किसी और के सीवर में घुस गया।
1: ये बदबू से पता चल रहा है सीवर तेरा ही है यार।
2: सीवर में मरा रहा है तू।
1: गाली तो मत दो।
2: हेलो
1: हेलो।
2: फिर फोन कर दिया तूने।
1: अच्छा है, सीवर साफ हो जाएगा। काम करो, एक चीज बोलो।
2: क्या बोलो।
1: कुकड़ू को
3: सर आई एम सो सॉरी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे किसी ने बताया था कि आपने सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी। आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका मुर्गा बन गया।
2: कुकड़ू को
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
5: इट्स ऑल डाउन टू डोनी इज़न्ट इट। फोर बॉल्स लेफ्ट, दे नीड 12 रन्स टू विन।
6: महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में क्या चल रहा है ये सामने वाली टीम को कभी पता नहीं चला, लेकिन उसे पता है।
7: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड। She is coming for the very first time.
6: The Mentalist Suhani Shah live in Qatar, sponsored by Qatar Calendar, this 25th September at QNCC. And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ये फिल्म इतने लोगों का डेब्यू थी, इतने लोगों का फर्स्ट थी, एंड सबके लिए इस फिल्म ने कमाल किया। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, ये गाना फ्रॉम द फिल्म ऑफ कोर्स वी ऑल नो दैट QSQT कयामत से कयामत तक। अच्छा, इस फिल्म से अपना डेब्यू किया आमिर खान ने एंड जूही चावला ने, आगे क्या हुआ रेस्ट इज हिस्ट्री। इसी फिल्म से अपना डेब्यू किया उदित नारायण ने, आजकल को छोड़ दो तो बाकी क्या हुआ वी ऑल नो। एंड इसी फिल्म से अलका याग्निक भी आई। उदित नारायण और अलका याग्निक का ये जो डुएट जोड़ी थी ना, ये कितनी पॉपुलर हुई दैट ऑल ऑफ अस नो। इसी फिल्म से भाई आनंद मिलन की जोड़ी ने भी कदम रखा था एज म्यूजिक कंपोजर्स एंड दे डिड वंडर्स। सो ये जो फिल्म थी QSQT सबके लिए लकी चार्म थी। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, उस जमाने के गाने बातें इस जमाने की श्रेया के साथ चलते रहेंगे। सो कम राइट।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना, एक पायलट फूक के प्लेन उड़ा रहा था तो उसकी जॉब फूक गई।
4: इसको प्लेन को हाई ले जाना था, ये खुद हाई हो गया। और लोगों को यार प्लेन के फॉल की पड़ी है जबकि इसका डाउनफॉल शुरू हो गया।
5: मेरा हेयर फॉल भी।
0: मिर्ची, इट्स हॉट। शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड, शी इज कमिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम।
6: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर, स्पॉन्सर्ड बाय कतर कैलेंडर, दिस 25th सितंबर एट QNCC एंड टू एट द डबल बोनांजा ऑफ एंटरटेनमेंट। गेट रेडी टू वॉच म्यूजिक एंड डांस डुओ चरण एंड आरसी। एक शाम, एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट SCT स्नूनो। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

और फिर पता है क्या हुआ, सबसे ज्यादा हार काका की फोटो पे चढ़े पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म नमक हराम। तो मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रही थी कुछ गानों के पहले, और मैंने कहा था कि वापस आओगे तो पूरी कहानी बताऊंगी। अब होता यह है कि नमक हराम जो ऋषिकेश मुखर्जी बना रहे थे, इसमें दोनों स्टार्स एक साथ दूसरी और आखिरी बार आए, यानी राजेश खन्ना एंड अमिताभ बच्चन। Now what happened was कि काका उस समय सुपरस्टार थे और अमिताभ बच्चन बस अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे। उनके ऑलरेडी काफी सारी फ्लॉप पिक्चर्स हो चुकी थी, बीच में काका की भी कई सारी फ्लॉप पिक्चर्स आ चुकी थी। अब काका ना अपने ऑन स्क्रीन मरने से काफी ऑब्सेस थे। उनको लगता था फिल्म्स लाइक आराधना, फिल्म्स लाइक यू नो सफर एंड ऑफकोर्स आनंद इसलिए वर्कड बिकॉज उनका कैरेक्टर डाइड ऑन स्क्रीन, जिसकी वजह से उन्हें ऑडियंस से काफी सिंपथी मिली और मूवी हिट हो गई। तो काका चाहते थे, राजेश खन्ना चाहते थे कि इस फिल्म में भी, नमक हराम में भी, उनका कैरेक्टर ऑन स्क्रीन मर जाए। अब भाई ऋषिकेश दा ने कहा कि इस बार उनका कैरेक्टर नहीं बल्कि बच्चन साहब का विकी जो है ना वो मरेगा ऑन स्क्रीन। काका ये बात कैसे हजम कर लेते? उन्होंने 2 घंटे की मीटिंग करी और ऋषिकेश दा को बस ये कहा कि नहीं काका, मुझे मेरी एक अच्छी हिट फिल्म चाहिए, क्योंकि अभी मैंने बहुत सारी फ्लॉप पिक्चर्स दी हैं, मेरे कैरेक्टर को ऑन स्क्रीन मरना चाहिए, मेरे कैरेक्टर को। तो ऋषिकेश दा ने कहा अच्छा चलो भाई एक काम करते हैं, कल तुम और अमिताभ, अमित कहते थे वो बच्चन साहब को, कल तुम और अमित दोनों 8 बजे सुबह सेट पे आ जाना अपनी अपनी एक फोटो लेकर के। दोनों लोग फोटो लगा देना और सेट पे जितने लोग, पहले उन्होंने ना एक्चुअली ये आइडिया नहीं दिया, जब ये दोनों अपनी अपनी फोटो लेकर के सुबह 8 बजे आ गए तो ऋषिकेश ने सडनली अनाउंस किया कि सेट पे जितने भी लोग हैं वो किसी एक फोटो पे हार चढ़ाएंगे, और हार चढ़ाने का मतलब ये होगा कि ऑन स्क्रीन वो कैरेक्टर इस फिल्म में मरेगा। आपको पता है सबसे ज्यादा हार ऑफकोर्स राजेश खन्ना की फोटो पे चढ़े। एंड देन जब आप ये पिक्चर देखोगे ना आपको लगेगा है राजेश खन्ना का कैरेक्टर का कोई लेना देना ही नहीं है मरने से, फिर भी ऑन स्क्रीन ही डाइज। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: अरे भंग का रंग जमा हो चका चक, फिर लो पान चबाए। आहा,

0: पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, और अगला जो गाना आ रहा है ना, इसके बारे में बहुत इंटरेस्टिंग कहानी बताती हूँ। पहले गाना सुनो, ये वाला गाना है ना, रोज रोज आंखों तले,
1: रोज रोज आंखों।
0: ये गाना है फ्रॉम द फिल्म जीवा, और इस फिल्म में थे संजय दत्त और मंदाकिनी जी। ठीक है, इस गाने को गाने वाली हैं आशा ताई और अमित कुमार। अब हुआ ये कि इस गाने का सिर्फ फीमेल वर्जन होना था, और वो ऑफ़ कोर्स मंदाकिनी जी पे पिक्चराइज था, लेकिन गाने में साथ में संजय दत्त भी थे। तो ये गाना जब शूट होने लगा, संजय दत्त को लगा कि इतना खूबसूरत गाना है और मैं इस गाने में कुछ कर क्यों नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ मंदाकिनी के अगल बगल घूम रहा हूँ। तो वो गए पंचमदा के पास, आरटी बर्मन के पास, इन्होंने ये गाना कंपोज किया, और उन्होंने कहा कि भाई इस गाने में मुझे भी कुछ लाइंस दे दो, मैं भी कुछ गुनगुना लूं। तो फिर आर डी बर्मन ने कहा कि ठीक है, किशोर को बुलाते हैं और किशोर कुमार से इस गाने की कुछ लाइंस गवाते हैं। जब वो प्रोड्यूसर के पास गए तो प्रोड्यूसर ने कहा ना ना ना भाई, हमारे पास फिल्म का बजट इतना नहीं है कि हम किशोर कुमार को ला करके इस गाने की कुछ लाइन्स गवाएं। सो ही रिफ्यूज्ड। फिर भाई पंचमदा आर डी बर्मन साहब लेकर के आए अमित कुमार को। ये जो गाना है वो आशा ताई और अमित कुमार ने एक साथ गाया है। कमिंग अप राइट नेक्स्ट, रोज रोज आंखों तले। मैं हूँ श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।

पहली फिल्म और बेस्ट म्यूजिक कंपोजर का अवार्ड लेकर पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, और अगला जो गाना है इस फ्रॉम द फिल्म जूली। इस फिल्म के गानों के साथ एज म्यूजिक कंपोजर पहली बार कदम रख रहे थे राजेश रोशन, एंड फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऐसा हुआ कि कोई म्यूजिक कंपोजर पहली बार यानी पहली ही फिल्म के गाने कंपोज करने के लिए अवार्ड ले गए इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर, एंड दैट वाज राजेश रोशन फॉर जूली। अब उन्होंने अवार्ड कब जीता? 25 साल के बाद फिर से, व्हेन ही मेड द म्यूजिक ऑफ कहो ना प्यार है। सो आई फील कि मतलब ये इयर्स, ये साल म्यूजिक के लिए ना कुछ नहीं होते। अगर आप म्यूजिक कंपोज कर लेते हो, अगर आपको स्वर का ज्ञान है, अगर आपको धुनों से प्यार है बेसिकली, तो फिर चाहे वो 25 साल पहले हो या 25 साल बाद हो, ऑडियंसेस को पसंद आएगा। वेल, राजेश रोशन का कंपोज डे गाना फ्रॉम द फिल्म जूली कमिंग अप राइट नेक्स्ट। मैं हूं श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर 89.6 89.6 It's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर

नासिर हुसैन जिन्होंने ये फिल्म बनाई, उन्होंने कभी भी बच्चन साहब के साथ फिल्म नहीं बनाई, लेकिन वो तहे दिल से चाहते थे कि बच्चन साहब उनकी एक फिल्म में काम करें। इस फिल्म यादव की बारात में इट वाज ऑलमोस्ट तय कि बच्चन साहब होंगे लीड रोल में, लेकिन फिर बीच में आ गए कौन, बताती हूँ। पुरानी जीन्स पे हाय, दिस इज मी श्रेया, उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें, इस जमाने की श्रेया के साथ। सो बीच में आ गए हमेशा की तरह फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स, एंड क्योंकि बच्चन साहब जंजीर से पहले एक फ्लॉप एक्टर माने जाते थे, उनकी सारी फिल्में फ्लॉप होती थी, तो उन्होंने ना ये कह के साफ मना कर दिया कि वो इस फिल्म यादों की बारात में पैसे ही नहीं लगाएंगे अगर नासिर हुसैन साहब ने अमिताभ बच्चन जी को लिया। इसीलिए उनको बच्चन साहब को ड्रॉप करना पड़ा और विजय अरोड़ा को लेना पड़ा। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया, come right back.

0: में शी स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक पायलट फूक के प्लेन उड़ा रहा था तो उसकी जॉब फूक गई।
3: इसको प्लेन को हाई ले जाना था, ये खुद हाई हो गया। और लोगों को यार प्लेन के फॉल की पड़ी है, जबकि इसका डाउनफॉल शुरू हो गया।
4: मेरा हेयर फॉल भी।
5: मिर्ची, इट्स हॉट। शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड, शी इज कमिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम।
6: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर, स्पॉन्सर्ड बाय कतर कैलेंडर, दिस 25th सितंबर एट QNCC, एंड टू ऐड द डबल बोनांजा ऑफ एंटरटेनमेंट, गेट रेडी टू वॉच म्यूजिक एंड डांस डुओ चरण एंड आरसी। एक शाम, एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट SCT स्नोनो। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स।
5: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स, श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

महमूद साहब के प्रोडक्शन की पहली फिल्म थी ये पड़ोसन, जिसका गाना भी आपको सुनाया श्रेया ने, ओनली ऑन पुरानी जीन्स। अच्छा सुनो ना, ये जो फिल्म थी ना, ये महमूद साहब के प्रोडक्शन की पहली फिल्म थी, तो उनका सारा पैसा लग रहा था। गुरु साहब को उन्होंने लिया था एक रोल में। गुरु साहब अपने टाइम के नामी गिरामी हीरो थे, बट ही पास्ड अवे। सो फिर यही रोल लेकर के वो सुनील दत्त साहब के पास गए। ही वॉज नॉट श्योर कि सुनील दत्त ये रोल करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि सुनील दत्त उस समय ना काफ़ी सीरियस रोल्स कर रहे थे, और पड़ोसन फिल्म का ये रोल काफ़ी कॉमेडी वाला रोल भी था। बट जब सुनील दत्त साहब ने ये रोल सुना, उन्हें इतनी पसंद आई स्क्रिप्ट, अपना कैरेक्टर, के उन्होंने फ़ौरन हामी भर दी पुरानी जीन्स पे। इसी फिल्म का गाना आपको सुनाया मैंने, अब लता जी का ही गाना रहे, सुन करके वापस आऊंगा।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: शंकर महादेवन,
4: यू रियली ऑल्सो रिवर्स एजिंग, तो हम गाने के बारे में बात कर रहे हैं, स्किन रूटीन के बारे में जरा, कौन सा रेटिनॉल, कौन सा क्या कर रहे हैं आप?
5: नहीं, ऑनेस्टली आई जस्ट रियलाइज्ड जस्ट 2 years बैक, नॉट दैट दैट्स मेड अ चेंज, to put this sunscreen, it's not sunscreen, the one which you use for the sporting thing. It's very important to put that sunscreen thing is what my wife told me.
3: शंकर महादेवन भी सनस्क्रीन लगा रहे हैं, तो आप किस खेत की मूली हैं? आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: सलमान खान अभी अपने फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग के बारे में सोच रहे हैं या
7: आर यू थिंकिंग ऑफ लाइक अ फ्लाइंग कार्पेट? आर यू थिंकिंग अ फ्लाइंग कार्पेट?
8: कैसे किया, सीरियसली कैसे किया ये?
6: उसे सब पता है।
9: शी कैन रीड योर माइंड, शी विल ब्लो योर माइंड, शी इज कमिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम।
6: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर, स्पॉन्सर्ड बाय कतर कैलेंडर, दिस 25th सितंबर एट QNCC, एंड टू ऐड द डबल बोनांजा ऑफ एंटरटेनमेंट, गेट रेडी टू वॉच म्यूजिक एंड डांस डुओ चरण एंड आरसी। एक शाम, एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट SCT स्नोनो। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ जाने का टाइम, सो लेट्स हिट द हाईवे। ऑलराइट, तो आज का मेरा हाईवे हिट मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ कोई ऐसा जो हवा के साथ साथ घटा के संग संग आपका हाथ पकड़ के चलता रहे बस। मेरी नजर में तो आप ही हो मेरे लिए, तभी तो रोज रात में जाने से पहले हाईवे पे लेके जाती हूँ आपको। ऑलराइट, ऑन दैट नोट, इफ यू मिस मी, इफ यू वांट टू से समथिंग, इफ यू वांट टू कंप्लेन अबाउट एनीथिंग, फेसबुक और इंस्टा माय हैंडल इज आरजे श्रेया विद लव, दैट्स आरजे SHREYA श्रेया विद लव। ऑन दैट नोट, गुड नाइट, टेक केयर।

0: है मेरी हमरंग, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

89.6 89.6 Nitschi.

Yeah, भाई तेरा बस लिख तगाने, हर दुनिया देती ताने, बस इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने, शौकीन चाहिए